100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 जून सन 2026। प्रातः के 5:55 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ हो रही है।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

हमेशा भगवान पर भरोसा रखें हम, वो कब देंगे कैसे देंगे ये सोचना हमारा काम ही नहीं। हमारे कर्म और हमारे गुण ही तय करते हैं कि भविष्य हमें क्या देने वाला है। 100.7 FM पर कार्यक्रम पुष्पांजलि, मैं अनुपमा आपके साथ, सुप्रभात, नमस्कार।

हमारी विनम्रता ही हमको बड़ा बनाती है। ऐसा धन वैभव किस काम का जो हमारी विनम्रता और दयालुता ही छीन ले। इसलिए विनम्र बने हम, हमारी यही विनम्रता ईश्वर के समीप रखेगी हमें।

उनके मुख में हरि का नाम नहीं, उनको मनुष्य जीवन का लाभ ही कहाँ मिलेगा। जो प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं उन्हें हमेशा जय की प्राप्ति होती है और कठिनाइयां भी उन्हें रोक नहीं पाती। पुष्पांजलि सुन रहे हैं आप 100.7 FM रेनबो पर, 6:25 का समय, और मैं अनुपमा आपके साथ।

स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दें हम, ये जीवन जैसा भी है उनका ही दिया हुआ है। हमारे पास जो भी संसाधन है सब उनकी कृपा का ही तो प्रभाव है। सब कुछ उसी ईश्वर का है और एक दिन उसी के पास लौट जाना है।

ईश्वर की भक्ति कोई विशेष दिन या अवसर नहीं मांगती। जब हृदय सजग हो वही पल पूजा का हो जाता है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं, बस हृदय में एक सच्चा भाव चाहिए।

हर सुबह एक नया वरदान होती है, ईश्वर द्वारा दिया गया एक और अवसर। तो आज भी प्रयास करें स्वयं को बेहतर बनाने का और प्रभु से गहराई से जुड़ने का। अपने भीतर के द्वार खोलें और प्रभु की भक्ति में लीन रहें। आज्ञा दें अनुपमा को आज की पुष्पांजलि से।

Good morning, Kanpur. जी हाँ, वीकेंड की पहली सुबह लेकर आ गया है सैटरडे और सुबह के 7 बजते ही शुरू हो चुका है आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे परहत, आज इस प्रोग्राम में आपके साथ और अगले 1 घंटे तक मैं रहूँगी और आपको रखूँगी हर जरूरी खबर और हर दिलचस्प अपडेट से रूबरू। देश दुनिया की बड़ी हलचल हो, अपने कानपुर शहर की खास बातें, मौसम का हाल, खेल जगत की खबरें या फिर कुछ ऐसी पॉजिटिव बातें जो आपका दिन बना दे, सब कुछ होगा इस 1 घंटे में। तो दोस्तों, चाय की प्याली को हाथों में थाम कर हो जाइए तैयार, क्योंकि आज की सुबह सिर्फ गुड नहीं, इन्फॉर्मेटिव और एनर्जेटिक भी होने वाली है। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं गुड मॉर्निंग कानपुर इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के साथ।

वेल सैटरडे की मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है इस ब्यूटीफुल से गाने के साथ, लेकिन आज का दिन आप एफएम में रेनबो के संग कैसे बिताने वाले हैं, चलिए बता देते हैं आपको प्रोग्राम हाइलाइट्स के साथ। दोस्तों एफएम रेनबो आज आपके लिए लेकर आ रहा है सुबह 8:30 से शुरू की पुरानी महफिल और 9 वक्त होगा प्रोग्राम रस बहार का, जिसमें बातें होंगी डिजिटल डिटॉक्स की। और 9:45 पर विविधा में आज सजेगी गजलों की महफिल, महफिल गजल प्रोग्राम के साथ। और 11 बजे लेकर हाजिर होंगे आपका फेवरेट प्रोग्राम हम नवा, जिसमें आज मेरे साथ स्टूडियो शेयर करेंगी आरजे वंदना।

और हाँ, दिन में 3 बजे से वंदना के साथ आप एंजॉय करिएगा म्यूजिक आर प्रोग्राम, और 4 बजे से वक्त होगा आपकी मेल पर बेस्ड प्रोग्राम आपकी पसंद का, तो मेल करना मत भूलिएगा। फिलहाल मेरी पसंद का गाना पहुंच रहा है आप सभी के रेडियो सेट तक, एंजॉय करिए गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम के साथ।

गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से। वेल दोस्तों, सैटरडे की सुबह में मुझे पता है कि इस वक्त दो तरह के लोग मुझे सुन रहे होंगे। एक तो वो जो उठ चुके हैं चाय की चुस्कियों के साथ दिन की शुरुआत कर रहे हैं, और हाँ, दूसरे वो जो अलार्म बंद करके अभी अभी बिस्तर पर लेटे बस यही कह रहे हैं कि बस 5 मिनट और। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि आज का मॉर्निंग मंत्रा आप दोनों के लिए है। जी हाँ, महान साहित्यकार रवींद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि यू कैनॉट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर, यानी सिर्फ किनारे पर खड़े होकर समुद्र को देखते रहने से आप उसे पार नहीं कर सकते। किसी भी मंजिल तक पहुँचने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि शुरुआत ही नहीं कर पाते। सही समय, सही मौका, सही परिस्थिति का इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि रास्ते चलने वालों को मिलते हैं, सिर्फ सोचने वालों को नहीं। तो आज का मॉर्निंग मंत्र आपसे कहता है कि सिर्फ सोचिए मत, शुरुआत कीजिए, चाहे कदम छोटा ही क्यों ना हो। और हाँ, आज तो वीकेंड की आराम भरी सुबह है तो थोड़ा स्लो चलना तो बनता है, लेकिन दोस्तों दिन को इंटरेस्टिंग बनाना है तो बिस्तर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो उठिए, मुस्कुराइए और आज को सिर्फ सैटरडे नहीं, एक ग्रेट डे बनाइए।

गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से आरजे फरहत के साथ। और दोस्तों प्रोग्राम में अब वक्त है सोशल मीडिया अपडेट की ओर आपको ले जाने का। तो दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर खुशी जाहिर करते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित जय प्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी यानी सुरहा ताल को इंडिया का 100वां रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। सोचिए अगर हर बच्चा प्रकृति का दोस्त बन जाए तो हमारा कल कितना हरा भरा हो सकता है। इसी सोच के साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हैशटैग इको क्लब्स फॉर मिनिस्ट्री लाइफ्स के तहत देश भर के स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कई खास इनिशिएटिव शुरू किए हैं। इसमें 5 से 30 जून तक ग्रीन समर कैंप्स, एक पेड़ माँ के नाम 3.0 कैंपेन और स्कूल में इको क्लब्स का विस्तार और साथ ही क्लाइमेट अवेयरनेस जैसे कदम शामिल किए गए हैं। और दोस्तों सोशल मीडिया अपडेट्स में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अनुसार भक्ति और आस्था से भरी एक खास रेल यात्रा की शुरुआत होने जा रही है जिसका नाम होगा देव दर्शन यात्रा, जो शुरू होगा 3 सितंबर से। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को 3 धाम और 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का अवसर मिलेगा, जिससे देश की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को करीब से अनुभव किया जा सकेगा।

10 ईयर्स पीआईबी होम अफेयर्स के एक्स हैंडल पर दी गई जानकारी के मुताबिक पद्म अवार्ड 2027 के लिए नॉमिनेशन और रिकमेंडेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने कला, साहित्य, खेल, विज्ञान, चिकित्सा, समाज सेवा और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया हो तो उनका नाम नॉमिनेट किया जा सकता है।

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: जी हाँ, ये सूचना तो समाप्त हुई, लेकिन अभी भी कुछ अपडेट्स आपके इंतजार में है। और मैं आपको बता दूं कि माई भारत के सोशल मीडिया पेज पर दी गई जानकारी के मुताबिक माई भारत यूथ कन्वेंशन 2026 का आयोजन आज यानी 6 जून को दोपहर 12 बजे से किया जाएगा। इस कन्वेंशन में स्पोर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, पब्लिक सर्विस और डिजिटल इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाले युवा अचीवर्स को सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, इन अपडेट्स के साथ ही एक और गाने का भी अपडेट दे देते हैं आपको। गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में नेक्स्ट सॉन्ग रॉय फिल्म से है, अंकित तिवारी की आवाज में। बहुत सारा आप तक लीजिए, एंजॉय करिए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
2: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: जी हाँ, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर और आरजे पर है। आज इस प्रोग्राम में आपके साथ तो दोस्तों, अब आपको लेकर चल रही हूँ अतीत के आईने में, यानी क्या कहती है आज के दिन की हिस्ट्री। तो सबसे पहले बात भारत के इतिहास की। साल 1674 में आज ही के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ किले में राज्याभिषेक हुआ था, जिसके साथ मराठा साम्राज्य को एक नई पहचान मिली और शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि दी गई। वहीं विश्व इतिहास में 6 जून 1944 का दिन भी बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज ही के दिन नॉर्मंडी में मित्र देशों का अभियान शुरू हुआ, जिसे डी डे के नाम से जाना जाता है। इस अभियान ने युद्ध की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई। और साथ ही 6 जून 1946 को अमेरिका में एक बास्केटबॉल लीग की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन बनी और आज NBA दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग है। अतीत के आईने में अब बात करूंगी मैं फिल्मी दुनिया की। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन 1929 में हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता

सुनील दत्त का जन्म हुआ था, जिनकी पहचान सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं हुई बल्कि समाज सेवा में भी उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है। और दोस्तों, आज ही के दिन सिंगर नेहा कक्कड़ भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं, तो चलिए इन्हीं का गाया एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक प्ले कर देते हैं इनके जन्मदिन की ढेर सारी गुड विशेस के साथ।

जी हाँ, यही हम कहते हैं आपसे कि बेशर्त मैं तेरा हुआ। जी हाँ, गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम के साथ कनेक्ट हैं आप 102.2 FM रेनबो कानपुर से। बिल दोस्तों, वक्त है आपको देश दुनिया की ताजा खबरों से रूबरू कराने का। आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यानी कि कल भारत से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। इस उपलब्धि पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लोगों को बधाई दी और कहा कि यह सफलता बताती है कि देश के नागरिक पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को जन भागीदारी का बेहतरीन एग्जाम्पल बताया है। और साथ ही आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश को स्वच्छ हवा की दिशा में एक बड़ी सौगात मिली है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के सहयोग से 2000

741 करोड़ रुपए की यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह देश की पहली एयर शेड आधारित वायु प्रदूषण नियंत्रण परियोजना है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के कई जिलों में वायु गुणवत्ता की बेहतर बनाना और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण रखना है। और एक गुड न्यूज लेकर आई हूँ हमारे टीचर्स के लिए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूल में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। बेसिक शिक्षा परिषद ने अंतर जनपदीय तबादलों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक शिक्षक शिक्षिकाएं 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इस बार गंभीर बीमारी, दिव्यांगता या पति पत्नी के एक ही विभाग में कार्यरत होने जैसे विशेष परिस्थितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किए जाएंगे और फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर कार्रवाई भी होगी, तो थोड़ा सा होशियार रहिएगा दोस्तों। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के पारंपरिक और मशहूर व्यंजनों को नई पहचान देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पेशलिटी यानी कि ODOS स्कीम का विस्तार किया है। इस योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को 50 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। और हाँ, कला संगीत और संस्कृति के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी ने शुक्रवार को 51 कला साधकों को एकेडमी सम्मान से सम्मानित किया। संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में वर्षों से उत्कृष्ट योगदान देने वाले इन कलाकारों को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किए गए। साथ ही भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी जल्द ही पटरियों पर दौड़ सकती है, संभावना है। ये ट्रेन जींद सोनीपत रेलखंड पर शुरू की जाएगी और हाल ही में रेलवे बोर्ड ने मंजूरी मिलने के बाद रेल मंत्री ने इसका निरीक्षण भी कर लिया है। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए भी एक बड़ी खबर है। अब देश के कई NITs में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। IIT दिल्ली ने 18 NITs के साथ नई शैक्षिक साझेदारी शुरू की है, जिसके तहत योग्य विद्यार्थियों को गेट परीक्षा दिए बिना ही MTech और PhD में प्रवेश के अवसर मिल सकेंगे। साथ ही CBSE के 12th के छात्रों के लिए भी राहत भरी खबर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 जून से बढ़ाकर 7 जून कर दी है।

गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम से कनेक्ट हैं आप 102.2 FM रेनबो कानपुर से। और अब दोस्तों आपको लेकर चल रही हूँ अपने कानपुर शहर के इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। भाई जून का महीना है लेकिन भीषण गर्मी अभी भी जारी है और कानपुर वासियों के लिए एक राहत भरी खबर ये है कि जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने टाट मिल बड़ा चौराहा श्याम नगर पीएसी मोड़ और मेघदूत चौराहे पर छायादार टेंट और ग्रीन नेट लगवाए हैं ताकि रेड लाइट पर रुकने वाले राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को तेज धूप से राहत मिल सके। जल्दी ये सुविधा पीएसी चौराहा फजलगंज परेड मरियमपुर रानीघाट चकेरी और नंदलाल चौराहा समेत कई अन्य प्रमुख चौराहों पर भी शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि नई भाषा सीखने के इच्छुक छात्रों के लिए अच्छी खबर ये है कि छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में जर्मन और फ्रेंच सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक विद्यार्थी 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। दोनों कोर्स पूरी तरह ऑफलाइन होंगे जिसमें छात्रों को भाषा सीखने के साथ नियमित क्लास और प्रैक्टिकल संवाद अभ्यास का भी लाभ मिलेगा। कानपुर के 54 परीक्षा केंद्रों पर 8, 9 और 10 जून को पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में करीब 1.16 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में होगी और प्रशासन ने सभी केंद्रों पर पारदर्शी एवं निष्पक्ष आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही दोस्तों लखनऊ में आयोजित एकेडमी सम्मान समारोह में शहर के दो कलाकारों को प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिवंगत प्रभु दयाल को वर्ष 2021 के लिए मरणोपरांत अकादमी पुरस्कार दिया गया जबकि वरिष्ठ रंगकर्मी डॉक्टर उमेंद्र कुमार को वर्ष 2023 के लिए सम्मानित किया गया। एंड लास्ट में आपको बता दें कानपुर से शिक्षा जगत की एक बड़ी खबर है कि छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज ने पर्यावरण विज्ञान में पीएचडी प्रोग्राम शुरू करने की पहल की है। इस प्रोग्राम के शुरू होने के बाद छात्र छात्राएं पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन जैव विविधता और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर शोध कर सकेंगे।

आरजे भरत के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से। और अब खेलों से जुड़ी खबरों का वक्त है, तो आपको बता दें कि क्रिकेट जगत से बड़ी खबर, भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच आज से न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। भले ही दोस्तों ये मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, लेकिन टीम इंडिया के लिए अपने संयोजन को परखने का बहुत ही अहम मौका है। पिछले घरेलू टेस्ट प्रदर्शन को देखते हुए भारत इस मुकाबले में बेहतर संतुलित टीम कॉम्बिनेशन तलाशने उतरेगा, ताकि आने वाले बड़े मुकाबलों से पहले तैयारी मजबूत हो सके। एन अंडर 18 पुरुष एशिया कप हॉकी में भारत ने शानदार दर्ज जीत हासिल की है। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में जगह बना ली, और अब फाइनल में भारत का सामना जापान से होगा। भारत में भी हो चुकी है प्रोफेशनल बॉक्सिंग की नई शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 6 से 10 जुलाई तक पहली बार प्रो बॉक्सिंग लीग यानी कि पीबीएल का आयोजन किया जाएगा। इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित इस लीग में देश भर के शीर्ष मुक्केबाज हिस्सा लेंगे। और हाँ, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि भारतीय शतरंज के लिए एक ऐतिहासिक पल हमारे सामने है। युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया। वे इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। आखिरी राउंड में जर्मनी के खिलाड़ी पर जीत दर्ज करते हुए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और कुल 18 अंकों के साथ खिताब अपने नाम किया।

गुड मॉर्निंग कानपुर, आप इंजॉय कर रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर से, और फरहत है आज आपके साथ इस प्रोग्राम में। दोस्तों, वैसे जून की गर्मी इन दिनों पूरे जोश में, पूरे रंग में है, लेकिन हाँ, लगता है कि आज मौसम में थोड़ा सरप्राइज प्लान कर रखा है। IMG के मुताबिक आज अपने शहर में धूप और बादलों के बीच आंख मिचौली देखने को मिल सकती है। कहीं तेज धूप आपका वेलकम करेगी तो कहीं बादल थोड़ी राहत देने के लिए पहुंच सकते हैं, और कुछ इलाकों में हल्की बारिश या थंडर शॉवर भी हो सकते हैं। दोस्तों, टेम्परेचर लगभग 27 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, यानी गर्मी का असर तो रहेगा लेकिन मौसम का मूड कभी भी बदल सकता है। तो अगर आप घर से निकले तो सनग्लासेस भी साथ रखें, और मौसम के शरारतों को देखते हुए सेफ्टी भी, क्योंकि आज कानपुर का मौसम जरा सुहाना लगे।

तुम्हारे शहर का मौसम जरा सुहाना लगे, इसी ये खूबसूरत एहसास के साथ मेट्रो इन दिनों का एक गाना बस यहीं तक। दोस्तों, मौसम चाहे धूप का हो, बादलों का हो या जिंदगी के नए मोड का, उम्मीद है हर मौसम आपके लिए खुशियां और पॉजिटिविटी लेकर आएगा। मैं आरजे परहत गुड मॉर्निंग कानपुर से अब वाइंड अप करने को लेती हूँ इजाजत। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और दिन को बनाए रखिए बेहतरीन। टेक केयर गाइज़।

0: और अब अगले प्रसारण के लिए आपको लेकर चल रहे हैं हमारे दिल्ली केंद्र।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
4: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
3: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
4: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
3: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
5: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की

0: प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
7: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
8: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांति दूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
9: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
1: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
10: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल है।

नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का सुरों की पुरानी महफिल में। वो महफिल जहां आज गूंजेंगे नगमे सुनील दत्त की फिल्मों से, क्योंकि आज है इनकी जन्म जयंती। तो दोस्तों, पहली आवाज पेश कर रही हूं महेंद्र कपूर की, जहां साहिर लुधियानवी के बोल पर धुन बनाई रवि ने, और फिल्म का नाम है हमराज।

तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाती रहूं। जी हाँ, सुरोगी पुरानी महफिल से कनेक्ट हैं आप 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ। और अब आपको सुना रही हूँ गुमराह फिल्म से बेहद दिलकश गाना, जिसे एक बार फिर आवाज से नवाजा है अहमद कपूर ने। साहिल लुधियानवी के बोले और संगीत रवि का।

महंत कपूर की आवाज़ के बाद अब अगली आवाज़ आप तक पहुंच रही है मोहम्मद रफ़ी की मसरूर सुल्तानपुरी के शब्दों को धुन से सजाया मदन मोहन ने, फिल्म का नाम चिराग।

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM।

102.2 FM रेनबो कानपुर से आप सुन रहे हैं सुरों की पुरानी महफिल आरजे फरहत के साथ। और दोस्तों, प्रोग्राम का अगला गाना पेश है पड़ोसन फिल्म से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, संगीत आर डी बर्मन का है और इस गाने को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने।

दोस्तों, सुरुकी पुरानी महफिल का ये आखिरी नगमा पेश खिदमत है। महेंद्र कपूर की आवाज़ में रवि के संगीत को शब्दों में पिरोया साहिर लुधियानवी में। लीजिए सुनिए ये नगमा।

गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। क्या बात है, इसे खूबसूरत पैगाम के साथ अब वक्त है सुरों की पुरानी महफिल से इजाजत लेने की। उम्मीद है आज की महफिल आपकी यादों को भी महका गई होगी। मैं हूं फरहत और अब आप कनेक्ट हैं दोस्तों 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

गुड मॉर्निंग कानपुर, सुबह के 9 बज रहे हैं और अब आप सुनने वाले हैं 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से प्रोग्राम रस बहार। मैं हूं आरजे फरहत आपके साथ। दोस्तों, सुबह का वक्त है और इस वक्त कोई ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, कोई कोचिंग की अटेंडेंस सोच रहा है, कोई ब्रेकफास्ट के साथ फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा है और कोई एयरफोन लगाकर ट्रैफिक और थॉट्स दोनों हैंडल कर रहा है। वैसे आजकल लाइफ में ना एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, स्क्रीन टाइम। सुबह आँख खुलते ही मोबाइल और रात को नींद से पहले भी मोबाइल। इसलिए आज का रसभार एक छोटा सा पॉज है, किसी लेक्चर की तरह नहीं, बस एक फ्रेंडली रिमाइंडर की तरह कि हर वक्त ऑनलाइन रहना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी थोड़ी देर खुद के साथ भी रह लेना चाहिए। तो फ़ोन को साइड में रखकर म्यूज़िक के साथ खुद को रिकनेक्ट करने का दिन है।

रस बाहर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से। और दोस्तों, अगर आप एक मॉर्निंग ट्रैवलर हैं तो एक सीन कॉमन है कि बस में ट्रैवल कर रहे हो या ऑटो में, सबके हाथ में फ़ोन है और चेहरों पर अलग अलग टेंशन। कोई ऑफिस प्रेजेंटेशन के बारे में सोच रहा होता है तो भाई कोई एग्जाम रिजल्ट को लेकर टेंस, और बस कोई मेंटली टायर्ड भी होता है। और इसी टायर्डनेस को दूर करने के लिए बना है म्यूजिक, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते, वो दिल को धीरे धीरे हील भी करते हैं। तो आपके स्ट्रेस को हील करने आ रहा है ये गाना, सुनते रहिए रस बाहर 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

ओ माही की सॉफ्टनेस में एक अजीब सा सुकून है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी बिना किसी रीज़न के साइलेंस अच्छे लगने लगता है ना? लेकिन आजकल साइलेंस मिलता ही कहाँ है। लिप्ट

वेट हो, कॉफी बन रही हो या ट्रैफिक सिग्नल रेड हो, 2 सेकंड का गैप मिलते ही फोन जो है वो अनलॉक हो जाता है। दिन भर अपडेट्स, रील्स, ओपिनियंस और नोटिफिकेशन कंज्यूम करते रहते हैं हम। इसलिए दोस्तों, फरहत आपसे कह रही है कि हर वक्त फोन पर अवेलेबल रहना जरूरी नहीं है। कभी कभी मजा फोन स्क्रीन की जगह किसी और को निहारने में भी है। सो ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये दिल ना हल्की सी स्माइल दे जाता है पूरे दिन को।

देखा तेनु दोस्तों, इस गाने में एक वॉर्म्थ है बिल्कुल ओल्ड मेमोरीज जैसी, एंड ऑनेस्टली रियल हैप्पीनेस भी शायद ऐसी ही सिंपल चीज़ों में होती है। वैसे कानपुर की मॉर्निंग में आज हल्की सी हवा भी फील हो रही है, और जून का ये जो वॉर्म्थ है ना, ये धीरे धीरे मॉनसून मूड में आ रहा है। तो ऐसे मौसम में फ़ोन साइड में रखकर चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है। वैसे मैंने ना एक और बात नोटिस की है कि आजकल हम फोटोज़ बहुत लेते हैं और मोमेंट्स को कम फील करते हैं। सनसेट दिखे तो पहले कैमरा ओपन हो जाता है, दिल बाद में फील करता है। जो लिसनर्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि इस खूबसूरत मोमेंट को फ़ोन में कैप्चर करना अच्छी बात है दोस्तों, पर याद रखिए जिस नज़ारे को हमारा दिल कैप्चर करता है ना, वो कभी डिलीट नहीं होता। तो इसलिए इन नज़ारों को कहते हैं नज़र न लग जाए जानम।

0: सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

रस बाहर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं 102.2 एफएम रेनबो कानपुर के साथ। और दोस्तों, अभी इस ब्रेक से पहले श्री फिल्म का जो गाना आपने सुना था नजर ना लग जाए, इस गाने में जो सॉफ्टनेस थी ना, वो शायद रिलेशनशिप से धीरे धीरे मिसिंग होती जा रही है। आजकल रिश्तों में टाइपिंग ज़्यादा होती है और अंडरस्टैंडिंग कम। लोग एक दूसरे को रील्स और मीम्स भेज देते हैं, पर कभी कभी एक सिंपल फ़ोन कॉल ज़्यादा हीलिंग होती है। और इस फास्ट डिजिटल लाइफ में किसी का जेन्युइनली ख्याल रखना बहुत रेयर फील होता है। शायद इसलिए इमोशनल सॉन्ग्स आज भी डायरेक्टली दिल तक पहुंच जाते हैं। और रिमेंबर, आपको नज़र आने वाला हर ऑनलाइन इंसान इमोशनली अवेलेबल भी हो, ये ज़रूरी नहीं। इसलिए फ़ोन को नहीं दोस्तों, रिश्तों को गहरा बनाइए और एंजॉय करते रहिए रस बहार मेरे साथ।

दोस्तों तुम क्या मिले इस गाने का फील ही ऐसा है जैसे बिजी लाइफ में अचानक कोई पीसफुल मोमेंट मिल गया हो। 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से आप सुन रहे हैं रसबार, मैं हूं फरहत आपके साथ और आज हम बस एक छोटी सी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स। दोस्तों डिजिटल दुनिया बुरी नहीं है, ज़्यादातर काम भी वहीं से होते हैं और इंटरटेनमेंट भी, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम पूरा दिन ऑनलाइन रहकर भी इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करने लगते हैं। एक ही रूम में रहकर भी सबकी स्क्रीन दुनिया अलग हो गई है और शायद इसी डिसकनेक्ट के बीच म्यूजिक ही वो जगह है जहां शायद हम थोड़ी देर एक दूसरे की फीलिंग को समझ पाते हैं। ऐसा ही एक दिल से दिल को कनेक्ट करने वाला सॉन्ग पहुंच रहा है आप तक, ध्यान से सुनिएगा।

दिल दिया गल्ला की वाइब बिल्कुल इवनिंग ब्रीज जैसे फील होती है ना। वेल, कानपुर से अदिति ने एक मैसेज शेयर किया है हमसे और वो लिखती हैं कि सुबह रेडी होते वक्त रेडियो सुनना ही मेरा पीसफुल टाइम होता है। ऑनेस्टली अदिति, बहुत लोग आपके इस फीलिंग से रिलेट करेंगे क्योंकि म्यूज़िक आज भी वो काम करता है जो स्क्रॉलिंग नहीं कर पाती, माइंड को काम करना, और कभी कभी बस एक अच्छा गाना पूरे मूड को रीसेट कर देता है। वेल, इसी काम फीलिंग को और भी ब्यूटीफुल बनाता है ये नेक्स्ट ट्रैक फ्रॉम एनिमल।

रस बहार प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ। और दोस्तों, एक वक्त था जब फ्री टाइम मिलते ही लोग टेरेस पे चले जाते थे, और अब फ्री टाइम मिलते ही फोन अनलॉक हो जाता है एंड स्लोली हम खुद के थॉट से बहुत दूर हो चले जाते हैं। एंड आई थिंक कि कभी कभी बिना मल्टीटास्किंग के म्यूजिक सुनना भी जरूरी है, विदाउट स्क्रॉलिंग, विदाउट नोटिफिकेशन। याद रखिए दोस्तों, माइंड को भी एरोप्लेन मोड की जरूरत पड़ती है कभी कभी। लेकिन फिर भी दिल क्या कहता है, किसानू एक पल चैन ना वे मोबाइल तेरे बिना। वेल, ये तो तुम्हारी बात है। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं अपने अगले गाने की तरफ। रेड फिल्म का ये गाना बेहद खूबसूरत, लीजिए सुनिए।

ब्यूटीफुल ट्रैक। वैसे दोस्तों फास्ट लाइफ की मल्टीटास्किंग तो हम सब सीख गए, लेकिन कहीं ना कहीं पॉज लेना भूल गए। और पॉज का मतलब सिर्फ फोन रख देना नहीं होता, पॉज का मतलब होता है खुद को फील करना, मॉर्निंग ब्रीज नोटिस करना और बिना किसी रीजन के स्माइल कर लेना। जी हाँ, अगर आप इस वक्त कार से या ऑफिस में बैठ के या घर से क्वाइटली ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो बस एक काम करिए, आज थोड़ी देर के लिए नोटिफिकेशन से ज़्यादा खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि आपका अपना फेवरेट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं अपनी फेवरेट हूँ और इसलिए सुना रही हूँ अपना फेवरेट सॉन्ग प्रोग्राम रस बहार के साथ।

और दोस्तों इस गाने के साथ ही आज का रस बाहर यहीं कंप्लीट होता है। तो अगर आज अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी स्क्रीन से नज़र हटाकर खुद को फील किया हो तो यही रियल सेल्फ डिटॉक्स है। थोड़ा स्लो होना वीकनेस नहीं है दोस्तों, कभी कभी वही सेल्फ केयर होता है। मैं फरहत अब लेती हूँ आपसे इजाजत, अपना ख्याल रखिए, हाइड्रेट रहिए और सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर, क्योंकि कुछ ही पलों में लेकर लौट रही हूँ प्रोग्राम महफिले गजल।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
3: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
2: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।

0: प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर। कार्यक्रम मेल मिलाप विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर। पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:15 बजे सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर। मेल मिलाप।

सज रही है गजलों की महफिल महफिल गजल कार्यक्रम के साथ। और सबसे पहले पेश है जगजीत सिंह की आवाज में सहर एल्बम से ये खूबसूरत दिलकश नगमा। लीजिए सुनिए।

इस खूबसूरत गजल के साथ ही अब पेश है पंकज उदास की आवाज में घूंघट एल्बम से एक और बेहद खूबसूरत गजल, लीजिए सुनिए।

नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की लागत वाली 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं गोंडा के विकास को एक नई दिशा

नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की लागत वाली 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं गोंडा के विकास को एक नई दिशा देंगी और जनसुविधाओं का विस्तार करेंगी। उन्होंने कहा कि नई विकास परियोजनाएं गोंडा की प्रगति और समृद्धि

0: और तुम्हारे घरे हम जाइबे तो हमका का खिलै आओ।
1: बात तो सही है,
0: है ना बाबा, खाए पिए की बात किए रहो, एकदम मस्त रहे। जाने आज हम एकदम थकाए गए रहे, आप बताइए अपने साधन ते वन ते निकली न, हत्ता टेम लगेगा, हत्ती घाम रहे। और जाने हम सोचे रास्ता में बैठ के तनिक सांस ले ले, सहता ले, बोला एक को पेड़ की छाए हमका ना मिली कि कहीं हम बैठ ले।
1: बाबूजी देखो, यह जो समस्या है ना, यह बढ़त जा रही।
0: ना देखो, समस्या तो बढ़ी जा रही, मुझे समाधान तो ढूंढने पड़ी है।
2: समाधान हो ही तुम का करे, तुम तो कही थी बिरवा जाए तो लगाए।
0: हाँ, अरे सब जने मिली के देखो बिरवा तो लगाए लियो, मुला उनकी देखभाल करो, बकरी न चर जाए, गौई न खाए जाए, तने इनका बचा जैसे बच्चा होते छोटा नानी नानी सहारा दिया जाते, उंगरी पकड़ी के चलावा जाते जब तक चले ना लगे, वैसन बिरवा होती है। देखो भालो, पानी डालो, खाद पानी देओ, बचाए के धराओ बकरी गैया से, अच्छा निकली जाए चार पांच फीट ऊपर चला जाए, सयान हो ही जाए जाने बिरवा तो जाने ले ला है ला।
1: अच्छा पहुंची एक बात, हम जब तुम बता रही हो तुम्हारी एक बात समझे मावा था
0: का?
1: आज तुम जो न है मारी अघा गई है घामे मई है तो उन्हें मारे तो है हमका
0: ना नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, अघा
1: आ गई तुम।
0: अरे तो बात ये है जौन निकरे ये मौसम में जाने एकदम पस्त हो जाए, अरे पसीना तो एक तरीका यू के घर से देखो सत्तू खाए के निकलो, पानी पी के निकलो,
1: भाचक्के
0: और पानी की बोतल साथ में धरे रहो। और दूसरी चीज जानियो का है, खरबूजा है, तरबूज है, खीरा ककड़ी है, इन जो पानी वाले जो चीज होते है उनका भर पेट खाओ,
1: खाओ
0: शरीर में पानी बने रहे। अच्छा सब्जियों खाओ तो लौकी तुरई ये सब जो है पानी वाली सब्जी होती है, हल्की होते हैं, जल्दी हजम हो जाते हैं। और इसका गरू खाना ज्यादा ना खाओ भैया,
1: हमारे अच्छा रसगुल्ला खाए।
0: अरे ना नहीं, कचौड़ी पकौड़ी से तो दूरी बनाए रखो,
1: देखो वैसे खाली बस।
0: अरे अभी बरसात आई है, बरखा बरता पकौड़ी तले भैया।
1: अच्छा भाजी एक बात है ना, अगर मान लो कचौड़ी बन नहीं घर में तो अगर मन ललचाए तो का की,
0: अरे तो इक्के दुई खाओ, ज्यादा
1: इक्के दुके खाए, ज्यादा ना खाए,
0: ज्यादा ना खाओ भैया, इतनी बेरी हल्का रखो अपन के। और दूसरा देखो बिरवा की बात हम तुमका बताए रहे ना, तो भैया बिरवा खूब लगाओ।
1: हाँ बिरवा खूब लगाओ, और जैसे अब इन्हें देखो बात होता है ना कि एक पेड़ अपनी अम्मा के नाम जरूर लगाओ, जैसे कनु बहाना होगा मान लो।
0: अरे अम्मा के नाम लगाओ, बापा के नाम लगाओ, भाऊजी के नाम लगाओ, लगाओ मुला जरूर
1: के नाम लगाओ, फूफू के नाम लगाओ। तो वही नाम लिखो, वही मैया जो है पर्चा टांग दियो। और जब भाऊजी फूफू चाचा आई है देखिए, अरे अरे गजब,
0: अरे जाने अरे जन 10-12 साल हुई जाए और फरे लागे और बच्चे लड़कन देखे तो कहने अरे चाचा का नाम लिखा है, अरे ये तो नानी रहा है, नानी का नाम,
1: नानी का नाम लिखा, नानी
0: और नानी का पेड़ हुई जाए।
1: हाँ नानी का पेड़ हो जाए, सबको कही जाओ नानी के पेड़ से अंबिया चूल लाओ,
0: चाचा के अमरूद ले आओ,
1: चाचा के अमरूद ले आओ, नानी खुश।
0: ना ना बात देखो एकदम गंभीर मुद्दा है, सब जने के कहे तो खूब बिरवा लगाओ, चाहे फल के लगाओ चाहे फूल के लगाओ, हरियाली रहे बोला, हरियाली रहे, वो के नीचे गौआ बैठी है, बकरी बैठी है, इंसान बैठा है, मुला कहीं थक जाए तो दुई बूंद आराम तो कर ले।
1: आओ का, आओ ना ही देखो जैसे संजा हुई गए और मार तो तुम्हारा घर का पंखा नहीं चल रहा, वो गरम गरम हवा फेंक रहा।
0: हाँ।
1: तो बढ़िया खटिया डारो चाहे बैठो,
0: जब जौन भगवान जी के पंखा चले बाहर तब बिरवा हो तभी तो चलिए।
1: हाँ और जब देखो घर में गर्मी हो, मान लो छत पर ही है गर्मी हो रही कस के और सास बहुत तुनुक तुनुक हुई,
0: अरे दादा रे, अरे दादा रे,
1: तो वही गर्मी में मार हुईगा, कड़बड़ी मच गए, तो वह बाहर लड़ो है,
0: लड़ो काहे लड़ो, लड़ाई की बात है, काले हम ससुराल गए रहे, सब नंद सबका मिली के आयन, सबसे पांव जुड़ाए के आयन, सबका मिली आयन, हंसी बोली खुशी राजी।
1: हमारा का है मतलब ना, को देखो घर में जो है सात बहुरिया जो है नंद बहुजाई जो है ये जाने कहाँ लड़ती तो हो जाते हैं।

0: हाँ तो भैया लोगे 10:22 और 25 सेकंड का समय हो चुका है। आप हो सुगंध माटी के मैया और हम आपके साथ हैं आपके भैया विनय और हमारे साथ है हमारी भौजी आ गई हैं बिल्कुल अब जो है शांत भाई हैं। मार गुस्सानी जाती है कहीं पानी नहीं लाओ हमका और मारी हम परेशान हो गए ना और
1: का करी अत्ती गर्मी है तो परेशान ना हुई।
0: हाँ नहीं ठीक भौजी तो है तुम बता दी नो यही देखो भौजी एक बात और है इसे तो हमारी भौजी आओ अब तुम ही बताइयो तब वही तो जाना वो
1: अच्छा
0: हाँ को घर में आवे तो वही का पहले स्वागत सत्कार किया तब देखो हम नान सरे हैं लड़का हैं छोट सरे तुम बताओ
1: नन्ना मुन्ना सीधा बालक बड़े हैं जबते जमीन के ऊपर वक्ते जमीन के नीचे तुम काम बहुत जाने थे
0: नहीं अब बताओ तो अब आगे तने आइयो तो पहले दुअरे धर दे आवे हम जलेबी
1: अरे
0: खस्ता सारी व्यवस्था खस्ता पकौड़ी
1: पकौड़ी जलेबी तो यार हमका भूख लागे
0: देखो बहू का इंतजाम हो। अच्छा भौजी जो हम का पंचन का सुनते हमारे भैया लोग मारी आतो रहते हैं खटपटा खटपट खटपट
1: मोबलिया खाते कर अरे जाने सिर दर्द होगा हमका ये देखो ये है तो बहुत बढ़िया सुविधा बोला बस काम भरे की होए है ना इससे ज्यादा जब हो जाते अब लड़कन बच्चन का हम देखे नहीं है अम्मा खवावा करते हैं वही मोबलिया से आंखों नहीं हटाती है मोबलिया हाथ अरे नान नान बच्चा डेढ़ दो साल के अरे दादा वही का चंदा तारा दिखाओ चिड़ैया दिखाओ गैया दिखाओ अब बात करते करते वही का जन खवाए दियो
0: नहीं कहीं है कि अम्मा यो रो रहा कहीं अम्मो देखो अम्मा जो है अब जानकार हो गई कहीं अगर बहुरिया कहीं अम्मा रो रहा नहीं तो अगर जो है बिटिया अपने घर गवा है तो कहीं अम्मा देखो मान नहीं रहा यो रो रहा अरे अम्मा कहीं है हम कहाँ लेके जाए तो तुम फोन कहा नहीं दिखा देती हो
1: अरे दादा
0: अम बिटिया तो ठीक ठाक अम्मो जनती है कि
1: गलत बहुत गलत बात है भैया बच्चन का फोन इतने दूर कौन खिलौना थोड़े आए जब हाथ में पकड़ाए दियो मुलक पकड़ाएगा तो कछु खिलौना पकड़ाए दियो कछु खेले कूदे कछु सीख है कछु तोड़े फोड़े अब मोबाइल कौन अरे ये कोनो खेले की चीज है।
0: ओ भौजी देखो पहले का होत रहे कि जब अपने नाना कुआं मौसी कुआं मामा कुआं जब लड़का बच्चा जात रहे तो सुबेरे कहूं गुल्ली डंडा खेल रहे कहूं

0: यार सटका ना खेल ले है। ओ नहरिया छोटी छोटी तलवा है, नहरिया उमा नहावा दिन भर ऐसी वैसी।
1: हम जानी हम हमका अपना बचपना याद आएगा, यानी हम गुड़िया गुड्डा के बियाह करत रहे।
0: तुम हो भौजी बचपन में रहो का
1: लिया कौन, हम बूढ़ पैदा भए।
0: अरे हम तो तुमका भौजी ही देखा कौन, हम जा रहे हम कहीं टाइम के पे हम छोड़ कर रहे
1: हैं। इस बात ना किया करो, हम कमो ना ना ने छोटी छोटी।
0: हम तो तुमका भौजी जानी थे कि भौजी आए हमका का जानी तरह तुम
1: नानी औरे जात रहे जन बचपन में। हमरी माई अम्माई के नया नया ब्याह भवा रहे।
0: अच्छा
1: अम्माई खाली दिन दोपहर में सप्तारी तो हम कहें गुड्डा गुड़िया का ब्याह करे, वही कपड़ा जोड़ जोड़ गुड़िया बनावे, हमका गुड़िया बनाए के दे। फिर दिन में थोड़ी छोटी छोटी छोटी पूड़ी बनाए दे, आलू सूखा बनाए दे। हम बारात लेके नीते से छतह पे चढ़ी जाए, हम कहें बारात जा रही। अब बारात डम डम डम डम कौन भगोना पीटे, कौन थाली पीटे, वही ढोलक बजे, अब वही नाचे गए, टन टन टन टन करे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे बारात आएगी। अब बैठ जाए हम सब जी में, मामी जो रहे ना हमारे, पूरी सब्जी खवाई कर लिया, बरात आगे बरात आगे बरात का स्वागत होगा। अब पूरी आलू खा पूरी यह हमारे खाना खवाई देते रहे।
0: थरिया लुटिया मारी पीट डरती रहो पप्पू। अच्छा यह बात, यह बात बताओ, जैसे तुम गुड़िया गुड्डा बिहाव करती रहो और पूरी सब्जी बनाती रहा है, तो माई तुम्हारी जो है अब पूरा नहीं नहीं रहा है माई ना, पुराने में जब गयु तो ऐसा नहीं की यहाँ जब यह आ जावती है बोलमती तो हम का दिन भर कहा नहीं खाना बनाओ खाना बनाओ, मायू कान पकड़ी बाहर खेदी आवती है।
1: तो हम हाथ बटाई थे कर, हम जाए के तुरंत चूल्हे पे चाय चढ़ा दे तुमका चाय पियाओ।
0: देखो होए क्या है चाहिए ना कि जैसे मान लो तमाम भांजी भांजा है, छह सात आठ होते कोको
1: होते हैं ननिया और सब पहुंचा थे,
0: अगर सब जने जावत हो भैया तो काम का साथ देख चाहिए, काम करा ले मिल जुल के। ऐसा ना हो कि माही खोपड़ी पूरी घर जो माई दब जाए,
1: बिल्कुल
0: माई गरीब तो रहे,
1: एक घर में छुट्टी जाओ अगले को पूछो ना
0: पूछेला। और कहे अगर को मांग लियो बार बार तो कहे कि हाँ तुम तो यही महीना भर आवे खाते ना, जो है जो
1: महीना टिको भी ना, और भैया मिलजुल के काम करो, सब जने खाओ पियो, एक बेरिया कोई बनाए, एक बेरिया कोई बनाए।
0: ओ जानो भौजी करी है काम आई, फिर
1: का करिए
0: नून बढ़ा दे दाल सब्जी खाओ
1: मरचाई।
0: हाँ सबेरे अगर जो है चाय बनाई है तो मैं चाय ना डरी है, लियो दो दो पानी और चीनी पी लियो।
1: देखो माई माई के रिश्ता होते मजाक के, माई करो सकती
0: है मारे, हम कह रहे ना कोनो लड़ाई मार थोड़ी ना है।
1: सही बात है।
0: तो देखो बात यह है भौजी हमारी, कहा चाहती है सबते कि भाई जो लड़का बच्चा है इस समय जो अपने ननिहाल गए हैं या मौसी बुआ कुआ गए हैं, सब जिन्हें खेल कूदे खातिन गए हो, अपने मन कहीं नीक करे खातिन गए हो, तो वह काम करो ना फोन।
1: अरे फोन देखो देखो बाग बगीचा में खेलो, पेड़ों पे चढ़ जाओ, कहूँ आम अमिया देख लियो, ये सब देखो, ये सब शहर में मिलत ना है, काम बहुत कम मिलत है। अब मोबाइल छोड़ो, मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल कोनो बढ़िया चीज नहीं भाई, फोन आवे बात करो, पढ़ाई लिखाई आजकल मोबाइल पे होए लागे तो चलो उत्तय कर लो, लेकिन जो दूरी है वो बनाए के रखो। यू हम तुमका बता दिए कौन अच्छी लत ना है, बहुत बुरी आदत है।
0: तो भौजी एक गवनाई सुन ली। हाँ और देखो तमाम भैया लोग जो है हमसे जुड़ रहे हैं, और सबसे हम यह कहे FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com यह है, देखो
1: ये तुम्हारा वही है, हम समझ गए,
0: सर सर सर सर सर सर सर सर बालक परत है तो हो जावत है।
1: यू हमका एक एक सवाल हमरे मन में हर बार आवत
0: बताओ
1: है, यू जो तुमरी मेल ही आवत है, जौन ये मेल है यू मेल है कि यू फीमेल है?
0: क्या बात, तो तुम बहुत गजब की
1: कह रहे हो। हर बार हम स्वाचे थे, हम जान ना पाए थे, तुम बोला आया तो मेल, आई तो फीमेल।
0: हाँ वह बात है, देखो इमा बहुत जने आया है और बहुत जने आई है, तो जो कोई आया है वे मेल है और जो कोई आई है वे फीमेल है,
1: सब भेजन मेल ही
0: है। वेरी भौजी वेरी भौजी, तुम जो ना है ना हमका मालूम रहा है तुम आई हो तो का बताई हम। हाँ हाँ लियो अच्छा गौ नहीं सुनो।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in

0: भैया लोग 10:35 और 15 सेकंड का समय हो गवा है और भौजी हमारी माँ जो है तंतना रही है, संदेश बहुत सारे आगे मेलो में आगे फिलो में आगे भौजी। हाँ तुम बात बहुत जो ना बहुत जुगाड़ की बात क्यों यही मारे हम कहते हैं भौजी पटाओ तो बात बताओ है हमका।
1: हाँ देखो हम पहले हम तुमका मेल बता दे।
0: हाँ
1: यू है विनय विजय पाल यादव बबलू यादव इनका समस्त परिवार सब जने मिली के सुन रहे हैं प्रोग्राम और कहरन कार्यक्रम बहुत मस्त लग रहा है, नोक झोंक जो है बहुत अच्छी लग रही है।
0: अच्छा
1: है ना तो सादर पांच भैया खुश रहो नीचे रहो भैया बने रहो और इसे कार्यक्रम सुनत रहो और खुश रहो मस्त रहो परिवार के साथ है ना। और यू देखो यू है यू कौन ईमेल को भेजी से
0: जब अख्तर आई
1: नहीं यू रोशनी रावत।
0: हाँ, रोशनी रावत
1: यू कहने राम राम विनय भैया फूलमती भौजी आप दोनों कैसन हो कार्यक्रम बहुत लाजवाब बिंदास कमाल लगी रहा है। तो हमका भी देखो बहुत मजा आवती है जब तुम सबसे मिलती है बात करती है तो आपका सुगंध माटी का प्रोग्राम सुपर से भी ऊपर गजब। और जानियो ये जो है प्रोग्राम चंडीगढ़ से सुन रही है,
0: चंडीगढ़ में बैठी
1: ठंडी हवा खाए रही है, मौसम बढ़िया होते चंडीगढ़
0: का मौसम तो नीक लगता
1: है, बहुत सुंदर शहर है। हम देखे नहीं किया
0: तुम गयो तुम कहाँ गयो हमका यू बताओ।
1: हम बहुत घूमे नहीं हमारे पाँव में शनिचर है
0: चंडीगढ़ ते लेके आकाशवाणी तक का तुम दौरे
1: करती हो
0: शनिचर है शनिचर।
1: हाँ वैसे तो यू रही थे सफीपुर जिला उन्नाव में प्रोग्राम आज सुन रहे हैं चंडीगढ़ यू इनके साथ है बबीता राव नीलू दीदी गुलबशा सिद्दीकी सब सुन रहे ने और कह रहे नाच कूद रहे भैया नाचा कूद भैया। हाँ। अरे हमका बहुत नीक लागत जब सब जने मिल के जो है यू आए मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे
0: भौजी तुम गयु का नीचर नहीं चढ़ा रहा
1: अब जाब
0: तेलंगाना हो भैया मोहम्मद आसिफ भैया अंसारी भैया हमारी भौजी आवा है हैदराबाद तेलंगाना तो पहले तेने जलेबी पेड़ा और बसाता
1: हाँ
0: धर रखियो
1: इनके कह रहे ने तुम्हारी बात सुनी कि हमका अपन गांव याद आएगा।
0: हाँ
1: यह है तो सुगंध है माटी की जो माटी की याद दिलाए देते। अब भैया यू है टाइगर शर्मा शैलेश कुमार ये कह रहे हैं भौजी हमारे घर आओ मालपुआ खिलाएंगे
0: ले
1: आओ भैया।
0: अब अतनो सनीचर भौजी के लाई चढ़ा पाए भैया भैया देखो बैठे हो दौड़ते बाद दौड़ लिए
1: क्या बिल्कुल मालपुआ का स्वाद आएगा
0: मालपुआ। देखो अब की जब भौजी आई है तो भाई पठाए देहो टाइगर शर्मा भाई
1: भेद
0: हाँ, नहीं अब हमें परेशान हो
1: जी या देखो हमारी बात सुन रही कह रहे हम पेड़ लगाएंगे FM रेनबो प्रसार भारती लखनऊ के नाम से।
0: क्या बात है नाम
1: बहुत बढ़िया। और भैया काहे के पेड़ लगायो यू हमका जरूर बतायो।
0: हाँ।
1: अमरूद लगायो कि आम लगायो का लगायो हम आओ हम अमरूद खाए जरूर आओ।
0: क्या बात है
1: हाँ।
0: और लेकिन अब ना दोपहरी हम ना जाओ मालपुआ इन तो बना धर लीनो
1: खन्ना है
0: मालपुआ बना धर लीनो जब आई तो आपकी आई है तो बताइए।
1: और इनके साथ जाने सारा पीहू रोशनी बबीता स्नेहा सोनी मनु वंदना कौशल पूर्णिमा जी सब जनी कार्यक्रम सुन रहे हैं
0: नमस्ते कह रही सबका नमस्ते बोल दे रहे हो।
1: नमस्ते
0: देखो तेज बहादुर भैया हमका पंजन मेल आयो फीमेल ना है
1: यू मेल है नाम ते हम जानिए
0: भैया का राम राम बड़की भौजी फूलमती जी जी कहिया जो है सादर चरण
1: भैया खुश रहो खुश रहो भैया
0: खुश रहो मुंह मीठ करत रहो जलेबी लेबी खावत रहो लेकिन आप दू जने में आज तो कुछ अलग अंदाज में कार्यक्रम हो रहा है ठीक है बड़की भौजी के बहुत प्यास लाग रहा है देखो सब जने कह रहे हैं कि बतासा तासा खवाया नहीं हम तो शिकायत कह रहे हैं भौजी
1: कह रहे हैं जेठ के घाम बहुत थे भैया जेठ के तो घाम हो यही के बाद बरखा रानी आई है जब सावन भादो में तब जाकर नीक लागी भैया।
0: और इनके साथ है रोनित और वानिका इनके लड़का है और गांव में सरकी रायबरेली ते नहीं हमारे साथ जुड़े हैं और कही यहू देखो गुरु गांव हरियाणा में यहाँ बैठी है भाजी
1: को
0: यही तेज बहादुर यादव और का
1: अरे दादा रे दादा ये सब जने मायका ससुराल कर रहे छुट्टी है सबके कौनो मायका गांव कौनो ससुराल
0: गांव गयो का
1: कहां
0: हरियाणा
1: मन ना गए ना
0: अरे चंडीगढ़।

0: गयो खाली चंडीगढ़ गयो तो भाई मतने हम खाली कह दियो मेरे पांव से नीचे रहा ना है तेलंगाना गयो ना हरियाणा गयो
1: तो ना गयो अब का कहे झूठ बोल दी तुमका
0: मैं झूठ यह बात तो देखो भाई हां अच्छा फीमेल आवा कि मेल आवा बताओ बहू जी
1: फिर मेल ही आवा
0: नहीं मेल
1: यू रमा शंकरिया ना मेलिया हाँ यू मेलिया यू कह रहे की ये दतौली चंदा बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से यू चिट्ठी लेकिन करण प्रोग्राम बहुत एंजॉय कराती है हाँ बहुत बढ़िया भैया लेकिन कहरन प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा पूरा परिवार मिल के कार्यक्रम सुन रहा है हैं और यू पढ़ाइयो कर रहे हैं
0: पढ़ाई कर रहे हैं
1: बहुत बढ़िया भैया पढ़ो लिखो
0: पढ़ाई कर रहे हो
1: पढ़े बनो अच्छे बनो नीक बनो
0: पढ़ाई करे रहे हो नहीं तो भौजी अगर कहूँ तो एक सवाल कह ली और बता ना पायो तो फिर पता लगी कौन पढ़ाई कर रही हो चलो अच्छा भाऊजी गौनई मार उलर रही कह रही हम पहले आगे
1: सुनाओ सुनाओ
0: सुनाओ

0: देखो भौजी देखो है, गौनहू जो है इतना उलर रही कहते रहे ना उलर रहे ना, तो कहते घूम लड़ाई चल रही कि हम पहले आ गए आप। देखो आ गए ना, देखो नंबर इनका रहा है आप ही गिरा
1: तो घूंघट डारी है लग रही घूंघट ना डारी।
0: चलो चलो चलो भाई गाओ गाओ गाओ, सब जने गाओ, सबका मौका मिली परेशान ना हो।

0: कहिए कहिए ना,
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: मैं हूँ गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेन।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: भौजी।
2: हाँ भैया।
1: 10:46 होगा है और तुम्हारी आज हम गठरी बांध के लाई रहो और रही जाते।
2: कौन ने गठरी?
1: अरे जो उन खाए पिए खातिर लाई रहो, निकालो हम खाए पी। तुम तो खाली बातें
2: कर रहे, तुम्हारे आगे खोल दे।
1: बातें गड़े रहती हो, जो नहीं जानती हो कमा भैया यहाँ सवेरे तेने बैठो तो कुछ खवा दे।
2: अब इन खोला बाबा, हमने हमने ई ना का करो हमसे गठरी गठरी। हम तुमका पहले बताए ना इनकी, हम तो हमारे घर आई हो तो का लेके आई हो, तुम्हारे घर जाइबे तो का खिलाई हो। हम मुला पहले बता दिन फंडा हमारे बिल्कुल स्पष्ट है,
1: लुकाक धरती हो।
2: तो नहीं, हमका भूख लगी तो हम खाइबे।
1: हाँ तब ही खबियो, मतलब भौजी की जब भूख लागी तब इन्हें भौजी निकरी है तब इन्हें खाए मिली, नहीं तो इसे मुंह बांधे चुप पे बैठे
2: बैठे मुंह बांधे काय, मुंह बांधे काय बैठे,
1: मुंह खोली बैठो।
2: कछु बोले के खाते तुमका मुंह तो खोलत पड़ी। मुंह खोलो, कुछ बोलो, बतियाओ, जरूरी थोड़े कि जब मुंह खोलो तब कुछ खाओ।
1: यार बात सही है, जरूरी है कि जब मुंह खोलो तब चकिया चले लगे।
2: खाओ हम, खाओ हम, बोलो तुम, बतियाओ तुम,
1: सही बात है, सही बात।
2: हम जाने या तुमका बताए जब हम नान नान रहे, अब तुम कही हो कि तुम और नान रहे हो।
1: आओ का हम तो तुमका तो नहीं बड़ी देखा भौजी की देखा।
2: बेकार बात ना करो, हम नान नान रहे तो गर्मी की छुट्टी हुई जाए। अब सब जने हम अलसाए पड़े, कौनो उठे ना, सब देर में उठे, कौनो काम काज ना है। तो हमारी अम्मा जो रहे बहुत डटती रहे।
1: का कहती रहा?
2: भाई अत्ते पड़े सो रहे हो, सूरज चढ़ी हवा उठत ना है, यूं ना है कि उठो। सब जने कछु काम धाम करो, हम सब चुप्पे चादर हुई जे जे ओ चुप्पे आके मुंदे पड़े रहे। तो जब अच्छा और जब कोनो काम कह दे तो हम सब ऐसी दाई बाई ताकि कि भैया यू कर ले, भैया वही कर ले। हम ते
1: भाजी
2: और जो पकड़े में आए गए और कौनो काम पकड़ाए दिन तवा घिसिर घिसिर घिसिर धीमे धीमे
1: करे रहे
2: कि दूसर काम न कह दे,
1: दूसर न बता दिए,
2: खत्म हुए तो मालूम पड़ा दूसर बता दे।
1: नहीं सही,
2: तब वह चिल्ला में और जाने का कहे
1: का
2: कहे, हाथ धीरे ऐसे चला रही, हाथ चलाए नहीं बना तुम्हारे, 9 दिन चले 2.5 कोस। अच्छा यू कह दे,
1: हाँ
2: तो हम कहे नहीं को चल रहा है, कौनो ना चले ना कौनो कोस गिने। अब वो डायलॉग बोले, 9 दिन चले 2.5 को, सुन सुन के हम सब ठठाए के हंसे,
1: हम बूढ़ा फर्जी चिल्ला रहे।
2: अच्छा और जानो जाने आलस करी जाए, कछु चद्दर अद्दर पड़ी है, कौनो नहावा ना है, इस गंदा कुछ पड़ा है तो कहे जाना हाथ पाँव की काहिली और मुँह में मोछे जाए।
1: ओफो,
2: हाथ पाँव की काहिली और मुँह में मोछे जाए,
1: हाथ पाँव डोलावे के ना पड़े।
2: हाँ जाने मतलब समझे,
1: मतलब बताओ
2: मतलब यू भा की इतना आलस इतना काहिलियत है कि मोछे बरी के मुंह में जा रहे, मुला मोछे हटा नहीं सके थे, काट ना।
1: भगवान दैया मोर दैया भौजी, वह तो ठीक बात है, लेकिन जो तुम जो ने कहते बता जो चौवा मार रही है, हमका लगा पूरा IPL देखे हो अब की तुम।
2: कैच कर लिया।
1: कैच अरे नहीं इतनी तेज चौवा मर तू कैच ना, वही छक्का मरियो तो कोशिश करब कि तुम कैच कर ले,
2: वही बाउंड्री पार चला जाए,
1: बाउंड्री पार चला जाए,
2: चला जाए।
1: नहीं ठीक। अच्छा भौजी कुछ हो सुनाओ, यही मारे तो
2: सुनो सुनो।
1: हाँ हाँ
2: ऐसे में कौनो अगर कौनो जवाब दे दे तो कहे सूप बोले तो बोले, चलनी का बोले जा में 72 छेद।
1: ले का तुम
2: सुनो कहावत घर की, उमा सूप और चलनी आएगा।
1: हाँ, नहीं।
2: कहे सूप

0: बोले तो बोले और चलनी का बोले जा में 72 छेद जाने छेदों की नहीं बैठी
1: ले 72 छेद और चलनी देखो जनती है कि देखो चलनी में यहाँ कुछ धरियो तो खाली वो जो है आटा ही चली उन्हें तो सब
0: नीचे वाहू कहे भाई चलनी पे एक और ही है
1: हाँ।
0: कहे चलनी में दूध दो करम को दोष दियो
1: सुने
0: हो कबन सुने हो कि चलनी में दूध दो करम को दोष दियो मतलब यू भाग काम ऐस करो कि काम बने ना एक बात चलनी को तुम जो है दोष दे रहे हो काम सही सलीके से करो अब दूध दुह रहे हो तो कोनो पतीला और हरिया ले लियो अब दूध दुहे कहे में तुम
1: चलनी में
0: तो यू मार मतलब यू भा कि ठीक से करो जब ठीक तने काम होए तो तुम कोई का दोष न दे हो
1: भाऊजी वारी ज्ञान की बात है तुम्हारी वारी तुम्हारी कहा उत्ता यही मारे हम तो
0: जाने सब सब घरेलू आए
1: हाँ सब घरेलू आए
0: सूप चलनी दूध सब दही सब हुईगा
1: हाँ यही मारे तो हम पहले है कहे रहा हाँ। कि तुम बचपन की बात करती हो हम तो देखें कि भाऊजी आई फिर तुम कहियो तो हम कहा आँखी बटर तू कहियो बचपन
0: तो सुनो तो गौनों से माँ
1: हाँ गाँव नहीं अरे बिल्कुल तैयार है वह अब तुम इतनी निकी निकी बातें बताती हो तो गाँव नहीं ऐसी आवत हमारे ठेला मारते हाँ चक्कर
0: तो बुलाओ
1: कि हम बाजब तो वही के हम ठेला मारी थे हम रुकी रहो
0: ना ठेला
1: अच्छा अच्छा हम बाजो बाजो भाई बाजो बाजो
0: बाजो भाई बाजो बाजो

0: अब भैया देखो हमका यू लागत ही और मेली आई गे।
1: हाँ और का फीमेलो आए हैं बहुजी।
0: तुम्हार नजर जो हमका ठीक ना लग रही।
1: अरे तुम ये तो कहती रहो कि मेल और फीमेल का होती वाहे।
0: तब तुम फीमेल पे काहे बात करते।
1: अरे तुम मेल को कहा तो कि मेल आओ तुम फीमेल को तुम तो मारी हुआ।
0: अब रुक जाओ यू। हाँ। सुधांशु भैया है यू भेजिन है। यू भेजिन है मेल कहाँ थे यू भेजिन है पोस्ट महोना थाना इटौंजा बक्सी का तालाब जिला लखनऊ थे। कहन है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और आप दोनों की बातें बड़ी प्यारी लग रही है।
1: अरे वाह भैया वाह यही
0: भैया हम हैं प्यारे प्यारे तो कहाँ किया जाए।
1: हाँ, नहीं
0: है ना। और यू देखो यू है एम के राज मुनेश कुमार राज गांव भानपुर हरौआ जिला लखीमपुर खीरी थे। यू कह रहे राम राम विनय भैया और भौजी का भैया राम राम हो कह रहे कार्यक्रम।

0: एकदम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल, क्या
1: का
0: बात
1: बात
0: है।
1: है।
0: आओ यू
1: हाँ
0: देखो कुछ पंक्ति लिख के भेजी ने, यू कहीं ने पेड़ नहीं लगावती है गर्मी गर्मी चिल्लावती है। बिल्कुल
1: का
0: सही
1: बात
0: कहीं
1: है।
0: ने, ज्यादा बारिश तो गरिया में, ना बरसे तब भी गरिया में, बिजली गई तो झगड़ा करे, आई गई तो फिर भी बकरे, पानी बहे तो कीचड़ कहे, सूखा पड़े तो धूल उड़े। तो भैया यू सब दूर करो, पा
1: हाँ और भौजी
0: बिरवा लगाओ।
1: देखो नेहा वर्मा करीनी है मेल, कहती है गुड़िया गुड्डक भौजी बिहाव करा दिए नहीं, बहुत नीक लाग।
0: भैया तुम सज्जने भी कराओ, ऐसे घर में अकेला अकेला कर करो और मोबाइल ऐसे दूर रहो, है
1: हाँ
0: ना। और यू है गुलफसा सिद्दीकी संडीला से, यू कह रहे ने तुमका भौजी ने तुमका नमस्ते, विनय भैया का नमस्ते, और प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है और गाने भी एकदम मस्त लग रहे हैं। तो भैया
1: अच्छा
0: बहुत है बढ़िया, तुम सब जने नीक रहो, सब जने सुनते रहो, यह तो हम चाहिए। और यू देखो कह रहे हैं कि वकील अमित कह रहे हैं कि गन्ने की सिंचाई कर रहे हैं यू खेत में। हाँ, और कह रहे हैं सुगंध माटी के कार्यक्रम अच्छा लगता है, लोग गीत बज रहे हैं, इस समय आम की बाग में है, कच्चे आम लगे हैं, अब भैया हम कुछ शरबत अरबत पी रहे हैं, बहुत बढ़िया। और सब जने सुन रहे हैं, अनीस अहमद, बबलू यादव, भूपेंद्र यादव, जाहिद अली, सब जने सुन रहे हैं भैया,
1: भौजी
0: बहुत बढ़िया।
1: मीनाक्षी भेजनी है मेलू,
0: यू का कह रहे
1: कहते हैं कि राम राम और इनका कार्यक्रम नेक लाग रहा है,
0: हाँ।
1: और छोटकाऊ वाला कुछ बात कह रही है त्रिवेणी नगर तेने हमका मेल करी ने लखनऊ तेने।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: आइयो देखो इंदरपाल मिश्रा भैया है, यू मोहली सीतापुर ते कहने इंदरपाल मिश्रा, अवनीश विनीश, अक्षत गरिमा रजनी, और ये कह रहे अवधि मीठी बोली कर कार्यक्रम बहुत नीक लग रहा है, पर्यावरण दिवस पे हमारे यहाँ बहुत से पेड़ लगाए गए। भैया तो पेड़ तो लगाए, बिरवा लगाए, लेकिन देख रेख करो भैया, यू जाने लियो कि वो कद रख रखाव ना करियो तो मुरझाए जाइए, जुराए जाइए तो काम फायदा ना है,
1: भौजी
0: बचाए रहो।
1: भौजी
0: हाँ बोलो
1: ओ भौजी
0: बोलो बोलो,
1: 10:56 और 52 सेकंड हो गए,
0: तो का करियो
1: अब चलो तुम जाओ।
0: रुको, अरुण कुमार कहीं ने यू कही ने, अरुण कुमार कुशवाहा घमोइया हरदोई से कह रहे ने प्यार भरा नमस्कार भैया, नमस्कार कह रहे बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारे गीत सुन रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बाई बहुत आप सबे का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बारिश अली खान भौजी रहे जाती
0: पढ़ो पढ़ो
1: कहत की ना भौजी और भैया का प्रणाम, सुगंध माटी बहुत नीक लाग रहा, हमारे घर आए हो तो लेके आए हो, और का खवैयो तो पता नहीं भैया का खवैयो तुम हमका, अब भौजी हमारी
0: पकौड़ी कचौड़ी कुछ बनाए के रखा हमका बताओ हम आइबू।
1: और देखो कह रहे हैं कि हमारा जो है भतीजी है और वह खूब गीत गम नहीं सुन रही हो तुम अपनी बातें।
0: अरे भैया बहुत बढ़िया क्या बात है।
1: अरे भौजी तो भौजी फिर यही मारे तो कही थी ना।
0: और पढ़ी का या यू एक
1: पढ़ी लो
0: मेल ही कह रहे हैं यू में टाइगर शर्मा, यू कह रहे हैं हमारे खेत में एक बीघे में अमरूद के पेड़ लगे, मुझे आम का पेड़, जामुन, नीम, शीशम सभी लगाने, भैया खूब लगाओ।
1: हाँ, लगाओ
0: खूब लगाओ।
1: हाँ।
0: नीम का पेड़ ऑक्सीजन देगा, शीशम की लकड़ी है ना भौजी, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं फीमेल हूँ, प्यार से हमको टाइगर कहते हैं। अच्छा भैया मानिए तुम्हारी बात, अब तुम कह दियो हम मानिए, है ना। और यू पवन कुमार यहू देखो मेल भेजी नहीं, सब नमस्ते कहीं ना कहीं, कार्यक्रम बहुत नीक लग रहा है,
1: मजा लग रहा है,
0: नीके रहो नीके सुनते रहो।
1: भौजी
0: हाँ,
1: यू गान गाना कह रहा है कि 10:58 और 27 सेकंड का समय होएगा है, ओ भौजी हमरी तुम जा रहे हो हमका नहीं लगा ना,
0: अब जाए का परिये जो अब ना जाऊ तो फिर कैसे आऊ हम।
1: हाँ यह बात सही
0: है ना, तो पड़ी है। तो भैया सब जने अपन ख्याल रखो, देखे रहो और घाम गर्मी से बचे रहो, पेड़ पौधा लगाए रहो, पानी डाले रहो, अगली बार मिला तो हमका बतायो का पौधा लगाए
1: का करियो है।
0: बचाए के रखियो, और कौन गैया बकरी चरी न जाए हम कही दे रहे हैं।
1: और अब हम जो है 11 बजे के बाद हम मुलाकात करी,
0: तुम करो हम चलिए, हम हमार गठरिया पकड़ा
1: उठाओ
0: ना,
1: चलो सब।

सुबह की धूप जब आहिस्ता आहिस्ता आंगन में उतरती है तो लगता है कि जैसे जिंदगी फिर से कोई नई बात कहने आई है। हेलो, आदाब, नमस्कार। वीकेंड की इस प्यारी सी सुबह में आप कनेक्ट हो चुके हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम हम नवा के साथ, और आपका साथ देने आ चुकी हूँ मैं, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे फरहत। और दोस्तों, मेरी बातों में अपनी बातों की कड़ियां जोड़ने स्टूडियो में आ चुकी है

0: हेलो आदाब नमस्कार। वीकेंड की इस प्यारी सी सुबह में आप कनेक्ट हो चुके हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम हम नवा के साथ, और आपका साथ देने आ चुकी हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आरजे फरहत। और दोस्तों मेरी बातों में अपनी बातों की कड़ियाँ जोड़ने स्टूडियो में आ चुकी है मेरी दोस्त आरजे वंदना।
1: नमस्कार आप सभी सुनने वालों को, और आप सभी का दिल से वेलकम है आज के हम नवा प्रोग्राम में। शनिवार की इस खूबसूरत सुबह में हम लेकर आए हैं फरहत कुछ ऐसी बातें हैं ना, जो सिर्फ जानकारी नहीं देंगी बल्कि हमारे सभी साथियों को सोचने मुस्कुराने और जुड़ने का भी मौका देंगे।
0: जी हाँ वंदना, कहते हैं कि हफ्ते भर की भागदौड़ के बाद जो दिन सुकून का पैगाम लेकर आता है वो शनिवार ही तो होता है।
1: बिल्कुल,
0: जो अपनों के लिए थोड़ा सा वक्त बचाना सिखाता है, और ये सैटरडे दोस्तों अक्सर हमें याद दिलाता है कि जिंदगी जो है वो सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं है बल्कि उन छोटे छोटे पलों का भी नाम है जिन्हें हम अपनों के साथ जीते हैं, कुछ नया सीखते हैं और अपने आसपास हो रहे बदलाव को भी समझते हैं।
1: हाँ, और आज का हमारा सफर भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। आज हम बात करेंगे उन योजनाओं की जो लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं, जैसे पीएम स्वनिधि योजना, और जो हजारों स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे व्यापारियों के सपनों को नई उड़ान दे रही है।
0: जी हाँ, और फिर आपको लेकर चलेंगे आपके अपने कानपुर शहर की ओर, जहाँ आपसे शेयर करेंगे कि कैसे मेट्रो की रफ्तार के साथ कदम बढ़ा रहा है अपना कानपुर।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ ही जश्न मनाएंगे आकाशवाणी के 90 सालों के गौरवमय सफर का, जहाँ पर बात होगी शास्त्रीय संगीत की उस अनमोल परंपरा की जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी सुरों की विरासत को संजो कर रखा है।
0: साथ ही दोस्तों प्रोग्राम में शेयर करेंगे कैसे एक ऐसा टॉपिक जो हर घर की जरूरत बन चुका है, कैसे बिताएं वीकेंड में बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम, क्योंकि भाई बच्चों को सिर्फ गिफ्ट्स नहीं चाहिए वंदना बल्कि हमारा वक्त और हमारी मौजूदगी सबसे ज्यादा याद
1: रहती है। सही, बहुत अच्छी बात है ये फरहत। और आज तेजस्विनी सेगमेंट में हम दोस्तों किसकी बात करने वाले हैं और क्या होगी आज की हेल्दी रेसिपी, इसको जानने के लिए भाई कनेक्ट रहना पड़ेगा आपको एफएम 102.2 रेनबो कानपुर के साथ हम नवा प्रोग्राम पर,
0: जहां बातों में हो अपनापन
1: और विचारों में हो एक नई रोशनी।
0: वहीं से शुरू होता है हमारे अपने प्रोग्राम
1: हम नवा का सफर,
0: और इस सफर की शुरुआत एक ब्यूटीफुल से ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड विद हम नवा। मैं हूं आरजे फरहत
1: और मैं हूं वंदना।

0: फरहत, कभी कभी लगता है कि कुछ चीजें वक्त के साथ बदलती नहीं है, बस और ज्यादा अपनी लगने लगती है ना?
1: बिल्कुल, जैसे रेडियो की वो परिचित आवाज, ये आकाशवाणी है, जिसे सुनते ही ना जाने कितनी पीढ़ियों की यादें एक साथ सामने आ जाती हैं। और यही अपनापन वंदना आज 90 वर्षों की एक शानदार यात्रा बन चुका है, एक ऐसी यात्रा जिसमें आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें या कार्यक्रम ही नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी संजोकर रखा है।
0: बिल्कुल फरत, और जब सांस्कृतिक विरासत की बात आती है ना, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का नाम खुद ब खुद सामने आ जाता है, क्योंकि आकाशवाणी ने रागों, बंदिशों और सुरों को सिर्फ प्रसारित नहीं किया, उन्हें सुरक्षित भी रखा है।
1: जी हाँ, दरअसल 1952 में शुरू हुआ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास का एक इम्पोर्टेंट अध्याय माना जाता है दोस्तों। इसमें देश के श्रेष्ठ हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों की प्रस्तुतियाँ पूरे देश में प्रसारित की जाती है,
0: और इसी कड़ी में रीजनल और फोक म्यूजिक की प्रस्तुतियों को भी आकाशवाणी ने लगातार मंच दिया है, ताकि भारत की विभिन्न संगीत परंपराओं को बराबर महत्व मिल सके।
1: बिल्कुल सही, और वंदना सिर्फ गायन ही नहीं बल्कि वाद्य संगीत को भी आकाशवाणी ने एक अलग पहचान दी।
0: बिल्कुल,
1: वाद्य वृंद जैसी पहल ने भारतीय वाद्य यंत्रों और ऑर्केस्ट्रा आधारित प्रस्तुतियों को संरक्षित करने का महत्वपूर्ण काम किया, और इसके कई रेयर म्यूजिकल कंपोजिशन आज भी आकाशवाणी के आर्काइव में सुरक्षित है।
0: जी हाँ, और वाद्य यंत्र की सबसे खास बात यह रही कि इसमें भारतीय वाद्य यंत्रों को एक साथ जोड़कर ऐसी ऑर्केस्ट्रा स्टाइल विकसित की गई जिसने शास्त्रीय संगीत को एक नया आयाम दिया, और इस पहल से पंडित रविशंकर जैसे महान संगीतकार जुड़े रहे और उन्होंने इसके शुरुआती विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आकाशवाणी से प्रसारित होता है संगीत सरिता और राग रंग कार्यक्रम, जिसे हर कोई बहुत ही लगन के साथ सुनता है, ये तो हमारे श्रोता जानते ही होंगे।
1: बिल्कुल, लगातार हम प्रसारित करते हैं दोस्तों, और फिर आता है वो नाम जिसका इंतजार हर संगीत प्रेमी हर साल करते हैं, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का बहुत बहुत मतलब
1: क्रेज रहता है,
0: बहुत क्रेज रहता है लोगों में, और 1954 में शुरू हुआ था ये सम्मेलन, जिसने आज भी देश के सबसे प्रतिष्ठित संगीत आयोजनों में इसको गिना जाता है। और खास बात यह कि इसमें सिर्फ स्थापित कलाकार ही नहीं बल्कि नई प्रतिभाओं को भी मंच दिया जाता है, यानी परंपरा और नई पीढ़ी दोनों साथ चलते हैं।
1: जी हाँ, सही कहा आपने, और कई प्रसिद्ध शास्त्रीय कलाकारों ने अपने संगीत सफर की शुरुआती पहचान इसी मंच से हासिल की, यानी कि एक तरफ अनुभवी कलाकार की वर्षों की साधना थी तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी का उत्सव। आकाशवाणी ने दोनों के बीच एक खूबसूरत सेतु का काम किया,
0: और ये सभी खजाना जो है, ये पूरा खजाना आकाशवाणी के आर्काइव्स में सुरक्षित है, जहां महान कलाकारों की आवाजें, राग, ऐतिहासिक रिकॉर्डिंग्स सब के सब सुरक्षित हैं।

0: जी हाँ आकाशवाणी, एक्चुअली इन आर्काइव में मौजूद रिकॉर्डिंग वंदना सिर्फ ध्वनि नहीं बल्कि भारतीय संगीत की जीवित विरासत है और समय के साथ आकाशवाणी ने खुद को डिजिटल तौर के साथ भी जोड़ा है। और आज लिसनर्स न्यूज ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इन कार्यक्रमों को कहीं भी रहकर कहीं पर भी सुन सकते हैं।
1: अरे इतना ही नहीं फरहत, आकाशवाणी का रागम चैनल भी शास्त्रीय संगीत प्रेमियों के बीच विशेष पहचान बना रहा है, जहाँ 24 घंटे भारतीय शास्त्रीय संगीत और उससे जुड़ी प्रस्तुतियां आती रहती हैं।
0: बिल्कुल, यानी जो राग कभी से रेडियो स्तर तक सीमित थे, आज वही मोबाइल फोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर तक पहुंच रही है।
1: बिल्कुल, और शायद यही आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत रही है, परंपरा को संभालते हुए समय के साथ आगे बढ़ना।
0: तो 90 वर्षों की इस यात्रा में न जाने कितनी आवाजें आई, कितने कलाकार जुड़े, कितने राग गूंजे, लेकिन सुरों के प्रति समर्पण कभी नहीं बदला।
1: बिल्कुल फरहत, सही कह रही हूँ, कभी नहीं बदला। और आज भी जब किसी शांत सुबह में ना राग भैरव की तान सुनाई देती है या रात के सन्नाटे में कोई गंभीर राग गूंजता है, तो महसूस होता है कि संगीत सिर्फ सुना नहीं जाता है, उसे जिया भी जाता है।
0: जी हाँ, और यही वजह है कि आकाशवाणी के 90 वर्ष सिर्फ एक संस्थान की यात्रा नहीं दोस्तों, बल्कि भारतीय संगीत और संस्कृति के उस निरंतर धारा का उत्सव है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहती चली आ रही है।
1: जी दोस्तों, आकाशवाणी के 90 वर्षों को हमारा नमन है और उन सभी कलाकारों को भी जिनकी साधना ने इन तरंगों को सुरों से भर दिया है।

0: मोही रंग दुलाल, बेहद खूबसूरत गाना, मतलब एक ऐसा रूहानी गाना कह सकते हैं इसे, जो जिसे जब भी सुनते हैं बंदा तो लगता है कि हम किसी और ऑरा में चले गए हैं, किसी
1: और दुनिया में चले,
0: दुनिया को जी रहे हैं,
1: बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना खूबसूरत संगीत, और संगीत की क्या महिमा है, इसी गीत में आप समझ सकते हैं,
0: बिल्कुल समझ सकते हैं, और वंदना की आवाज में भी आप समझ सकते हैं कि वंदना कितने लगन से इस गाने को सुन रही थी।
1: बिल्कुल, आप तो देख भी रही हैं ना मुझे, लोग तो सुन ही रहे हैं केवल।
0: बिल्कुल दोस्तों, और इसी तरह का एक और यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं किसी विषय पर, और जो बहुत ही जरूरी है आजकल के टाइम में, जिसमें देश के लाखों की संख्या में रेहड़ी पटरी और ठेला लगाकर जीवन यापन करने वाले और मेहनत कश लोगों के जीवन में आशाओं की और अपने सपनों को सजाए, उनके सपनों की नई उम्मीद जगाई है, और योजना है पीएम स्वनिधि योजना।
1: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की। फरहत, ये योजना उन छोटे व्यापारियों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, जो अपने मेहनत के दम पर अपना रोजगार चलाते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, ये छोटे व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था में दोस्तों एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम कहें बूंद बूंद से सागर भरने की बात।
1: बिल्कुल, होता है ना ऐसा कि अब देखो ना, हम अपने आसपास देखते हैं, आसपास के समाज में, जीवन में, कि ये जो बड़ी दुकानें हैं उनसे कहीं ज्यादा ये रेहड़ी पटरी पे जो अपने कारोबार को चला रहे हैं और चलता फिरता जिनका ऐसा रोजगार है, जो ये सच में देखो ना अपनी ही पूरी मेहनत के बल पर अपना सारा काम एकदम स्टैंड करते हैं, और पूरी की पूरी मेहनत, कभी कभी तो हम देखते हैं एक अकेला ही बंदा अपने पूरे व्यापार को रन कर रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे तपती धूप हो या बारिश हो, इनका काम कभी नहीं रुकता, और ये हर मौसम से लड़कर झगड़कर फिर अपनी रोजगार पे लौट आते हैं,
1: चल पड़ते हैं।
0: तो इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आज, इनके लाभ आदि पर भी बात करेंगे।
1: ठीक है, तो सबसे पहले बहुत ही आकर्षक बात जो ये है फरहत की, इसका नाम है स्वनिधि योजना
0: जी।
1: तो इसे पूर्ण रूप से हम कहते हैं प्रधानमंत्री, आप इसको इंग्लिश में अगर देखें तो देखिएगा इसके एक एक जो अल्फाबेट है वो भी इससे कैसे टैली करता है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। तो ये कुल पूरा मिलाकर हो जाता है PMSWA निधि योजना, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इसको इसीलिए नाम दिया गया, जो कि 1 जून 2020 में रोड साइड रेहड़ी ठेला या फुटपाथ पर अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं उनको सस्ती और आसान ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया।
0: बिल्कुल, और इसी बड़ी लॉबी इसके अंतर्गत आती है, फल वाले, सब्जी वाले, चाय की रेहड़ी आपने देखा होगा आपके आसपास लगाए होते हैं, ठेले पर कोई व्यवसाय करने वाले लोग हैं, मोची, चाट पानी पूड़ी वाले और फूल विक्रेता, ये सभी इसके कैटेगरी के अंदर आते हैं, और ऐसे लाखों छोटे कारोबारी इस योजना के पात्र लाभार्थी है।
1: हाँ अच्छा फरहत, ये थोड़ा सा जैसे हम इसको डिटेल में बता रहे हैं, इसी के बीच में बात करते हैं, अपने श्रोताओं से पूछते हैं कि क्या इन जो तुमने अभी नाम लिए कि ये जो छोटे मोटे व्यापार करने वाले, चाट पानी पूरी वाले और फूल वाले, फल वाले, क्या इनके बगैर हम पूरा दिन में कैसे कुछ मतलब मैनेज कर सकते हैं?
0: लड़कियों के लिए तो बहुत मुश्किल है वंदना। रीजन ये है कि भाई जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन्स हैं हमारी, उनको ये ठेलों पे खड़े होके पानी पूरी खाना और ये चाट खाना, या फिर भाई ये जो मोस्टली फल फ्रूट वाले होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, ये हम आसपास वाले लोगों से
1: चाय
0: ले लेते
1: हैं। कैसे भूल गई आप, चाय को कैसे भूल गई आप, गर्मी में आप इधर देख रही हैं एक वो बहुत रील बहुत वायरल हो रही है कि जी की जो सर्दियां हैं वो गर्मियां हैं वो उसमें बाहर विदेशों में लोग क्या क्या कर रहे हैं, कोई पूल में नहा रहा है, कोई पूरा टाइम पानी में, कोई एसी में बैठा हुआ है, और इंडिया में क्या चल रहा है भाई, इंडिया में तो
0: चाय चल रही है,
1: गमछा डालकर चाय चल रही है भाई, गर्मी को गर्मी काटती है, तो चाय वाले को भी हम नहीं भूल सकते। तो इन रेहड़ी पटरी वालों के बगैर हम अपने दिन की कल्पना
0: नहीं कर सकते। बिल्कुल,
1: और बात अगर करें कि ये विचार कैसे आया होगा, तो हम कह सकते हैं कि एक सड़क किनारे या चलते फिरते व्यापार करने वाले इन छोटे कारोबारियों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है,
0: पूंजी की।
1: तो जिससे अक्सर उन्हें क्या होता है कि कारोबारियों से ऊंची ब्याज दरों पर फिर पूंजी लेनी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि इनके पास जैसे बैंक वगैरह से लोन, अगर ये योजना के अलग अलावा बात करें तो इस योजना के अलावा उनको अगर कहीं बैंक से लोन लेना है तो बड़ा मुश्किल उनके लिए हो जाता है,
0: क्योंकि उच्च ब्याज दर देनी पड़ती है।
1: ब्याज दर और फिर बहुत सारी कुछ

0: चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो उनको उसके तौर पर रखनी पड़ती हैं,
1: गिरवी
0: गारंटी
1: गारंटी
0: के तौर
1: देनी
0: पर,
1: पड़ती है।
0: ठीक है। तो इस तरह से पैसा लेने से वो बहुत अधिक ब्याज चुकाते हैं और इससे उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा प्रतिशत ब्याज में ही चला जाता है और उनकी पारिवारिक स्थिति फिर से वैसी की वैसी ही रह जाती है, या बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती है या फिर सुधर ही नहीं पाती है कभी कभी।
1: अच्छा, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी कोरोना काल में हुई थी और ये तब
0: ये
1: उस वक्त क्या हुआ था कि
0: हाँ,
1: स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी क्योंकि भाई सबका काम बंद हो गया था और लॉकडाउन लग चुका था। तो ऐसे टाइम पे जब बाजार बंद हुए, ग्राहक कम हुए और रोजगार ठप हो गए, तो पहले के लिए जो लोन उन्होंने लिया हुआ था लोगों ने अपने काम को करने के लिए, उसे वो चुका नहीं पाते थे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त था जिससे वो लड़ रहे थे।
0: बिल्कुल, बहुत मुश्किल वो काम था जब लोगों ने उनको, मतलब उनके पर प्रेशर था कि उन्हें लोन चुकाना है लेकिन वो बेचारे अपनी रोजमर्रा की रोजी रोटी भी नहीं कमा पा रहे थे। तो ऐसे में स्वनिधि योजना की शुरुआत अंधेरी काली रात के बाद नई सुबह जैसी थी।
1: बिल्कुल सही,
0: मैं तो यही समझती हूँ।
1: और दोस्तों, योजना की मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि जो भी एलिजिबल विक्रेता है उसको बिना किसी गारंटी के, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में दी जाती है, जिसके पहले चरण में 15,000 रुपए ऋण मिलता है, दूसरे चरण जिसे 12 महीने का समय मिलता है उसे चुकाने के लिए, और अगली बार 25,000 का सेकेंड लोन मिलता है, और थर्ड लोन आपको मिलता है 50,000 रुपए का।
0: और मैं ये भी बता दूं कि जैसे फरहत ने बताया कि पहले चरण में 15,000 रुपए का ऋण मिलता है, तो अगर इसके लिए समय मिलता है 12 महीने का, अगर आप 12 महीने में इसे चुका देते हैं तो जो दूसरा चरण है उसमें आपको 25,000 का लोन मिल सकता है जिसको 18 महीने का समय दिया जाता है टाइमली इसको चुका देने का, और उसके बाद 50,000 का आपको तीसरे चरण में लोन मिल सकता है, इसके लिए आपको मिलते हैं 36 महीने।
1: बिल्कुल, और दिए गए समय पर लोन चुकाने पर सरकार आपको 7% तक की ब्याज सब्सिडी भी देती है।
0: देखिए, ये तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात होगी कि पहले हमको बिना किसी गारंटी के तो लोन मिल रहा है, और अगर आपने इसको अच्छे से अपना बिजनेस सही से चलाते हुए, भाई आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब बिना लोन लिए तो लोन लेकर आप और अच्छे से बिजनेस चला सकते हैं, आप टाइमली उसको चुका दीजिए, तो 7% आपको ब्याज में भी सब्सिडी देती है सरकार। और इसके अलावा अगर आप डिजिटल लेन देन कर रहे हैं तो पर मंथ आपको 100 रुपीज का कैशबैक भी आ जाता है।
1: जी हाँ, और सभी शहरी, अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये योजना है, बस वेंडर्स के पास स्थानीय निकाय हो, यानी कि आपके जो ULBs हैं उनके द्वारा जारी किया हुआ वेंडिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों, बहुत लोगों के पास ये हो सकता है कि ना हो, तो आप स्थानीय निकाय या फिर टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिसे कहते हैं LOR, वो बनवा सकते हैं, उससे भी आप आवेदन कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और पोर्टल अगर आप, मतलब अगर आप टेक्नो से भी हैं और आप यूज करते हैं पोर्टल वगैरह पे आप कर सकते हैं काम, तो जन समर्थ पोर्टल या माई स्कीम पोर्टल से भी आप सीधे आवेदन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए बता दो ऑफिशियल वेबसाइट क्या है।
1: जी हाँ, हमारी ऑफिशियल इस योजना के तहत ऑफिशियल वेबसाइट है pmswanidhi.mohua.gov.in,
0: और टोल फ्री नंबर है 1800111979, 1800111979।
1: तो बिल्कुल सेल्फ डिपेंड बनिए दोस्तों, और भाई अपने आपके अपने रोजगार में 4 चांद लगाइए, योजना का लाभ लीजिए।
0: तो फरत, जल्दी से हम फटाफट से इसके लाभ एक बार बता सकते हैं कि हमें ये योजना हमारे समाज में लोगों को किस तरीके से लाभ पहुंचा रही है, कि लोग सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं।
1: जी,
0: जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, उनको कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं रहता है और उनकी बैंक से कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। और जो लेडीज स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी हेल्प होती है, और इसी बहाने महिला सशक्तिकरण में भी एक भूमिका निभा रहा है, ठीक है ना।
1: Exactly.
0: और काम बढ़ते हैं तो रोजगार का सृजन होता ही है। अब आपने जैसे काम बढ़ाया, पहले आप अकेले काम कर रहे थे, अब आपको 4 लोगों की जरूरत पड़ी।
1: बिल्कुल.
0: तो 4 लोगों की और नई रोजगार मिल गया, और अपग्रेडेशन होता है लिविंग स्टैंडर्ड पे, है ना। आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है जब आपका काम अच्छा होता है, आप खुश भी रहते हो, तो कहीं ना कहीं समाज में कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव चीजें बढ़ती हैं, है ना। और नागरिक, फिर प्रदेश और देश, इससे आर्थिक प्रगति के बाद एक कड़ियां जुड़ती जाती है।
1: मतलब एक छोटी सी योजना, और देखिए ना कहाँ तक पहुंच रख रही है। तो अगर आप शुरुआत करते हैं तो भाई आपकी भी कमाई में बरकत हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: बस ये है कि एक स्टेप उठाना है आपको, आवेदन करना है और इस योजना का लाभ उठाना है। तो बढ़ते रहिए आगे, जैसे कि हम बढ़ रहे हैं अपने प्रोग्राम में, और आपको सुना रहे हैं एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक।

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कानपुर देहात एवं उन्नाव जनपद के उपभोक्ताओं की डाक विभाग की सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु अधीक्षक डाकघर कानपुर प्रखंड के कार्यालय कक्ष में पता कानपुर जीपीओ भवन बड़ा चौराहा दिनांक 15 जून 2026 को समय 11 बजे डाक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उपभोक्ताओं की पंजीकृत वस्तुओं, धनादेशों, बीमाकृत वस्तुओं, बचत बैंक एवं अन्य संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। अपनी समस्याओं, शिकायतों के निदान हेतु डाक अदालत में उपस्थित होने के इच्छुक उपभोक्तागण अपनी समस्याओं, शिकायतों के पूर्ण विवरण सहित अधीक्षक डाकघर कानपुर मुख्य प्रखंड कानपुर के कार्यालय में दिनांक 10 जून 2026 तक अवश्य उपलब्ध करा दें। निर्धारित तिथि तक परिवाद प्राप्त न होने पर परिवाद समस्या पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samrit Bharat. Join Indian Navy.
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
2: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर के संग इस वक्त ट्यून इन है आप और सुन रहे हैं प्रोग्राम हमनवा आरजे फरहत और मेरे यानी वंदना के साथ। दोस्तों, चलते रहना जीवन की कहानी है, किसी की चाल धीमी तो तेज, किसी की रफ्तार की भी सबकी अलग कहानी है।
1: रफ्तार सीमित रहे तो मंजिल तक हम पहुंचते हैं, खुशी खुशी सुस्त और धीमी रफ्तार किसको रास आती है।
0: जी हाँ, कुछ ऐसी ही है बात हमारे कानपुर की, जो अब विकास के राहों पर चल नहीं रहा बल्कि दौड़ रहा है सवार होकर मेट्रो पर।
1: हाँ, एकदम सही कहा बंदा। ये मेट्रो जो शुरू हुई है ना, इसने कानपुर की तस्वीर और तकदीर दोनों को नई दिशा दी है।
0: जी हाँ, एक लंबे अरसे से हमारा कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी रहा है, वो हमेशा ही किसी न किसी आयाम में विकासशील रहा ही है, लेकिन अब मेट्रो के साथ मिलकर भाई विकास किसी और ही लेवल पर है, है ना भरत? और किसी विकास की एक और नई कहानी लिख रहा है हमारा कानपुर।
1: मेट्रो हमारे कानपुर की नई और आधुनिक पहचान है। वैसे तो कानपुर में काफी सारी चीजें होती आई हैं और कानपुर की नई पहचान बनती भी आई है। ये केवल परिवहन की साधना नहीं है, अब हमें खुशी भी देती है और बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने शहर में मेट्रो ट्रेन, मेट्रो स्टेशन और इससे जुड़ी सभी डेवलपमेंट्स देखते हैं।
0: बिल्कुल फरहत, बहुत ये बात तुमने बहुत अच्छी कही कि बहुत खुशी होती है जब हम अपने शहर में मेट्रो और मेट्रो से जुड़ी जितनी भी मतलब जरूरतें हैं जो मेट्रो के साथ साथ मेट्रो स्टेशन बने हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। उनके नीचे से जब निकलते हैं तो आसपास वो जो रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हैं वहाँ पे बड़ी रोशनाई और बड़ा साफ सुथरापन, बड़ा प्यारा सा ग्रीनरी वगैरह सब हमें जब दिखती है ना, तो हमें कहीं ना कहीं अगर कानपुर की बहुत पुरानी वाली तस्वीर याद करें तो लगता है यार अब कानपुर बहुत बहुत बदल गया है, बहुत अच्छा लगता है। और कानपुर मेट्रो से शहर में यातायात और कनेक्टिविटी अब ना पूरी तरह बदल रही है, जाम की समस्या काफी कम हो गई है और दूर दराज

0: इलाकों के बीच का सफर बहुत आसान कर दिया है। जैसे अगर हम बात करें तो सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता बहुत दूर, और कभी कभी लोगों को जो जनरली टाइम लगता था 1 से 1.5 घंटे का लग ही जाता था, लेकिन अब बहुत आसान हो गया।
1: हाँ, मतलब मेट्रो में बैठो और पता भी नहीं चलता झट से कब नौबस्ता पहुंच गए। और तो यार इससे रियल इस्टेट और व्यावसायिक गतिविधियों को भी काफी बढ़ावा मिला है। लोग व्यस्त ट्रैफिक से बचकर राहत भरा सफर तय करने लगे हैं। चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल, IIT से नौबस्ता तक ये सफर बहुत ही आरामदायक हो गया,
0: सुहाना सफर हो गया है। और एसी से एसी मेट्रो का सफर बेहद लाजवाब अनुभव लोगों के लिए, हम सब कनपुरियों के लिए ना। और इसके साथ ही मेट्रो यात्रा पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है और सैकड़ों लोग मेट्रो पर यात्रा कर रहे हैं, जिससे सिटी में पॉल्यूशन लेवल में बहुत कमी आई है और आगे भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे ही कमी आएगी।
1: बिल्कुल सही कहा, युवा वर्ग विशेष तौर पर मेट्रो के सफर को पसंद करता है बनना। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब मेट्रो नई नई स्टार्ट हुई थी ना, तो लोगों को अगर कहीं नहीं भी जाना है तो भी टिकट लेके एक छोर से दूसरे छोर तक तो पहुंच ही जाते थे।
0: बहुत मतलब मस्ती कर रहे थे लोग कि चलो मेट्रो में देखते हैं कैसा लग रहा है, अपना कानपुर ऊपर से कैसा लग रहा है, जब हम ऊपर पुल से जा रहे हैं तो कैसा दिख रहा है कानपुर। और फरत ना, जहाँ मेट्रो स्टेशन बने वहाँ आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ गई हैं, छोटी दुकानों और रेस्टोरेंट्स के जो है ना, उनको भी मौका मिला है बढ़ने का, है ना।
1: और ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि इस मेट्रो के आने से अन्य क्षेत्रों जैसे कि निर्माण कार्य से लेकर संचालन तक सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला है, मतलब बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला
0: है। आप सोच के देखिए ना कि जहाँ मेट्रो स्टार्ट हुई है वहाँ पर जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो तो खुले ही खुले हैं, लेकिन उसके आसपास जो अभी हम जिनकी स्ट्रीट वेंडर्स की बात कर रहे हैं कर रहे थे, तो वो भी खड़े हो जाते हैं अगर कभी, तो जब एक हुजूम निकलता है जनता का, पैसेंजर्स का, तो लोग वहां पर एक छोटी सी थोड़ी देर के लिए ना एक मार्केट टाइप की लगने लगती है। तो ठीक है, उनको भी मौका मिला है, बहुत अच्छा, एक अच्छे माहौल में चीजें हो रही हैं, तो अच्छा लगता है कि बहुत इससे लोगों को मौका मिला है, रोजगार मिला है। और अच्छा, पर्यावरण की दृष्टि से भी मेट्रो एक मुझे लगता है बेहतर विकल्प है।
1: जी हाँ, सेफ्टी पॉइंट से भी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है ये लोगों की पहली पसंद बन रहा है।
0: बिल्कुल, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, और सही में ये लोगों की पहली पसंद ही है, क्योंकि सड़क पर तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बेतरतीब लोग गाड़ियां अभी भी चलाते हैं, जिम्मेदारी से बहुत ही कम लोग हैं, रेयर हैं, जो बहुत ही जिम्मेदार होकर सड़क पर गाड़ी चलाते हैं। तो स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है, नई रफ्तार मिली है हमारे कानपुर को बिकॉज ऑफ मेट्रो।
1: बिल्कुल, आधुनिक स्टेशंस, डिजिटल टिकटिंग, एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स और पैसेंजर कंफर्ट सर्विस, ये सभी मिलकर शहर को आधुनिक रूप दे रही है।
0: बिल्कुल, जब हमारे घर से, अच्छा एक चीज बताना, इस बात को कहने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, जब पहले घर पे कोई आता था बाहर से कुछ दिनों के लिए रुकने, जैसे सपोज करो कोई भी रिश्तेदार आए, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में, तो हम उन्हें घुमाने ले जाते थे ना कि चलो हमारे शहर में क्या क्या हम दिखाते, तो क्या मेन चीजें कहाँ जाते थे बताओ?
1: मोस्टली मोती झील पहुंच जाते थे।
0: ये बड़ा कॉमन नाम है भाई, मोती झील।
1: बचपन में मोती झील का जो क्रेज होता था, या चिड़ियाघर पहुंच जाते थे अगर जानवर देखने का शौक है या ज्यादा टाइम बिताना है।
0: बिल्कुल, अच्छा मुझे मोती झील से ना एक बात याद आई बहुत हंसी की, कि जब मैं छोटी थी और मोती झील का नाम पहली बार सुना था, तो मैं जब अपने मतलब पेरेंट्स के साथ गई, तो मैं अपने पापा से पूछा था, पापा यहाँ मोतियाँ कहाँ हैं? मोतियाँ झील तो दिख रही थी, मोती नहीं दिख रहे थे कहीं, तो पापा कहता ये नाम है इसका मोती झील, मोती नहीं दिखेंगे यहाँ पर भाई। तो वो हमेशा से मेरी याद में, जहन में बना हुआ है अभी, कि मोती झील है वहाँ पे, मोती नहीं है, झील तो दिख जाती है भाई, मोती कभी नहीं दिखे।
1: तो मोतियों से चमकता मेट्रो स्टेशन।
0: हाँ बिल्कुल, तो अब उसकी कमी कहीं ना कहीं मेट्रो स्टेशन ने पूरी कर दी है। तो अब जब हमारे घर में कोई बाहर से आता है तो हम उन्हें घुमाने ले जाने में बहुत शान का अनुभव करते हैं कि जी हाँ, अब हम भी मेट्रो वाले हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, आने वाले समय में जब मेट्रो नेटवर्क और विस्तृत होगा दोस्तों, तब इसका बेनिफिट और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा, शहर के दूरस्थ क्षेत्रों में भी इसका विस्तार होगा और विकास होगा।
0: तो अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बस चलते चलते मेट्रो के लिए यही कहना चाहते हैं कि रफ्तार है जीवन की पहचान, आगे बढ़ना होता है सबका अरमान, सपनों को देती मेट्रो नई उड़ान, और रफ्तार तेज कर आगे बढ़े देश और इंसान।

वेल रुकी रुकी थी जिंदगी, झट से चट पड़ी, और ये हम कह सकते हैं मेट्रो के सेंस में कि भाई जिंदगी जो थोड़ी सी रफ्तार धीमी हो गई थी उसने रफ्तार फिर से पकड़ ली, और इस रफ्तार में हम सुनाने जा रहे हैं एक एक्सपर्ट की राय, वो क्या कहते हैं इस बारे में, आइए सुनते हैं।

मैं नीलत्र उपाध्याय आईटी और मैनेजमेंट के कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस में इन्वॉल्व हूँ। अब कानपुर में मेट्रो है तो अभी शुरुआती चरण में ही, निश्चित है इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबको मालूम है कि कानपुर एक पोल्यूटेड शहर है, सड़कें काफी बेहतर हुई हैं लेकिन अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। जाम की समस्या है ही, हर रूट पे ई रिक्शे और ऑटो टेम्पो के वजह से, चूंकि एक व्यापारिक केंद्र है तो और भी बहुत सारे मालवाहक गाड़ियां पूरे सड़क को किसी न किसी रूप में घेरे रहती हैं। तो अगर लंबी दूरी जानी हो तो निश्चित है एक स्वच्छ वातावरण में, एक सुरक्षित वातावरण में आदमी बैठ के यहाँ से लेकर वहाँ तक जा सकता है। इसका फायदा थोड़ा सा और मिलेगा जब नेटवर्क इसका और बड़ा होगा। निश्चित है कि जो ट्रैफिक का दबाव है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। मेट्रो ये एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से जनता को कुछ बेहतर सुविधा मिल सकती है। नहीं तो शहर उतना ही बड़ा है, सड़कें वही हैं, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं। इन सबका एक विकल्प यही है कि दिल्ली स्टाइल में यहाँ पे इसके नेटवर्क को और बेहतर किया जाए। जो नालियाँ हैं, सीवर हैं, जो छोटे छोटे ऐसे स्पॉट्स बने हुए हैं जहाँ पे फोर व्हीलर टू व्हीलर के लिए काफ़ी मुश्किल सामना करना पड़ता है, निश्चित है उससे बेहतर है।

0: कुल मिला के एक शुरुआत है। जितना ज्यादा नेटवर्क बनेगा उतना ही ज्यादा हम लोग को फायदा मिलेगा, बाहर से आने वालों को भी थोड़ा सा सुकून मिलेगा। इसके माध्यम से जो भी जहाँ से भी मेट्रो की लाइनें गुजरती है वहाँ की सड़कें भी अच्छी हो जा रही हैं, थोड़ा ग्रीनरी बढ़ जा रही है, टू वे रोड बन जा रहे हैं, तमाम फायदे हैं। निश्चित है कि शुरुआत है और इसका कानपुर वासियों को बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू।
1: जी हाँ, कानपुर वासियों को फायदा मिल रहा है और ये सफर और भी ज्यादा लाजवाब हो गया, हम ये भी कह सकते हैं
2: सुहाना होने वाला है। बिल्कुल
1: बिल्कुल होने वाला है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि टाइम हो गया है 11:47 और साथ ही प्रोग्राम चल रहा है हम नवा 102.2 FM रेनबो कानपुर से। आज आप इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं आरजे फरहत और आरजे वंदना के साथ, और इस वीकेंड पर ब्यूटीफुल से सॉन्ग भी प्ले कर रहे हैं वंदना हम हमारे सभी लिसनर्स के लिए।
2: बिल्कुल। वैसे फरहत, वीकेंड आते ही थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल जाता है रेडियो सुनने के लिए, है ना, गाने एंजॉय करने के लिए, पर जितने तरह के लोग उतने प्लान भी बन जाते हैं। वीकेंड आते ही कोई शॉपिंग पर निकल जाता है, कोई अपना पेंडिंग काम निपटाता है और कोई पूरा दिन बस आराम से लेकर जाना चाहता है।
1: बिल्कुल। और अगर घर में बच्चे हों तो उनके लिए वीकेंड का मतलब होता है कि अब मम्मी पापा हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई पूरा हफ्ता तो पैक्ड शेड्यूल रहता है, उसी में निकल जाता है और वीकेंड भी कब निकल जाता है ये भी पता नहीं चलता।
2: ये बिल्कुल सही कह रही हो फरत, और शायद इसी वजह से आजकल एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि बच्चों के पास सब कुछ है, गेम्स हैं, गैजेट्स हैं, इंटरनेट है, लेकिन फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बच्चे कहीं ना कहीं नहीं बिता पा रहे हैं।
1: बिल्कुल सही। और इसलिए आज हम बात करेंगे कि आखिर वीकेंड को बच्चों के लिए कैसे यादगार बनाया जाए। दोस्तों आपने शायद नोटिस किया होगा कि आजकल बच्चों के पास खिलौने ज्यादा, सुविधाएं ज्यादा है, लेकिन अपनों का जो समय है ना बंदना वो बहुत कम है।
2: हाँ बिल्कुल कम है, और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है फरत, हम बड़े भी पूरे हफ्ते ऑफिस, स्टडीज और अपने डेडलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने बिजी हैं कि कभी कभी पता ही नहीं चलता कि बच्चे हमारे बड़े कब हो गए।
1: बिल्कुल सही। और फिर आता है वीकेंड हमें याद दिलाने, लेकिन वंदना वीकेंड भी ना कई बार शॉपिंग, हाउस होल्ड वर्क्स या फिर मोबाइल स्क्रॉलिंग में निकल जाता है।
2: ये एकदम सही कह रही हूँ। ये आप एकदम सही बात कही है तुमने।
1: बिल्कुल, सुबह भी मैंने मोबाइल पे बात करी थी कि भाई ये जो टाइम है ना थोड़ा सा हमें डिटॉक्स करना चाहिए, मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए। और जरा सोचिए दोस्तों कि आखिरी बार आपने अपने बच्चे के साथ बिना किसी फोन कॉल, बिना किसी नोटिफिकेशन और बिना किसी जल्दबाजी के सिर्फ उनकी बातें कब सुनी थी, सोचिए।
2: बिल्कुल फरत, बच्चों को हमेशा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स या बिग आउटिंग्स ही नहीं चाहिए होती, कई बार उन्हें बस इतना चाहिए होता है उन मासूमों को कि कोई उनकी बात सुन ले, उनके साथ खेल ले, उनके साथ हंस ले। मेरे हिसाब से तो ना क्वालिटी टाइम का मतलब घंटों साथ रहना नहीं है, बल्कि कुछ समय ही अगर ऐसा हो जिसमें आपका पूरा अटेंशन सिर्फ बच्चे पर रहे और बच्चे का पूरा अटेंशन आप पर रहे,
1: बहुत सही,
2: वो एक क्वालिटी टाइम है ना,
1: वो ही क्वालिटी टाइम है। और आज के समय में एक और बड़ा चैलेंज है स्क्रीन टाइम, भाई मोबाइल फोन वीडियो गेम्स भी है, सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स बच्चों की जिंदगी का ये सब हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में वीकेंड एक अच्छा मौका हो सकता है कि भाई घर में एक नो मोबाइल आर रखा जाए, एक घंटा सिर्फ फैमिली टाइम।
2: वेरी वेरी, मतलब बहुत अच्छा, ये सेगमेंट बहुत अच्छा हो सकता है पूरे घर में, 24 घंटे में ही सबसे अच्छा घंटा होगा मुझे लगता है। और इस एक घंटे में ना लूडो खेलिए, कैरम खेलिए, बैडमिंटन के साथ ड्रॉइंग बनाइए या कोई स्टोरी सुनाइए बच्चों को। दोस्तों कई बार सबसे खूबसूरत मेमोरीज बिल्कुल सिंपल पलों से ही बन जाती।
1: हाँ, अच्छा, अक्सर हम बच्चों से पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, है ना, यही पूछते हैं, लेकिन ये कम पूछते हैं कि उन्हें अभी क्या पसंद है।
2: हाँ,
1: मतलब जो प्रेजेंट चल रहा है उसमें उन्हें
2: क्या पसंद है।
1: तो चलिए दोस्तों इस वीकेंड बच्चों से एक सवाल पूछिए कि आज तुम क्या करना चाहते हो सकता है उनका जवाब आपको सरप्राइज कर दे।
2: बिल्कुल, जब बच्चों को लगता है कि उनकी राय भी इंपॉर्टेंट है, उनसे पूछा जा रहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और रिश्ता मजबूत होता है उन्हें। अगर पॉसिबल हो तो कोई छोटी सी आउटिंग भी प्लान हम कर सकते हैं हर बार, कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी ट्रिप हो, नियर बाय पार्क है, लाइब्रेरी है, जू, या बस इवनिंग वॉक भी बच्चों के लिए खास बन सकती है।
1: और एक चीज जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी से कम होती जा रही है, स्टोरीज, पहले दादी नानी की कहानियां हुआ करती थी ना, और आज अगर
2: मुझे तो लगता है अब दादी नानी अभी फोन स्क्रॉल करती है।
1: वेल, अगर वो क्या करें ना कि हम अगर रोज बच्चों के लिए, रोज नहीं कर सकते, तो वीकेंड पर ही से ही कि बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग की आदत शुरू करें, तो उनकी इमेजिनेशन को और फैमिली बॉन्डिंग दोनों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
2: बिल्कुल, और शायद यही क्वालिटी टाइम की सबसे बड़ी पहचान है कि बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करे।
1: जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों बच्चे बड़े होकर ये शायद भूल जाए कि उन्हें कौन सा टॉय मिला था, लेकिन उन्हें ये जरूर याद रहेगा कि उनके अपने लोगों ने उनके साथ कैसा समय बिताया था। तो इस वीकेंड एक छोटा सा रेजोल्यूशन लेते हैं, मोबाइल थोड़ा कम, कन्वर्सेशन थोड़ी ज़्यादा, स्क्रीन थोड़ी कम और स्माइल थोड़ी ज़्यादा।
2: क्या बात है, तो बच्चों के साथ ऐसे पल बिताइए, ऐसे पल बनाइए जो सिर्फ फोटो एल्बम में नहीं दिलों में भी हमेशा के लिए छप जाए, बस जाए। इसीलिए इस वीकेंड को बनाइए खास, जैसे कि हम बना रहे हैं बच्चों के लिए ये स्पेशल सा प्यारा प्यारा सॉन्ग सुनवा कर।

0: तो बम बम बोले मस्ती में डोले, बहुत ही अच्छा लगा होगा ये गाना आई थिंक बच्चों को, क्योंकि ये उनके लिए
1: मस्ती भरा
0: सॉन्ग था। हाँ, और जहाँ मस्ती की बात आती है तो बच्चों का तो ये फेवरेट सेगमेंट होता है, एक तरह से
1: सेगमेंट होता है, उनके जीवन ही मस्ती होता है बच्चों का।
0: वरना वैसे घड़ी जो है ना वो कह रही है हमसे कि 11:55 हो चुके हैं
1: और ये भी कह रही है कि रेसिपी भी बता दो।
0: जी रेसिपी बता दो,
1: बन नहीं पाएगी
0: बिल्कुल। तो दोस्तों आप नोट कर लीजिए रेसिपी कॉपी पेन पेपर लेके, वैसे तो बहुत आसान सी और बहुत हेल्दी रेसिपी होने वाली है ये, और क्योंकि हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए जरूरी है हम आपसे ये रेसिपी भी कुछ ऐसी ही शेयर करें जो आपको बनाए हेल्दी और टेस्ट भी हो जिसमें भरपूर।
1: जी दोस्तों आज की रेसिपी है हेल्दी और सरप्राइजिंग टेस्टी, और ये है लौकी चना दाल।
0: जी हाँ, वरना लौकी को लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको पता है कि एक समर सुपर फूड है जो बॉडी को कूल रखती है, डाइजेशन इम्प्रूव करती है और वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है।
1: और जब इसमें ऐड होती है चना दाल तो मिलता है प्रोटीन बूस्ट जो मसल्स के लिए जरूरी है और आपको लंबे समय तक फुल, मतलब आपकी टमी फुल होती है ऐसा फील कराता है।
0: बिल्कुल, तो इसे बनाने के लिए दोस्तों हमें चाहिए 1 कप लौकी छिली और कटी हुई, 1/2 कप चना दाल आधे घंटे भिगोई हुई, 1 टमाटर कसा हुआ, 1 से 2 हरी मिर्च और 1 छोटा चम्मच

0: चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट
1: और साथ ही आधा छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच तेल, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए।
0: अब करना ये है कि कुकर में थोड़ा सा ऑयल ऐड करें और उसमें जीरा का तड़का लगाएं। अब उसमें अदरक, हरी मिर्च और टमाटर ऐड करें और 2 मिनट पकाकर लौकी ऐड कर दें।
1: और साथ में डालिए भीगी हुई चना दाल, थोड़ी सी हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक और प्रेशर कुकर में 2-3 सीटी आने तक मध्यम आंच तक इसे पका लीजिए।
0: और बस रेडी है एकदम लाइट, टेस्टी और न्यूट्रिशियस डिश।
1: और फर्क पता है, अच्छी बात यह है कि ये डिश बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए सबके लिए परफेक्ट है।
0: बिल्कुल, स्पेशली गर्मी के मौसम में जब हैवी खाना सूट नहीं करता ना, तभी लौकी चना दाल एक परफेक्ट ऑप्शन बन जाती है।
1: बिल्कुल, तो इस सीजन इसे एक नहीं बार बार ट्राई कीजिए। और यदि और याद रखिए कि हेल्दी खाना बोरिंग नहीं होता, बस उसे सही तरीके से बनाना आना चाहिए।
0: बिल्कुल सही तरीके से बनाना आना चाहिए और ये डिश यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगी। तो आज तो वैसे वीकेंड है, तो आप ट्राई कर सकते हैं कुछ इस तरह का बनाना, लौकी चना दाल बनाइए।
1: और लौकी की जैसे तुमने बात करी, तो लौकी एक वाकई में समर सुपर फूड है। लौकी की हम इन दिनों ट्राई कर सकते हैं, लौकी की बर्फी बना सकते हैं, है ना, लौकी के कोफ्ते बना सकते हैं जिसमें हम कम मसाले डाल के यूज करें। कोफ्ते बच्चों को ऐसा लगता है ना, जैसे कुछ बाहर के खाने के बच्चे बहुत ही शौकीन होते हैं।
0: और आप चाहे तो लौकी से मंचूरियन बॉल्स भी बना सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बनती है, मैंने ट्राई करी है घर में और बहुत अच्छी बनती है। तो बच्चों को ना ये चीजें जब घर पे हम ऐसी चीजें देने लगेंगे ना जो उन्हें बाहर इजिली अवेलेबल नहीं है, भाई बाहर तो वो लौकी के कोफ्ते नहीं खा पाएंगे, तो उन्हें घर के खाने की भी आदत हम अच्छे से डलवा सकते हैं ना।
0: बिल्कुल, और डलवा सकते हैं। हाँ। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि वीकेंड है तो वीकेंड का पूरा मजा लीजिए, अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताइए, उन्हें इस मोबाइल स्क्रीन से थोड़ा सा दूर ले जाइए, उन्हें हेल्दी खिलाइए। और दोस्तों, क्योंकि हेल्दी लाइफ ही हेल्दी ब्रेन विकास करता है, ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही, हाँ, स्वस्थ बॉडी में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।
1: और जब हम स्वस्थ रहेंगे पूरी तरह, तो हम अपने हर काम को बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। और जब अच्छे काम को अच्छी तरह कर पाएंगे तो हमारे रिजल्ट अच्छे होंगे, फिर हम वापस खुश हो सकते हैं। तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है।
0: जैसे कि देखिए, हमारी बातों की कड़ियां जुड़ रही हैं। फिलहाल अब प्रोग्राम का टाइम पूरा हो चुका है वरना, तो अब हम लेना चाहेंगे अपने लिसनर से इजाजत प्रोग्राम को वाइंड अप करने की, तो लेकिन वंदना रहेंगी आपके साथ 3 बजे से म्यूजिकल प्रोग्राम में। फिलहाल फरहत को और वंदना को इस प्रोग्राम यानी कि हमनवा से दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमन में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने नागरिकों को आश्वासन दिया कि देश गरीबों के लिए व्यापक अवसंरचना विकास और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधार की दिशा में आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की लागत वाली 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक प्रदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने राज्य के हर जनपद का विकास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोंडा में आज शुरू होने वाली परियोजनाएं जनपद के विकास को नई दिशा देंगी और जन सुविधाओं का विस्तार करेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनपद के विकास के लिए लंबित कई मांगों को स्वीकृति दी है, जिसमें घाघरा नदी में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम भी शामिल है। IIM लखनऊ में अब 12वीं पास छात्र छात्राओं को भी पढ़ने का मौका मिलेगा। संस्थान के शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बैचलर ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिजनेस

एनालिटिक्स में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2025 या 2026 में 12वीं पास करने वाले छात्र छात्राएं इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को जेई एडवांस 2026 की कॉमन रैंकिंग में होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 है। इच्छुक छात्र आईआईएम लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर के छप्पर थाना क्षेत्र में दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार बाइक की ट्रक से टक्कर हो गई। बाइक पर सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई।

तिथि 3 जुलाई 2026 है। इच्छुक छात्र आईआईएम लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर के छप्पर थाना क्षेत्र में दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार बाइक की ट्रक से टक्कर हो गई। बाइक पर सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एसपी संजय कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो पा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: हमारी जनगणना हमारा विकास।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 12:04:50 हो चले हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है शत्रुपा, जिसमें शालिनी है आपके साथ लेकर फन। और कौन सा फन? फैमिली वाला फन। देखिए फन बहुत सारे होते हैं, हम बाहर जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, स्कूल में करते हैं, कॉलेज में करते हैं, लेकिन जो फन हम अपनी फैमिली के साथ करते हैं ना दोस्तों, उसकी बात ही कुछ और होती है। वो दिल से जुड़ा होता है, एहसास से जुड़ा होता है, प्यार से जुड़ा होता है ना। तो बस सैटरडे को हम करने आते हैं आपके साथ यही फैमिली वाला फन। तो तैयार हो जाइए, कैसे होगा फन? हमारे साथ बने रहना होगा, अपनी फैमिली के साथ ज्वाइन करना होगा आपको 100.7 FM रेनबो, और साथ में इतने प्यारे से ट्रैक कि आपको थिरकने पर मजबूर कर देंगे। और क्या क्या होंगी बातें बताएंगे जरूर इस गाने के बाद, लेकिन तब तक की पूरी फैमिली को रेडी कर लीजिए फन के लिए, तैयार कर लीजिए।

और इसी प्यार के साथ शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की, जिसमें करने वाले हैं हम ढेर सारा फन। तो बताइए, सभी लोग एक साथ हो गए? अरे हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है एक साथ होना, क्योंकि सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना दोस्तों, सब साथ होते हुए भी अलग अलग लगते हैं। कोई किसी चीज में बिजी है तो कोई किसी चीज में। हाँ, होता एक चीज है हाथ में, हमारा स्मार्टफोन, है ना। और जब गैदरिंग होती है ना, अब कहते हैं ना कि पिक्चर नहीं दिखाई जा सकती, कैसे दिखाई जाए, लेकिन जो बात हम कह रहे हैं उसको आप महसूस कर सकते हैं। चाहे पार्टी में हो, चाहे कहीं पर भी जगह में आप बैठे हो, लोग घूमने जाते हैं लेकिन जैसे ही मोबाइल ऑन करते हैं बस उसी में लग जाते हैं। तो पास रहते हुए भी पास नहीं होते हैं। तो घर में आज

आप अपने काम में लगे रहिए, लेकिन दिल एक दूसरे से कनेक्ट करिए। और जरा सोचिए कि लास्ट टाइम कौन सी ऐसी बात आपकी थी जो किसी के दिल को छू गई थी, यानी कि दिल में चुभ गई थी। क्या ऐसा कहा था आपने? अगर वो आपको याद आ रहा है ना, तो बिना किसी झिझक के अंदर की आत्मा को मजबूत करके उस इंसान से आप आज सॉरी बोल दीजिए। जी हाँ, प्यार से बोलिए, देखिए कितना बदलाव आप खुद में महसूस करेंगे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: सात रंग का इंद्रधनुष है,
6: सात सुरों की सरगम है,
7: सात जन्म है सात समंदर,
5: सात हमारा हरदम है,
7: जिंदगी के सतरंगी रंग
6: FM रेनबो के संग।

दोस्तों, जब हम एक दूसरे से दिल से मिलते हैं ना, तो जो खुशी होती है उसका एहसास तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो आज हम फैमिली के साथ हैं, फन के साथ हैं, और आज का जो फन है वो थोड़ा सा अलग है। जी हाँ, आज का जो फन है वो हम दिल से अपने प्यार की बातें एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, है ना। काम चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, हैं घर के ही अंदर, और कुछ देर के लिए मोबाइल फोन को आप अपने से दूर कर दें। अब ये आप कहेंगे कि कैसे कर दें, उसी से तो हम एफएम रेनबो सुन रहे हैं, तो वॉल्यूम तेज करिए और उसको हाथ से दूर करिए। कई बार होता है कि एक साथ हम कई सारे काम कर रहे होते हैं, जो दूसरा कुछ हमसे कह रहा होता है उससे बोलते हैं, हाँ हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ या मैं सुन रही हूँ, और अपने काम में लगे रहते हैं। और जब कोई चुप हो जाता है अचानक, तब फिर से याद आती, अच्छा हाँ बताया नहीं अपनी बात, जबकि अगला पूरी बात कह चुका है। तो इस तरह का जो काम हम करते हैं ना, नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। जब कोई बात आपसे कर रहा है, अपनी बात बता रहा है, तो उसे पूरा अटेंशन दें और पूरी तरह से उस बात को सुने। उतनी देर में कुछ देर नहीं हो जा रही है ना। तो बस परिवार की बात है, परिवार के साथ रहना है, परिवार में हंसी खुशी आपके हाथ में है, क्योंकि एक एक इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है।

होता है, और कहते ना कि पूरा शरीर हमारा एक है, उसी तरह से परिवार एक है। शरीर में कहीं पर भी अगर जरा सी भी चोट है ना, तो पूरे शरीर को तकलीफ होती है। ठीक वैसे ही परिवार में भी होता है हर इंसान का खुश रहना।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जी हाँ, चाहे किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, किसी भी चीज को आप विश करना चाहते हैं, तो उस इंसान से एक बार जरूर कुछ मिनट क्या कुछ सेकंड निकाल कर कॉल करके उसे मिल के उसे बधाई जरूर दें। आज ये काम कर लें, अपने परिवार का ही कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से, अरे कुछ नहीं तो हैप्पी सैटरडे बोल दीजिए भाई कि सैटरडे है, खुश रहो। और क्या हो रहा है, क्या एक कप चाय पर एक दूसरे के साथ हो जाएं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

12:54 और 50 सेकंड का वक्त हो चला है और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी प्रोग्राम शत्रुपा को करना होगा यहीं पर फाइंड अप, और इसी के साथ बस आपसे ये कहना है कि थैंक यू जरूर बोले आज एक दूसरे से किसी भी छोटी चीज या बड़ी चीज पर।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की लागत वाली 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने राज्य के हर जनपद का विकास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोंडा में आज शुरू होने वाली परियोजनाएं जनपद के विकास को नई दिशा देंगी और जन सुविधाओं का विस्तार करेंगी। लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज शाम शहर के प्रबुद्ध नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद और बैठक करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण किया और वायु युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधियों ने भगवान बुद्ध के उपदेश स्थलीय सारनाथ का भ्रमण किया। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल के दर्शन के दौरान ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से काफी प्रभावित हुए। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना है, ताकि वे भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी वैश्विक प्रासंगिकता को समझ सकें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में

बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों की बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। सुल्तानपुर में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले सीताकुंड घाट को गोमती कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए भूमि पूजन कर परियोजना का शुभारंभ किया गया। भूमि पूजन के दौरान स्थानीय विधायक विनोद सिंह ने कहा कि लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से सीताकुंड घाट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसमें अत्याधुनिक घाट, शौचालय, स्नानागार, प्रकाश व्यवस्था के साथ अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सुल्तानपुर की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित करने के लिए पुरातत्व विभाग ने 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति की है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं? और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

दोस्तों 1:04 और 24 सेकंड हो चले हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है ओठों पे तेरी बात। और आज है सैटरडे, तो बस आपका जो मस्ती वाला प्लान है, आप क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, वीकेंड में क्या तैयारियां हैं। समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और अब ज्यादा कहेंगे ना तो ये 5-10 दिन पता नहीं चलते कब कहाँ चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे, हो सकता है। तो सारी प्लानिंग आपकी क्या है वो सब हमें बता डालिए fmakashwani@gmail.com पर। जी हाँ, मेल आईडी तो पता ही है आपको, तो बस फटाफट जुड़िए हमारे साथ और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की शालिनी के साथ। जी हाँ, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना, ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, आपकी फरमाइश के गाने सॉरी हम इस प्रोग्राम में नहीं प्ले कर सकते। तो उसके लिए नेक्स्ट प्रोग्राम होगा हॉट मेल 2 बजे से, बस तब उसमें आप हमें अपनी पसंद भेजिएगा। अभी आपको तो बस हमसे बातें करनी है।

0: और अब सुनिए इलाकाई खबरें। ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए के 262 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तफदीन को सर्टिफिकेट और चेक दिए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत ने रियासत के हर जिले को तरक्की दी है। उन्होंने कहा कि रियासत अब मुल्क और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रही है। वजीर आला ने कहा कि आज गोंडा में शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्टों से जिले की तरक्की और अवामी सहूलियात को वसअत मिलेगी।
1: उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति ही गोंडा के नौजवानों के सामने भी पहचान का संकट खड़ा हुआ। आज मैं कह सकता हूं, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है, आज उसके परिणाम आप सबके सामने देखते हुए बन रहे हैं।
0: महाकुंभ 2025 ने मरकजी हुकूमत के जरिए ऐलान करदा नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 में गोल्ड अवार्ड जीता है। इस साल मरकजी हुकूमत ने नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स के तहत 11 गोल्ड अवार्ड्स, 6 सिल्वर अवार्ड्स और 1 ज्यूरी अवार्ड का ऐलान किया। महाकुंभ 2025 को मुल्क की बेहतरीन ई गवर्नेंस ईजादात में से एक तस्लीम किया गया है। महाकुंभ गोल्ड अवार्ड हासिल करने वाले इदारों को 10 लाख की रकम मिलेगी और सिल्वर अवार्ड हासिल करने वाले इदारों को 5 लाख मिलेंगे। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 की रस्मी पेशकश की तकरीब जयपुर में 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुनक्किद की जाएगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासत अब अपनी सरमायाकारी और सलामती के माहौल के लिए पहचानी जाती है। उन्होंने कहा कि रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत हर जिले की मजमूई तरक्की के लिए काम कर रही है।
1: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके

0: डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
1: रियासत के वजीर तवानाई ए के शर्मा ने पीएम सूर्य घर पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वजीर आजम की तरगीब पर मुल्क में सोलर तवानाई में तेजी से तौसी हो रही है। वाराणसी में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश मुल्क में अव्वल मुकाम पर है और वाराणसी मुल्क में सोलर तवानाई में 11वें मुकाम पर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मरकज में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर एक खसूसी मुहिम कल शुरू हुई। मुहिम के एक हिस्से के तौर पर रियासत के तमाम अजला के इंचार्ज वजरा और अवामी नुमाइंदे 21 जून तक समाज के रोशन ख्याल तबकों के साथ बातचीत करेंगे। वह अवामी मसाइल के हल के लिए देही इलाकों में रात के चौपाल का भी एहतमाम करेंगे। इस तनाजुर में काबिनी वजीर ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में दरख्त लगाकर एक मरबूत अवामी फलाह बहबूद और बेदारी मुहिम का आगाज किया। मुहिम के बारे में मालूमात फराहम करते हुए रियासत के जल शक्ति के वजीर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में दुनिया भर में मुल्क की इज्जत में इजाफा हुआ है। नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में एकेडमी अवार्ड तकरीब में 2021 से 2024 के लिए मुंतखब फनकारों को एजाज से नवाजा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी के जेर एहतमाम तकरीब में 51 मुमताज फनकारों को मौसिकी रक्स ड्रामा और लोक फनून में नुमाया खिदमात के लिए एजाज से नवाजा गया। वाराणसी मुनक्कदा ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप का दो रोजा इजलास कल इख्तिताम पजीर हुआ। आखिरी दिन ब्रिक्स के रुकन ममालिक के नुमाइंदों ने सकाफती ताउन और बाहिमी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम बनाने की जरूरत पर जोर दिया। हिंदुस्तान की सदारत में होने वाली इस अहम मीटिंग में ब्राजील, रूस, चीन, जनूबी अफ्रीका और सऊदी अरब समेत 11 ममालिक ने शिरकत की। सकाफत की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी अमिता प्रसाद सरभाई ने कहा कि मीटिंग में हिन्दुस्तान के कीमती विरसे की वापसी पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान तरक्की और सकाफत के मुतफा तफहूम के साथ आगे बढ़ने के तौर पर भी तबादला ख्याल किया गया। बलिया के जयप्रकाश नारायण बर्ड्स सेंचुरी सुराताल को मुल्क के सवा रामसर साइट करार दिया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि यह मुल्क के कुदरती माहौल खासतौर पर उसकी आबी जमीन के तहफ्फुज़ के लिए हिंदुस्तान की गैर मुतजलजल आजम की अक्कासी का था। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हिन्दुस्तान ने माहौलियाती तहफ्फुज़, हयातती तनु के तहफ्फुज़ और वेटलैंड के तहफ्फुज़ के शोबों में काबिल जिक्र तरक्की की है। मुजफ्फरनगर जिले के छपर थाना इलाके में दिल्ली देहरादून कौमी शाहरा पर एक सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद ट्रक से टकरा गए, मौके पर ही हलाक हो गए। आंसू वाकये के बाद पुलिस और इंतजामी अहलकार जाए वकूफ पर पहुंचे। पुलिस सुपरिटेंडेंट संजय कुमार ने कहा कि मरने वालों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: रोज सफर की हमारी यूं शुरुआत होती है, सुबह 6 बजे पुष्पांजलि से पहली मुलाकात होती है। दिन भर का समय कैसे बीत जाता है, रेनबो अपना हर रंग मानो बिखेरता जाता है।
3: रंग दे तुम है
2: रात में तब सुकून आता है जब सदाबहार गीत कोई हमारे कानों में गुनगुनाता है।
4: मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को।
2: तमाम सारी जानकारी मनोरंजन के संग सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर सुनना ना भूलें, सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
5: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

1:23:23 प्रोग्राम ओठो पे तेरी बात में शालिनी आपके साथ, और शालिनी के साथ ढेर सारे ईमेल्स आ चुके हैं। सुल्तान रजा का मेल आया है और इन्होंने हमें कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से लिखा हुआ है, और इनके साथ में ढेर सारे लोग हैं, सादिक, मुनीश, जिशान, अफजाल और मम्मी पापा, पूरा रजा परिवार है। इस समय घर की छुट्टी है स्कूल की, तो हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, सभी परिवार की तरफ से है, छुट्टी चल रही है। अच्छा, आपने कहीं पर कॉमा और पूर्व विराम नहीं लगाया है तो समझ में नहीं आती ना पूरी बात। स्कूल की छुट्टी इसलिए सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं, और बाकी सब तो ये घूम चुके हैं। हाँ, अच्छा, अच्छी बात ये है कि अब हमारा टिकट भी कंफर्म हो चुका है। भाई ये बहुत जरूरी बात है, पहले से प्लानिंग कर लेना किसी भी चीज के लिए। राजकमल यादव का मेल आया सूरतगंज बाराबंकी से, और कैसे हो मैम, इस चिलचिलाती गर्मी में आपका प्रोग्राम कूलिंग है नीम की छांव जैसा। अरे चलिए, थैंक यू। अच्छा, ये अपना सिलाई का काम करते हुए हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, लेकिन राजकमल जी आपने अपना वीकेंड का प्लान नहीं बताया कि सैटरडे संडे क्या करने वाले, या आगे का जो भी प्लान आपने बनाया हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और मोहम्मद आसिफ अंसारी का तेलंगाना से ये हमें सुन रहे हैं, और संडे गोलकुंडा फोर्ट जाएंगे और चार मीनार जाएंगे, और आप लोग भी आइए हैदराबाद, बिल्कुल आते हैं घूमने के लिए। और दोस्तों बाकी के ईमेल जरूर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये प्यारा सा ट्रैक आप सब के लिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

1:38 हो चले प्रोग्राम ओटो पे तेरी बात में शालिनी आपके साथ लेकर वकील अहमद जी का ईमेल और इनके साथ ना इन्होंने हमें मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर से लिखा है। साहिबा साजिया शमा पिंकी रिंकी महक और गुलफसा एनम नवाब और सभी का नाम अनीश फारूक सभी के नाम इन्होंने लिए हैं और ये कह रहे हैं कि ये जाएंगे तो कहीं नहीं घूमने लेकिन गन्ने की सिंचाई हो रही है और इस समय हम आम के बाग में हैं और कच्चे आम लगे हैं अभी भाई पके कि नहीं। सुधाकर राधे जाधव का भी मेल आ चुका है जाफराबाद से प्रशांत संचित प्रथमेश और पूरी फैमिली के साथ लिख रहे हैं और अच्छा आप सुन नहीं पाए भाई आज सैटरडे है और सैटरडे को हम बात करते हैं आपसे आपके ही वीकेंड का आप क्या प्लान कर रहे हैं कहीं घूमने फिरने का। और बाबू अंसारी जी आप भी अब सुन चुके होंगे जो बात अभी हमने कही बाराबंकी से आपका मेल आया है कुछ अच्छी सी मंस की बात बता दीजिए। और हेमंत वाजपेयी का मेल आया है नमस्ते मैम गर्मी बहुत कड़क के पड़ रही है जिससे मैं लोगों को पानी पीने की ज्यादा जरूरत है बिल्कुल और थोड़ा सा इसे और हम बढ़ा दे साफ पानी पीने की ज्यादा जरूरत है। और मेल आ चुका है राय बरेली से गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु और शंकर पप्पू मनीष नीरज मधु काका और अच्छा ढेर सारा प्यार है हमारे लिए थैंक यू और हमारी घूमने की कोई वजह नहीं है। और इन्होंने लिखा है मेल आया है जो रामराज की जी की तरफ से और ये घर पर बकरी चराने जाते हैं उसी में मस्त रहते हैं चलिए इसी बहाने आपका टहलना तो हो जाता है जरूरी है थोड़ी थोड़ा सा चलना फिरना। और रामेश्वर कछेरिया का मेल आया है उमा कांति कमलेश और निशा प्रज्ञा प्रतिबिंब और वेदू वेद बाबू का है और इन्होंने मुंगिसा पर कानपुर देहात से मेल हमें लिखकर भेजा है और ये लिख रहे हैं कि हम अपने नाना नानी के घर घूमने जा रहे हैं हम साल में एक बार नाना नानी के घर जाते हैं घूमने बढ़िया है खूब मस्ती करिएगा लेकिन हाँ वहाँ ज्यादा सबको परेशान नहीं। मोनू सेठ जी का मेल आया है इन्होंने प्लास्टिक के बारे में लिखकर भेजा है कि प्लास्टिक कभी भी जैविक रूप से सड़ता नहीं है या सिर्फ धूप और हवा के कारण छोटे छोटे रिकड़ों में बदल जाता है और जो सर्दियों तक हमारी मिट्टी और पानी में मौजूद रहता है और इसका बाकी का भी मापदंड बताया है कितने साल तक ये डिस्पोज नहीं होती है बहुत अच्छी जानकारी दी है मोनू आपने लेकिन प्रोग्राम ओटो पे तेरी बात में हम आपकी प्लानिंग जान रहे हैं कि आप क्या करने वाले हैं इस वीकेंड तो चलिए अभी और भी मेल लेंगे लेकिन पहले ये गाना आप तक पहुंचाते हैं। और दोस्तों अगर आप भी सुन रहे हैं और चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना इस प्रोग्राम में तो आपको हमें ईमेल करना होगा कहां पर FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।

दोस्तों ढेर सारे ईमेल्स आ रहे हैं और ये फारूक अहमद जी का मेल आया हुआ है और इन्होंने मसौली बाराबंकी से लिखा है और इनका लिखना है कि कल संडे में हमारे रिलेशन में एक शादी है जिसमें इन्हें जाना है। भाई शादी बारात अभी से सेलेक्ट कर लीजिए, क्या पहन के जाना है, कैसे।

जाना है, और इन्होंने लिखा है कि अभी लंच करके आराम कर रहे हैं और आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। बढ़िया, आपने अपने सही टाइम पर आपने लंच कर लिया। और पिंकू सोनी का भी मेल आया है। अच्छा, इन्होंने ये आज का प्रोग्राम केवल सुन के एंजॉय कर रहे हैं, इन्होंने कुछ कहा नहीं है। बाराबंकी से ये हमें लिख के भेज रहे हैं, कुलदीप, आकाश, रिंकी, पिंकी और सभी लिसनर्स को इन्होंने नमस्ते कहा है। भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए, आपको कुछ लिख कर भी भेजना चाहिए। और मोनू कुमार जी का भी मेल आया, इन्होंने लिखा है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस बच्चों के साथ खेलेंगे और आनंद ही आनंद लेंगे। अच्छा वाह। गुलफ्सा सिद्दीकी का मेल आया है, संडीला से ये लिख रही हैं, इन्होंने लिखा है अपने बच्चों को लेकर अपनी नानी के घर जाऊंगी मलिहाबाद में आम खाने। वाह भाई वाह, क्या बात है। और आम का नाम सुनते ही तो दोस्तों मुंह में पानी आ जाता है ना। सुधाकर राधे जाधव जी का मेल जाफराबाद से आ चुका है, इन्होंने लिखा है कि हम किसान हैं, हम कहीं घूमने तो नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि खेत में काम चालू है और हम खेती में मस्त रहते हैं। भाई आप खेती करते हैं तभी तो हम सब तक अनाज पहुंचता है ना। सारे किसानों को सलाम। और मेल आया है किसका? अच्छा, पिंकू सोनी जी, आपने दो बार मेल किया, एक बार किया। संतोष चौरसिया जी का भी मेल आ चुका है, और गुरुग्राम से ये लिख रहे हैं, और ये लिख रहे हैं कि घूमने जाने का मन तो बहुत है लेकिन धूप की वजह से कहीं नहीं जाऊंगा। पूजा का भी नाम ले लीजिएगा। ले लिया बिल्कुल। और अब ये प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए।

दोस्तों 1:55 हो चला है। विनीत कुमार का मेल रामगढ़ से आया है और इन्होंने लिखा है कि नैमिष धाम चले जाएं ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन धूप बहुत हो रही तो कहीं जाने का मन नहीं हो रहा है। जब मौसम सही होगा तब ये जाएंगे घूमने। और सतीश अनेजा जी का मेल आया है, इनकी कुछ तबीयत नहीं ठीक है लेकिन प्रोग्राम सुन के इनको रौनक आ गई है। चलिए थैंक यू, हमारा रेनबो है ही ऐसा। और कल कसौली हिमाचल जाना है दोस्तों के साथ, लेकिन सतीश जी अपनी तबीयत का ध्यान रखिए और उसके बाद कहीं जाइए। चंडीगढ़ से हमें मेल लिख रहे हैं और मेल आ चुका है, संजीव सिंह का भी आया है। और ये कहाँ घूमने जा सकते हैं? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है सभी के सभी जा सकते हैं घूमने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पर करते हैं वाइंड अप। और ये प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए नेक्स्ट प्रोग्राम हॉच मेल में भी शालिनी इंतजार कर रही है आप सभी के ईमेल्स का। FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर मेल करिए।

0: Selection Committee, led by Chief Selector Ajit Agarkar and BCCI Secretary Devajit Sekhia, for deciding the squad for the tours of Ireland and England and the Asian Games in Japan, as well as India A's tour of Sri Lanka multi-day games at the BCCI headquarters in Mumbai today. India will face Bangladesh in the final of the SAF Football Women's Championship at Madgaon, Goa today. The match will be held at 6:30 p.m. Earlier, India secured its place in the final by defeating Bhutan 1-0 in the semi-finals. India has won this title 5 times so far. In hockey, India will face host Japan in the final of the Men's Under-18 Asia Cup 2026 in Takamigahara in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. Earlier, India beat its arch rival Pakistan 5-3 in the second semi-final in a high-scoring contest. An Indian benchmark indices extended their losing streak into the second consecutive week, weighed down by persistent global headwinds. The Reserve Bank of India's supportive liquidity measures and currency stability initiatives provided some support to market sentiment, but a downward revision in growth projections dampened investor confidence. During the week, the 30 share Sensex at BSE lost 533 points to close at 74,243. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi holds meeting with his Economic Advisory Council to further boost India's economic growth. RBI simplifies rules for FPIs in government securities to make investment in India easier. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In Punjab, at least 9 people killed after a vehicle collides with a truck on Firozpur-Fazilkar Road this morning. IMD issues red alert for heavy rainfall over Keralam and Mahe till tomorrow. And in cricket, Shreyas Iyer replaces Surya Kumar Yadav as India's new T20I captain, Vaibhav Suryavanshi included in squad for first time. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है।

0: रिपोर्ट।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
2: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है।

0: मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
3: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की। हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे।

प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

12:36 हो चले हैं दोस्तों, ढेर सारे फरमाइशी गाने आप तक पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ अभी बाकी हैं, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट मेल पहुंचाते हैं। दीपेश पूनम ज्योति शिवांश का मेल सरगांव छत्तीसगढ़ से आ चुका है। रामेश्वर कछारिया उमाकांति कमलेश और अच्छा इनका सबका मेल मुंगिसापुर कानपुर देहात से आ चुका है। सीताराम कांगड़ा बबीता बोच निखिल तन्वी और अंकित का मेल आया हुआ है एकता कॉलोनी रोहतक से। और ये देखिए सिटी मुंबई से अहमद भाई दुखनी या सफर जूही इकबाल इमरान अहमद ने मेल कर दिया है। आमना नसरीन आसमा परी राबिया मंतशा और आशु अहमद ने मेल किया हुए। जावेद अख्तर जी का भी मेल आ चुका है। आजमगढ़ से शमशुल कमर राही बेगम रुखसार रकीबा तूपा और आफरीन शमीम अख्तर के साथ इन्होंने मेल हमें किया है। और ये राधे कुमार विद्यार्थी जी का भी गुंजेश कुमकुम कुमारी साक्षी बुल्की और फलना झा के साथ संजय भी हैं साथ में और इन्होंने हमें बिहार से मेल किया हुआ है। इसके अलावा रविंद्र मोहनदास आशा देवी अनुराग मोहन के साथ किशनगंज बिहार से हमें मेल कर रहे हैं। रामराज जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने राजू भानु शंकर पप्पू मनीष नीरज मधु बजरंगी काका के साथ में हमें मेल रायबरेली पहाड़ीपुर गांव से किया हुआ है। और सुरेश नारंग सुनाली के साथ में सहारनपुर से आशा के साथ मेल कर रहे हैं। मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति भूमिका का श्री गंगानगर राजस्थान से मेल आया हुआ है। संजय निगिया जी का भी

मेल नमन अपार के साथ बागपत उत्तर प्रदेश से मेल आ चुका है और ये डीके जी हैं, यानी कि कमलेश मुकुल सचिन दीपांशु का मेल न्यू दिल्ली से आया हुआ है। शाहरुख नूर अंसारी का भी मेल फरियाद शकील मोइन तस्लीना ये मटकली बरेली से हमें मेल कर रहे हैं और एक ही मेल कई बार आ जाते हैं दोस्तों, तो आपके ही मेल हम खोज नहीं पाते हैं। मनीराम पाल मलखान सिंह और सुधांशु हिमांशु का मेल हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आ चुका है और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की।

और प्यार में तो अच्छे अच्छे लोग कवि बन जाते हैं ना दोस्तों। 2:43 का वक्त, विजय मोहबिया जी का मेल आ चुका है। कविता सपना शिवी सलोनी ईशु और पेंटर बाबू रामगंज खंड, कहाँ से इन्होंने लिखा है, खंडवा उत्तर मध्य प्रदेश से इन्होंने मेल किया है। और नवी हसन जी का मेल आया है शहनाज, नावेद हसन, रसीद वारिस, सुहेल हसन, अनम यसफ का साथ में, दरवाजा एटा से, सिकंदरा राव से, मुनीब और इशरत का मेल है। सुधाकर राजे जाधव का भी मेल जाफराबाद से है। और प्रशांत राजे, संचित प्रथमेश प्रणाली और सर्वद सानवी कल्पना के साथ में ये हमें मेल कर रहे हैं। और ये पूनम गगनेजा, सुरेश जलालाबाद से, विशाल प्रिया दिशानी निमित के साथ मेल कर रहे हैं। नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष, लाडो कोयल, पापा जी नानक चंद्र, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से, पीयूष कोयल डुग्गू भौमिक सिक्का, और बाकी लोगों ने पानीपत से मेल किया है। गुरमीत सिंह मीता का भी मेल नई दिल्ली से आया हुआ है। ब्रिजेश विश्वकर्मा, तारा सोनाली, सोनम आशीष के साथ में पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मेल कर रहे हैं। हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र नोखेलाल के साथ भाटापारा से मेल किया है इन्होंने। और क्या ये अहमद जी का मेल आ गया है। नूर आयशा अहमद, इकबाल अखलाल, आलमा आसमा, आमना राबिया, जूही सफद, और इन्होंने हमें बलिया से मेल किया है। अदीबा इस्माइल, नन्हे राजा, फैज फिरोज, आलम शाह आलम और मनोज बंसल जी का भी जस्ट अभी मेल हांसी से आ चुका है। किसी भी गीत में नाम आपका जरूर शामिल कर लेंगे। बोधराज खोरवाल जी का नई दिल्ली उत्तम नगर से, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका के साथ में मेल आया हुआ है। मोहम्मद सादिक जी का मेल सनावत से आया है। और रणधीर गुप्ता का मेल बबीता रानी, सत्यम सुंदरम के साथ, ओखला संगम बिहार दिल्ली से मेल आया है। और ये संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत का मेल सीकर राजस्थान से आ गया है। उदय भानपाल जी का भी मेल हमें मिल चुका है, बुंदेलखंड से है। जयहिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश के साथ ये हमें मेल कर रहे हैं। और किसका किसका मेल आ चुका है फटाफट आप तक पहुंचाते हैं, और पहुंचाने का तो प्रयास ये रहता है कि बहुत जल्दी से आप तक पहुंचा दिया जाए। बाबू अंसारी का, महेंद्र दीपेन, कुलदीप फैज अंसारी के साथ, अच्छा इन्होंने डेडिकेट किया है, बाराबंकी से ये हमें मेल कर रहे हैं। और ये मेल आ चुका है अक्रम हुसैन कभी, इन्होंने हमें कहाँ से किया है, ये सीतामढ़ी से मेल करते। साजिया शाहीन, नाज नाजिया, नुजहत जहां के साथ में। और अब गाना पहुंचा देते हैं और उसके बाद मेल शामिल करेंगे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो। आप

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: RBI कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो भाई 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

दोस्तों नमस्कार, FM 102.2 रेनबो कानपुर पर आप ट्यून इन है। इस वक्त दिन के 3 बज चुके हैं और मैं वंदना आ गई हूँ आपके लिए म्यूजिक की मस्ती लेकर प्रोग्राम म्यूजिक आर में।

तो दोस्तों, आज का म्यूजिक आर गीत संगीत के साथ लेकर आया है हमारे जीवन से जुड़े बहुत सारे वो रोचक तथ्य जो हमारे दिनों रात से हर छोटी बड़ी बात से गहरा संबंध रखते हैं। और इन रोचक तथ्यों में एक शब्द कॉमन है जिसके महत्व को हमने अगर समझ लिया तो खुद को हमेशा तरोताज़ा और अपडेटेड पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में आनंद उठाएंगे और कभी ऊबेंगे नहीं और बोर नहीं होंगे।

साथियों जानना चाहते हैं कौन सा है वो शब्द जिसने पूरे ब्रह्मांड से लेकर हमारे जीवन, हमारे शरीर तक सब पर अपनी धाक जमा रखी है? हाँ, बताती हूँ दोस्तों, वो शब्द है संतुलन, यानी बैलेंस। साथियों, संतुलन एक शक्ति है, हमारे ब्रह्मांड से लेकर हमारे शरीर और हमारे इकोसिस्टम का बेस है। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और म्यूजिक की इस मस्ती के लिए बने रहिए FM 102.2 रेनबो कानपुर पर। प्रोग्राम चल रहा है जहां म्यूजिक आर्ट।

एक ही ग्रह हमारा सौरमंडल कुछ भी अस्तित्व में ना होता। जी हाँ, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूमती है। इसके बावजूद भी यदि हम सुरक्षित हैं तो केवल गुरुत्वाकर्षण और गति के बीच बैलेंस के कारण। अगर ये गति कम या ज्यादा हो जाए तो पृथ्वी सूर्य के और करीब भी जा सकती है और अंतरिक्ष में कहीं दूर भी निकल सकती है। तो कमाल किसका है? केवल संतुलन का। सोचिए ना, अगर मैं यहाँ बैठकर आपको केवल यही सब बताती रहूं तो आप भी नाराज हो जाएंगे, होंगे ना? अरे नहीं, बैलेंस बनाए रखते हैं और सुनते हैं एक गाना।

तो साथियों हम बात कर रहे हैं आज इस प्रोग्राम में संतुलन की, जो पूरी सृष्टि का आधार है। दोस्तों, ब्रह्मांड निर्माण में अगर ग्रेविटी और एक्सपेंशन फोर्स यानी विस्तार बल के बीच पूर्ण संतुलन ना होता तो ये तारे

दोस्तों, हम सभी प्रकृति की धरोहर है, कुदरत का निर्माण है हम। यही कुदरत हमें सिखाती है कि महानता का अर्थ अधिक या बड़ा होना नहीं, संतुलित होना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री यदि झुकी ना होती तो पृथ्वी पर सभी स्थानों पर मौसम होता एक सा और जीवन का विकास कठिन। और यदि पृथ्वी घूमना ही बंद कर दे तो हम होते या तो हर वक्त रात के साए में या हमेशा दिन ही दिन होता। लेकिन पृथ्वी का दिन रात घूमते रहना दिन और रात में बनाता है बैलेंस और हम सोते और जागते रहते हैं।

FM 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर आप इस वक्त रेनबो कानपुर के संग सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक आर। और दोस्तों, आज हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं संतुलन की। साथियों, समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के ही कारण आता है, और अगर ये अपने नियम या संतुलन में ना आए तो कैसी स्थिति बनेगी। ठीक उसी तरह प्रकृति में शिकारी जीवों और दूसरे जीवों के बीच भी ऐसा ही नाजुक सा संतुलन देखते हैं हम। यदि शाकाहारी जीवों की संख्या असंतुलित हो या बढ़ जाए तो जंगल के जंगल खत्म हो सकते हैं, और यदि ये जीव ही न हो तो इकोसिस्टम बिगड़ सकता है। हम इंसानों के जीवन रक्षक पेड़ हैं। ये CO2 ग्रहण करके वातावरण में ऑक्सीजन का संचार करते हैं। यदि पेड़ों की संख्या कम हो जाती है तो हम शुद्ध हवा नहीं पा सकते, यानी इस इकोसिस्टम में पेड़ों पौधों का भी होना संतुलन बनाता है। एक बड़े से अंबर में चांद अकेला होता है, पर कितना सुंदर लगता है और कितना सुंदर होता है।

दोस्तों, ब्रह्मांड में, प्रकृति में, पृथ्वी में, इंसानी शरीर में, जीवन में, हर कहीं संतुलन का क्या इम्पोर्टेंस है, इस पर बात की जा रही है आज के इस म्यूजिक आर प्रोग्राम में। साथ ही बैलेंस बना रहे हैं हम बीच बीच में लहराते बलखाते गीतों के साथ। तो साथियों, अब आसमान से उतरकर आ जाते हैं ह्यूमन बॉडी की ओर। तो हम देखते हैं कि हमारा शरीर भी भीतरी सामान्य तापमान को, जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मेंटेन रखने के लिए लगातार होम्योस्टेटिस की प्रक्रिया करता रहता है। जैसे अधिक गर्मी में पसीना आना, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर

प्रेशर, हार्ट रेट, हॉर्मोन्स, शुगर लेवल, यदि इन सब का संतुलन ना हो तो हम किसी न किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। बहुत अद्भुत है ये बात कि एक व्यस्क इंसान की बॉडी में लगभग 37 ट्रिलियन यानी 37 लाख करोड़ कोशिकाएं हैं और ये सभी एक संतुलन, एक गजब के तालमेल के साथ मिलकर काम करती हैं। तो ये बात समझाती है हमें कि एक एक कड़ी के सही दिशा में संतुलित व्यवहार करने से शरीर फिट रहता है, वरना गोलमाल होता रहता है।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरम्भ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्वनामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।
1: FM 102.2 रेनबो कानपुर के साथ इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक आर। दोस्तों, और आज इस प्रोग्राम में बात हम कर रहे हैं बैलेंस की, जो हमारी लाइफ में हर कहीं दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, लाइफ को फुली इंजॉय करने के लिए हेल्दी रहने के साथ साथ ज़रूरी है इमोशनल बैलेंस भी। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन सभी का हमारे मन में कहीं ना कहीं ठिकाना ज़रूर होता है, और हर क्षण प्रसन्न वही है जो इन पांचों में संतुलन बनाकर रखता है। बहुत गुस्सा करने वाला, ज़्यादा मोह माया रखने वाला हो या हो घमंडी और बेहद लालची, कभी अच्छा निर्णय नहीं ले सकता। एक संतुलित मन हमेशा बेहतर निर्णय लेता है। आप चाहे जितने पावरफुल हों, यदि बैलेंस्ड नहीं है तो शायद आपकी बात ना बने।

संतुलन संतुलन और संतुलन, हर कहीं बस इसी की धाक है दोस्तों। जिंदगी में संतुलन के साथ चलने वाला साथ देता है हमेशा अपनों का, और तभी तो हमें बनाना होता है घर ऑफिस में सपनों और जिम्मेदारियों के बीच आराम और मेहनत के बीच बैलेंस। यही बात आती है हमारे रिश्तों में भी। जी हाँ दोस्तों, हमारा हर रिश्ता प्यार और तकरार का संतुलन चाहता है। देखिएगा, हमेशा जहाँ केवल अधिकार होते हैं सम्मान नहीं, केवल बोलना होता है सुनना नहीं, वहाँ रिश्ते कमजोर पड़ते हैं, संवाद खत्म हो जाते हैं। जी हाँ, हर संबंध हर रिश्ते की नींव यही है, बस संतुलन

दोस्तों म्यूजिक आर प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं बैलेंस की, संतुलन की, जिसे हम पाते हैं ब्रह्मांड से लेकर अपनी सृष्टि में, जिंदगी में, हर कहीं। आज विज्ञान का युग है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, जिसमें हम एकदम डूब से गए हैं। लेकिन अगर मन के अंदर अपने भीतर झांकें तो घोर अशांति से भर चुके हैं, जहां जरूरत पड़ रही है अध्यात्म की ओर बढ़ने की। विज्ञान ने हमें अगर सफलताओं के आसमान को छूना सिखाया है तो उड़ते हुए थक कर वापस आने का शांति का एकमात्र सहारा है आत्मचिंतन, मेडिटेशन। तो एक तरह सही मायनों में प्रसन्न जीवन जीने के लिए एक बार फिर से जरूरत है बाहरी और भीतरी संतुलन की।

जी हाँ दोस्तों, हमारे मन में अक्सर यही सवाल आता है, यही ख्याल आता है कि जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड हर पल हमें यही संदेश देता है कि हम जीवन को सही दिशा में ले जाने वाला मध्यम मार्ग अपनाएं, संतुलन बनाए रखें जीवन में हर कदम पर। इसी के साथ दीजिए इजाजत वंदना को म्यूजिक कार प्रोग्राम से। आप सुनिए इस प्रोग्राम का ये बहुत ही प्यारा सा आखिरी गाना, और मैं मिलती हूँ आपसे प्रोग्राम आपकी पसंद में बस कुछ ही देर बाद। टेक केयर, बाय बाय।

कानपुर देहात और उन्नाव जनपद के उपभोक्ताओं की डाक विभाग की सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु अधीक्षक डाकघर कानपुर प्रखंड के कार्यालय कक्ष में पता कानपुर जीपीओ भवन बड़ा चौराहा दिनांक 15 जून 2026 को समय 11 बजे डाक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उपभोक्ताओं की पंजीकृत वस्तुओं, धनादेशों, बीमाकृत वस्तुओं, बचत बैंक और अन्य शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। अपनी समस्याओं या शिकायतों के निदान हेतु डाक अदालत में उपस्थित होने के इच्छुक उपभोक्तागण अपनी समस्याओं शिकायतों के पूर्ण विवरण सहित अधीक्षक डाकघर कानपुर मुख्य प्रखंड कानपुर के कार्यालय में दिनांक 10 जून 2026 तक अवश्य उपलब्ध करा दें। निर्धारित तिथि तक परिवाद प्राप्त न होने पर परिवाद या समस्या पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

आप ट्यून इन इस वक्त FM 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर रेनबो कानपुर के साथ, और इस वक्त हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कार्यक्रम आपकी पसंद। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम में आपको सुनवाएंगे आपकी पसंद के गाने और शामिल करेंगे इस कार्यक्रम में आपकी ईमेल्स। आज इस प्रोग्राम में आपके पसंद के गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त वंदना। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

आप ट्यून इन इस वक्त एफएम 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर रेनबो कानपुर के साथ, और इस वक्त हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कार्यक्रम आपकी पसंद। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम में आपको सुनवाएंगे आपकी पसंद के गाने और शामिल करेंगे इस कार्यक्रम में आपकी ईमेल्स। आज इस प्रोग्राम में आपके पसंद के गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त वंदना। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम को इस गीत के साथ। आप सुनिए और एंजॉय कीजिए। गीत की डिटेल्स और आपके मेल्स करेंगे शामिल इस गाने के बाद।

के साथ लता मंगेशकर की। और इस गीत को सुनना आप चाहते थे पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। आपने इस गीत की भी फरमाइश भेजी और सबसे पहले हमने आपको आपका गीत सुनवाया और शामिल कर लिया आपकी ईमेल। और अब कुछ और भी बहुत सारी ईमेल्स हमारे सामने फ्लैश हो रही है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो शामिल कर लेते हैं जल्दी से इन ईमेल्स को। ये हमारे एक साथी हैं, इन्होंने ईमेल लिखी है आशा सपकाल। शास्त्री नगर बीड शहर से आप ईमेल कर रही हैं। किशन सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज और विशाल सपकाल हैं आपके साथ। विकास बंसोड़े मित्र नगर बीड शहर महाराष्ट्र से ईमेल भेज रहे हैं। रेखा बंसोड़े, आदिति और वैभव शिंदे हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे के साथ। सहसपुर लोहारा दुनिया खुर्द जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से हैं गुनीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज सूरज राजपूत और ग्राम अमलीडीह कवर्धा छत्तीसगढ़ से हैं संतोष राजपूत, पूर्वी गौरव राजपूत और हेमप्रभा राजपूत। रज़ाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान और जिहान खान आपने ईमेल हमें भेजी है हनुमानगढ़ राजस्थान से। आप सभी सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम आपकी पसंद एफएम 102.2 रेनबो कानपुर के संग। और हमारे ये भी नियमित श्रोता हैं जो हमें ईमेल कर रहे हैं, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। तो चलिए बढ़ते हैं अब कार्यक्रम में आगे और सुनवाते हैं आपको दूसरा गाना।

त्रिशूल फिल्म का ये गीत हमने सुनवाया कार्यक्रम की आरंभ में आपको साथियों, और साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत था, खयाम का संगीत और आवाजें थी नितिन मुकेश।

दोस्ताना फिल्म का गीत आपको सुनवाया हमने, ईडी गुप्तन की ये लिरिक्स थी और विशाल शेखर का संगीत, साथ में आवाजें थी विशाल शेखर, विशाल, श्रेया घोषाल और अमानत अली की। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद थे हमारे आप सभी श्रोता। डोंडी लोहारा बालौद से हरिशंकर डोम और अनीता डोमीन, जेल रोड बक्सर से असलम अंसारी, शमसुल हक, राज अंसारी और फातिमा राज अजनबी। आपने सुनना चाह रहा दोस्ताना फिल्म का ये गाना। और अब हम शामिल कर रहे हैं अपने और सभी लिसनर्स को, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हमारे लिसनर हैं अभिजीत गवाणकर, राही सरिता, प्रणिता सिद्धांत गवाणकर और अर्जुन गवाणकर टुक टुक, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश, प्रिंस एकांश, सुमित, कुमारी ध्वनि गवाणकर, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप कालका, ये आपने लिखा है ईमेल सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। और कालका से ईमेल भेज रहे हैं शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। किशनगंज बिहार से ईमेल आई है रविंद्र मोहन दास और आशा देवी की, और आपको हमने शामिल कर लिया है। बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया इस कार्यक्रम में। और आर्यन वर्मा, आपकी ईमेल मिली है हमें जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार रोड मुंगिसापुर से है ये ईमेल मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी। और ताज मोहम्मद ये भेजते हैं ईमेल आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रम में ईमेल करी और शामिल हुए हमारे साथ और सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम को बहुत ही प्रेम से। नई बस्ती गंज डुंडवारा से ये ईमेल हमें मिली है मोहम्मद यासीन हाशमी की, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी हैं आपके साथ ही। और सुरेश नारंग की ये ईमेल मिली है सहारनपुर से, ईमेल कर रहे हैं आशा नारंग और सुरेश नारंग। तो बहुत सारे अपने श्रोताओं को हमने इस गीत के साथ शामिल किया दोस्तों, और अब बढ़ेंगे आगे। बहुत ही प्यारा सा गीत आपको एक और सुनवाएंगे, ये अनाड़ी फिल्म का गाना है, आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में।

अनाड़ी फिल्म का ये गीत था, शैलेंद्र का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन का संगीत और आवाज़ थी मुकेश की। इस गीत को सुनना चाहा था चंद्रनगर सहारनपुर से प्रभा रानी, आशु सोनाली और आशा डोमीन ने। जेल रोड दिल्ली से हैं लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती और उमा राज। एयरपोर्ट कॉलोनी अहमदाबाद से परवीन अंसारी, हेमा जाटव, प्रमिला और प्रवीण कुमार वर्मा। और शामिल कर रहे हैं ईमेल हम अपने और भी दोस्तों की। ये आई है सरगुजा मेन पार्ट से, प्रभा डोमीन, प्रमिला, आशा, निशा और पूरा इनका परिवार है। तखतपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू, मीरा देवी, गंगा देवी और मिश्री देवी साहू। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, आपने भी इस गीत को सुनना चाहा था और हमने आपकी फरमाइश को शामिल कर लिया है। दतरंगी भाटा पारा से शामिल कर रहे हैं, ईमेल आई है छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। भोपालगढ़ राजस्थान से शामिल कर रहे हैं ईमेल धर्मेंद्र छीपा की, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार हैं आपके साथ। सतीश अनीजा ये चंडीगढ़ सिटी से ईमेल भेज रहे हैं, बिमला अनीजा हैं आपके साथ और साथ में आपके सभी साथी या सभी दोस्त सुनना चाह रहे हैं यही गीत। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, आपने ये पूरा नहीं लिखा है, ये तेलहारा किस जगह पर, किस प्रदेश से आप लिख रहे हैं ये ईमेल। मेन रोड तेलहारा केवल आपने अपने पति के रूप में लिखा है, प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और सुजाता पोहरकार। तो चलिए सुन रहे हैं आप कार्यक्रम आपकी पसंद, FM 102.2 रेनबो कानपुर के संग। बढ़ते हैं आगे, आपको सुनवाते हैं दोस्ती फिल्म का ये गाना।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready.

0: कोहेसिव, आत्मनिर्भर, सेफगार्डिंग सीज फॉर अ विकसित समृद्ध भारत। जॉइन इंडियन नेवी।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: साथियों, आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम आपकी पसंद FM 102.2 रेनबो कानपुर के संग। आज इस कार्यक्रम में है आपकी दोस्त आपके साथ वंदना। साथियों, इस अंतराल के पहले, इस ब्रेक के पहले आपको हमने जो गीत सुनवाया वो था दोस्ती फिल्म से, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। मोहम्मद रफी की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत। और अब हम शामिल कर रहे हैं कुछ ईमेल्स जो आपकी तरफ से सप्रेम आई हैं, भेजी गई हैं। और ये ईमेल हमें मिल रही है गांधीनगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, दीपल और हर्ष की। दादरी गेट भिवानी से ईमेल कर रहे हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा जी। मोहम्मद सईद पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से ईमेल भेज रहे हैं और शामिल हो गए हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में। सईद भाई, सूफियान, अनस, आयजा, आल्फिया, सदफ हुसैन, सरोज चौक अमरावती से, कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आफिया और मुश्ताबा खान। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हमारे आप कुछ श्रोता भेज रहे हैं ईमेल। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी शामिल कर रहे हैं आपको हम। गांव फ्रांसी हिसार से हैं हमारे राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार। लगातार बहुत सारे ईमेल्स हमारे श्रोता करते चले जा रहे हैं, बहुत सारी ईमेल्स हमें मिल रही हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हमें ईमेल मिली है। श्री सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली, कुमार सर्वद देशमुख, सानवी देशमुख, कल्पना देशमुख और समस्त राजे यादव और देशमुख और वयाल परिवार। तो सुनवाएंगे अब आपको अगला गीत, बढ़ेंगे अगले गीत की तरफ। इसे हमने लिया है फिल्म नागिन से। राजेंद्र किशन के बोल हैं, हेमंत कुमार का संगीत और आवाज लता मंगेशकर की।

नागिन फिल्म का ये गीत था। इसे सुनने के लिए हमें ईमेल भेज रहे हैं मेरठ कैंट से सुरेश, संदीप और अनुश्री। आपकी ये फरमाइश हमने पूरी कर दी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ओल्ड इज़ गोल्ड गीत आपने अपने श्रोताओं को, हमारे श्रोताओं को, अपने साथियों को सुनवाया। और बहुत ही लंबे अरसे के बाद ये गीत शायद मुझे लगता है सुनाई दिया होगा दोस्तों। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप सभी को ये गीत बहुत पसंद आया होगा। और चलिए अब हम शामिल करते हैं अपने श्रोताओं को जिन्होंने हमें ईमेल भेजी है। खंडवा रोड सरावत से शाहबाज अरबाज, फरहाज, फरदीन, समीर और मोइन शेख, खंडवा से योगेश गुजराती, आनंद जोशी और दुर्गा प्रसाद सैनी, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, मास्टर अनवर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी की ईमेल हमें मिली है। नारायण खर्चे एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक और परी खर्चे शामिल हो रहे हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में। आराध्या आखड़ से वैष्णवी और इसके साथ ही शामिल हो रहे हैं लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह गिल, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से ईमेल भेज रहे हैं। पहुंच रहा है अब आप तक सरस्वती चंद्र फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत संगीत जिसे मुकेश और लता मंगेशकर ने गाया है। इंदिवर के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गीत आपने सुना। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया नमन और अपार ढींगिया की पसंद पर। और दोस्तों जॉन डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से हमें ईमेल कर रहे हैं। रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, अब्दुल गफ्फार नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक डावर, जियाउल मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे भाटापारा छत्तीसगढ़ से, सुहन जोशी और पायल जोशी आपकी ईमेल भी साथियों हमने शामिल कर ली है। और ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार, नरगिस खातून ने हमें ईमेल भेजी है बिल्कुल अभी अभी। और साथियों आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार ईमेल भेजिए तो बार बार लगातार मत भेजिए, क्योंकि आपकी ही ईमेल्स अगर एक पेज पर लोड हो जाती हैं तो हमें अपने बाकी श्रोताओं को बहुत खोजना पड़ता है। जी हाँ, और इसमें काफ़ी समय भी जाता है। तो अब हम शामिल कर रहे हैं, ये दिल्ली बिहारी कॉलोनी शादरा से भेज रही हैं ईमेल तुलसी मस्कीन, वीना और रचिता मस्कीन।

आपकी पसंद प्रोग्राम में ये गीत आप सुन रहे थे जुगनू फिल्म से। शकील बदायूनी का लिखा ये गीत था, फिरोज नाजमी का संगीत और मोहम्मद रफ़ी के साथ नूर जहां की आवाज़ में ये गीत आपने सुना हमारे आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। मोहम्मद रफ़ी और नूर जहां के इस प्यारे से गीत को सुनना चाहा था। दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार, रेखा देवी, अजय कुमार, अन्विता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, पिहरा बाजार झुमरी तिलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी, प्रियंका साहू और अनिरुद्ध बाबू, आपके ये पसंद हमने शामिल कर ली है दोस्तों। और उत्तम कुमार भगत पाकुड़ झारखंड से हमें ईमेल कर रहे हैं, साथ में है श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णवानंद, सत्यमानंद और बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। लगातार हमें बहुत सारी ईमेल्स हमारे श्रोता करते जा रहे हैं। मोंदीचक भागलपुर बिहार से ही मिल रही है ईमेल दिलीप कुमार सोनी की। कुम्हार गली कोल गांव से हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश और पांडुरंग कुम्हार। तो चलिए आप करते रहिए ईमेल और सुनते रहिए अपने पसंद के ये प्यारे प्यारे से गाने। अगला गीत पहुंच रहा है आप तक शागिर्द फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी की ये रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

शागिर्द फिल्म का ये गीत आपने सुना, मजरू सुल्तानपुरी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत के लिए हम शामिल कर रहे हैं ईमेल हमारे पास ये आई है स्टेशन रोड जमशेदपुर से, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया, और साथ में ईमेल शामिल कर रहे हैं ये आई है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिवानशी विश्वकर्मा की। बागवान मंजिल छोटी बलिया से ईमेल भेज रहे हैं हमें नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद, अखलाक अहमद, आमना आसमा, राबिया परी, आशु जूही, सदफ आरजू बागवान और समस्त बागवान परिवार ईमेल कर रहा है। सनावा से हैं शेख मूसा मोहसिन, हमारे ये रेगुलर श्रोता हैं और लगभग रोज़ाना हर प्रोग्राम बहुत ही प्रेम से सुनते हैं। आप सभी हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता हैं और सारे प्रोग्राम्स को आप बहुत प्यार से सुनते हैं, बहुत जगह देते हैं दिल में, और ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों, मेरठ कैंट से हमें ईमेल मिल रही है, दिग्दर्शन कविता, राधा नामदेव, संजय ढींगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई की। तो आपने लिखा है कृपया अपनी प्लेलिस्ट में से एक गाना या कोई सदाबहार गीत सुनवा दीजिए। तो ये सभी गीत, हाँ, मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को पसंद आए होंगे। बहुत अच्छे गीत हमेशा ही हमारे चैनल से बजते रहते हैं क्योंकि हमारे श्रोताओं की पसंद ही इतनी लाजवाब है। और अब हम आपको

साथियों, ये अपनापन फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और इस गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं अपनी आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। आप हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। आपने एक हमें जानकारी भी लिख भेजी है कि आज अभिनेत्री निवेदिता जोशी, निवेदिता सराफ जी का जन्मदिन है और गीत आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आपको इन्हीं के लिए सुनना है। तो हमने आपको ये गीत सुनवाया साथियों और शामिल हो गई है आपकी ईमेल भी और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत ही प्यारा सा ये गीत और इसके लिए धन्यवाद आपको।

शामिल कर रहे हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की ईमेल आई हुई है, और दिग्दर्शन गौर मेरठ कैंट से और कविता गौर। और इसी के साथ अब हम इजाजत ले रहे हैं अपने सभी श्रोताओं से इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। आपकी पसंद कार्यक्रम आज आप सुन रहे थे अपनी दोस्त वंदना के साथ। आप अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मुख्य समाचार। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का प्रमाण है। प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार आज परीक्षा की तैयारियां का पूर्वाभ्यास किया गया। इसी क्रम में अमरोहा में जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं महोबा में परीक्षा को सकुशल एवं निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी गजल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का स्थलीय जायजा लिया। अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर में निर्मित उप मंदिरों के शिखरों पर ध्वजारोहण के कार्य अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इसी क्रम में शेषावतार मंदिर के शिखर पर 23 जून को ध्वजा स्थापना होगी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया, कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इटावा के तहसील सैफई में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने लोगों से शिकायतों के प्रार्थना पत्र प्राप्त किए और संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायतों के समय से निस्तारण के निर्देश दिए गए। वहीं फरुखाबाद के जिलाधिकारी डॉ. अंकुल लाठर की अध्यक्षता में भी संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां फरियादियों की समस्याओं का समाधान किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज मौसम शुष्क बना हुआ है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भी प्रदेश के मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। इसी बुलेटिन के साथ अगला बुलेटिन शाम के 6 बजे प्रसारित होगा। सुनते रहिए FM रेनबो इस घंटे श्वेता राजवंशी के साथ।

0: सुनेंगे बस्ती में प्रदूषण का शिकार रही मनोरमा नदी की सफाई के लिए अपनी टीम के साथ जन आंदोलन खड़ा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात से चर्चा में आए आकाश गुप्ता से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी प्रतिनिधि अमित सिंह।
1: कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, या कभी दुष्यंत कुमार की लाइन है जो बस्ती के आकाश गुप्ता पर सटीक बैठती। बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने सात साथियों के साथ इन्होंने जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके कार्यों की चर्चा करके पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आकाश गुप्ता जी, जो बस्ती जनपद के लजघटा गांव के निवासी हैं। आकाश गुप्ता जी, आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप यह अभियान मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आपको?
2: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई

0: आकर को पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आकाश गुप्ता जी, जो बस्ती जनपद के लजघटा गांव के निवासी हैं। आकाश गुप्ता जी, आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप यह अभियान मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आपको?
1: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचड़ा, जानवरों के मल मूत्र और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी। किसी के यहाँ पे भागवत कथा, रामायण कार्यक्रम होता था तो वे लोग आकर अपना जो भी सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था, क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी। जब नदी इतनी गंदी हो जाएगी तो वहां पर पानी पीना तो दूर, वहां पर कोई जानवर दिखेगा नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर जैसे कि हमारी ये नदी है, हम लोग आके गर्मियों के मौसम में यहाँ आकर बैठते हैं, यहाँ पर हम लोग जब बैठते थे तो यहाँ से बहुत ही गंदी बदबू आती थी। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज के टाइम पे नदी की सफाई ऐसी हो चुकी है, हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं।
0: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतनी गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसी प्रेरणा आपको आई कहां और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ इस अभियान में?
1: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था, क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे। लेकिन हम लोगों ने, इन 7 लोगों की टीम ने नदी को इतना साफ कर दिया है कि अभी नदी का पानी जानवरों के पीने लायक हो गया।
0: आप जब उस समय नदी की स्थिति, उसकी हालात देखे तो कैसा लगा आपको?
1: पहले के टाइम पे
0: जी, पहले
1: के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी। हम लोग गर्मियों के मौसम में, हमारे यहाँ पे गांव का माहौल गांव है तो यहाँ पे लाइट बहुत कम ही रहती है, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
0: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
1: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी, शैवाल आने लगे ढेर सारे, और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस उसमें डाल रहे थे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, जैसे कि लोग आते हैं कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते, उसके बाद 4 बातें भी सुनाते हैं।
0: इस अभियान में आप 68 दिन हो गए आपको नदी की सफाई करते, गांव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
1: गांव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गांव वाला हमारे साथ नदी में नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि हम 7 लोगों की टीम है, हम साथ ही लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं। अगर और भी लोग जुड़ते हैं तो हम भी मानेंगे कि हमारा कार्य भी सफल हो रहा है और सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
0: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
1: अभी तक कोई भी सहयोग नहीं रहा। हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो आप लोग योगी जी को टैग करके जितना हो सके शेयर किए, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया, जिस वजह से हमारी 1 दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और अभी उस पर 2 करोड़ से ज्यादा का व्यूज है और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
0: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
1: जब हमने स्टार्ट किया था पहले दिन से तो हमें नहीं लगा था कि इतनी साफ हमारी मनोरमा नदी हो जाएगी जैसे कि अभी हो चुकी है, और ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है, बिना एक भी दिन स्किप किए।

0: बिना एक भी दिन रुके हुए, बिना कोई बहाना बनाए।
1: आपकी मेहनत तो रंग लाई, लेकिन आपको अभी क्या लगता है इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
0: जी अभी हमारा काम तो जारी रहेगा, जब तक कि हम लोग अपनी मनरामा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे, क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है, क्योंकि अब इसे साफ करने में कई सालों का समय लग जाएगा। जब तक बहुत सारे लोग हमें जुड़ेंगे नहीं हमसे, तब तक ये नदी पूरी साफ नहीं हो पाएगी।
1: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
0: हमें बहुत ही ज्यादा गौरव महसूस हुआ, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
1: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा?
0: हमारी टीम पर अब ये प्रभाव पड़ रहा है कि और लोग साथ में जुड़ रहे हैं। और
1: क्या ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई आपकी?
0: हाँ, जिम्मेदारियां अब बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें, जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
1: इसमें क्या आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: हम यही कहना चाहेंगे, जो भी नेचर ने हमें दिया है उसको हमें बनाने का ना अधिकार है ना बिगाड़ने का अधिकार है। तो जैसे हमें नेचर ने दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, और ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
2: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बस्ती में प्रदूषण का शिकार रही मनोरमा नदी की सफाई के लिए अपनी टीम के साथ जन आंदोलन खड़ा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात से चर्चा में आए आकाश गुप्ता से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी प्रतिनिधि अमित सिंह।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
7: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
6: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
8: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
9: दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और आ गए हैं हम लेके प्रोग्राम थीम ट्रैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेगमेंट में। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट चैनल 100.7 FM मेगा हर्ट्ज पर, और इस घंटे आप बने रहेंगे मेरे यानी श्वेता राजवंशी के साथ। टाइम हो रहा है 5:12, और आज की थीम ट्रैक में भाई है कुछ खास, क्योंकि हम लेके आए हैं। तो आज हम बात करेंगे उन सॉन्ग्स की जो ट्रेडिशनल बॉलीवुड फॉर्मूला से बिल्कुल अलग, बिल्कुल हट के, कोई एकदम मतलब कि जो कन्वेंशनल म्यूजिक और कन्वेंशनल सॉन्ग्स होते हैं उनसे एकदम अलग, जैसे कि कोई अजीब लिरिक्स के साथ सॉन्ग्स आए या किसी ने अनयूजुअल म्यूजिक यूज किया। और कुछ ऐसे थे भाई जिनके बारे में एक्सपर्ट्स ने तो कह दिया ये नहीं चलेगा, लेकिन ऑडियंस ने कहा बॉस रिपीट पे लगाओ। जी हाँ, जिक्र होगी उन आवाजों की जो बॉलीवुड के रेगुलर प्लेबैक सिंगर्स जैसी नहीं लगती थी। ना टिपिकल हीरो वाली वॉइस थी उनके पास, ना ही कोई कन्वेंशनल स्टाइल, फिर भी इन सिंगर्स ने दिलों पर राज किया। जी हाँ, वो मेरे आपके हम सबके फेवरेट सिंगर्स में से एक हैं। तो तैयार हो जाइए एक म्यूजिकल काउंटडाउन के लिए, जहां हर गाने के साथ मैं बताऊंगी आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी। जी हाँ, सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए

11:58 प्रोग्राम चल रहा है FM टॉप 10। आप बने रहेंगे श्वेता के साथ इस घंटे, सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, तो आप सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत आवाज में इतना बेहतरीन गाना। कितनों को याद आ गया वो टाइम जब ये गाना लॉन्च हुआ था और ये बन गया था हमारे देश का एक न्यू एंथम। जी, चाहे कोई भी पार्टी हो या कोई भी फंक्शन, हर जगह ये सॉन्ग तो जरूर बजता था, है ना। और डांस फ्लोर्स में तो डेफिनेटली कितने लोग नाचते थे। इनफैक्ट उस वक्त तो इंटरनेट इतना नहीं पॉपुलर था ही नहीं इनफैक्ट, मगर अगर होता तो डांस रील्स की तो भाई लड़ियां ही लग जाती। लेकिन हाँ, मैं जरूर, मुझे याद आया वो टाइम, क्योंकि आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम हु यूज टू परफॉर्म ऑन दिस सॉन्ग। आई यूज टू लव द वॉइस एंड दिस सॉन्ग, बिकॉज गाना ही इतना खूबसूरत है, उसका मतलब ही इतना मीनिंगफुल, इतना सोलफुल सॉन्ग और इतनी सोलफुल आवाज में। जी हाँ, तो बात करते हैं, ये वो टाइम है जब ऋतिक रोशन लॉन्च हुए थे, राइट। ऋतिक रोशन इस वक्त लॉन्च हुए थे और उनके साथ ही साथ ये सॉन्ग भी आया। और हम लोग ये चीज नहीं भूलेंगे कि ये जो सिंगर की आवाज थी, उसने भी सबका ध्यान एक ही बार में खींच लिया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लकी अली की। लकी अली की रिलैक्स्ड और कन्वेंशनल जो आवाज, उनकी जो इस सिंगिंग ने भाई लोगों के दिलों के तार छेड़ दिए थे। उस वक्त बॉलीवुड के लिए ये बहुत ही अनयूजुअल था। लकी अली एक ट्रेंड बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर नहीं थे। ये मतलब ये देखिए कितनी कॉन्ट्रास्टिंग सी बात है कि वो एक ट्रेंड सिंगर नहीं थे, बट स्टिल उस रूहानी आवाज को जब भी कोई सुनता है तो एकदम पिघल सा जाता है। उनकी इसी नेचुरल स्टाइल ने ही उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई इंडस्ट्री में। और फिर कई सालों बाद जब इंडस्ट्री में एक समय आया कि भाई वो दौर चल रहा था जब सिर्फ और सिर्फ डांस ट्रैक्स बन रहे थे, उस समय के दौरान, उस समय के बीच एक ट्रैवल सॉन्ग आया। और वो जो ट्रैवल सॉन्ग था वो डायरी के पेजेस सा लगता था। मतलब उसे सुनो तो एहसास होता था, जैसे लगता था कि हम निकल पड़े हैं किसी सफर पर, इमेजिनेटिव सफर पर। इतना खूबसूरत सा गाना, क्योंकि एआर रहमान ने स्पेसिफिकली ये कह दिया था कि भाई इस सॉन्ग में लकी अली को ही मैं चूज करूंगा, और किया भी, क्योंकि उनकी जो आवाज में वो जर्नी का फील था, ये वो ही जस्टिस दे सकते थे। बिल्कुल आपने सही फरमाया, हम सुनते हैं हमारा ये नेक्स्ट सॉन्ग जो आपको ले जाएगा एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर। Enjoy and keep listening to 100.7 FM धड़कन लखनऊ की श्वेता के साथ।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
6: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
5: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
6: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

तो दोस्तों इस वक्त टाइम हो रहा है 5:32 और आप सुन रहे थे खूबसूरत से गाने एक खूबसूरत आवाज में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लकी अली की और उनके गानों की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये टेक्निकली बॉलीवुड सॉन्ग नहीं है, जो भी आपने सुना ओ सनम तेरी कसम, बिल्कुल ये एक इतनी खूबसूरत सी आवाज, एक इतना खूबसूरत सा गाना जब आया था तो मतलब हर चार्ट में, चाहे वो कहीं भी आते हों या कहीं बजते हों किसी भी प्रोग्राम में, ये टॉप पे होता था। चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो या कोई प्रोग्राम हो या कोई फंक्शन हो, ये गाने के बगैर तो जैसे लगता था कि कुछ अधूरा है। इनफैक्ट लकी अली के कोई भी गाने, आप किसी भी गाने की बात कर ले, है ही कोई एक अलग सा चार्म। इस ट्रैक ने पूरी जनरेशन की प्लेलिस्ट ही मतलब एकदम बदल दिया, न्यू डेफिनेशन दे दी, क्योंकि इनके अक्सर गानों में ना कोई हेवी ऑर्केस्ट्रेशन नहीं होता था, ना कोई फ्लैशी वीडियो, स्पेशली इस सॉन्ग में ना ही कोई फ्लैशी वीडियो था, ना ही कोई डांस था तो सिर्फ एक चीज जो थी, उनकी आवाज, उनकी एक खूबसूरत बेहतरीन रूहानी सूफियाना एकदम अलग सी आवाज और एक गिटार और ढेर सारी फीलिंग्स। बिल्कुल जी हाँ, तो आप सुन रहे हैं उन आवाजों की कहानियां जिन्होंने बॉलीवुड को एक नई डायरेक्शन दी और साथ ही साथ हमारे युवाओं में एक गाने की न्यू, मतलब हमारी जनरेशन में एक गाने का नया आयाम खोला। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ 100.7 FM पे, सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए मेरे साथ यानी श्वेता राजवंशी के साथ इस घंटे ओनली ऑन 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की।

तो आप सुन रहे थे खूबसूरत सा गाना और एक खूबसूरत सी आवाज में। देखिए, इनका इंट्रोडक्शन तो किसी भी लफ्जों के मोहताज में नहीं है और मैं कुछ भी बोलूं वो कम है, क्योंकि है ही इतनी पहुंची हुई आवाज। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो साल था 2005 जब ये सॉन्ग आया था, और ये जब सॉन्ग आया तो एवरीबडी वाज शॉक्ड, क्योंकि आवाज ही एकदम अलग थी। जहां बॉलीवुड में उस वक्त एक स्मूथ रोमांटिक आवाजों का दौर था, मतलब गाने जो आ रहे थे एक अलग ही रूहानी और एक खूबसूरत अंदाज में आते थे, रोमांटिक जो ट्रैक्स थे वो छाए हुए थे, वैसी ही आवाजें छाई हुई थी। लेकिन तब ही एक अलग सी रॉ आवाज ने एंट्री ली। इस आवाज में था एक सूफियाना अंदाज। जी हाँ, वो टाइम था। किसने एंट्री ली थी? बिल्कुल सही फरमाया, कैलाश खेर। इन्होंने जब बॉलीवुड की इंडस्ट्री में एंट्री ली

तो इनकी वॉइस को तो पहले तो शुरुआत के समय में इसको रेडियो फ्रेंडली नहीं माना जाता था, क्योंकि आवाज भाई थी ही इतनी हैवी, इतनी अलग, इतनी बेहतरीन, एकदम मतलब कि कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन इसी यूनिकनेस ने उन्हें एक सुपरस्टार बना दिया, गानों का शहंशाह बना दिया। इन्होंने अपने करियर के इनिशियल डेज में काफी स्ट्रगल्स देखे, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जाना ही होगा, और आप लोगों ने जरूर ऐसे उनके कई एपिसोड्स एंड प्रोग्राम्स देखे होंगे जहां उन्होंने ये शेयर किया है लोगों से, अपने फैंस से, कि कैसे वो यहां तक पहुंचे, कितनी स्ट्रगल्स के बाद, कैसे उतार चढ़ाव जिंदगी के होते हुए एकदम घूमते रहे, गोल गोल गोल गोल घूमते घूमते वो पहुंचे, और जब वो पहुंचे तो भाई सबको पीछे छोड़ दिए और इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही आवाज छा रही थी बुलंदियों पे, वो थी कैलाश खेर की आवाज। जी हाँ, और एक और आवाज थी, जहां एक तरफ ये बुलंदियों को छूती हुई आवाज थी, वहीं दूसरी तरफ एक और आवाज थी जो धीरे धीरे से बॉलीवुड के गलियारे में होते हुए अपनी जगह बना रही थी। ये एक बैंड जिसे हम लोग सिल्क रूट बैंड कहते थे, उसके फॉर्मर सिंगर, अगर आप जानते होंगे तो आपने गेस कर दिया होगा। जी मैं बात कर रही हूँ मोहित चौहान की। जी हाँ, उनकी आवाज मेन स्ट्रीम आवाज में पहचानी जाती थी, मतलब क्योंकि एक तो वो बहुत ही सॉफ्ट रोमांटिक गाने गाते हैं, तो उन्होंने एक पहचान धीरे धीरे अपनी बना ली थी। पर ये बॉलीवुड के नाम से थोड़ी अलग थी। आपके रेडियो सेट्स पर आने वाले इस गाने ने प्रूफ किया कि सॉफ्टनेस भी पावरफुल हो सकता है। बिल्कुल ओके, सुनते हैं ये बेहतरीन सा गाना ओनली ऑन 100.7 FM धड़कन लखनऊ की। बने रहिए श्वेता के साथ।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, तो आप सुन रहे थे इतनी खूबसूरत सी आवाज, एक खूबसूरत सा गाना मायरी। जानते होंगे कि इस गाने के पीछे किस आवाज का नाम है। जी मैं बात कर रही हूँ पलाश सेन। बिल्कुल मायरी फिल्म सॉन्ग नहीं था, फिर भी हर घर में सुना गया। इनफैक्ट एमटीवी जनरेशन के लिए गाना तो एक इमोशनल एंथम बन गया। भाई ये वो टाइम था जब मैं अभी अपने कॉलेज डेज में थी, एंड इवन आई आल्सो यूज्ड टू गेट सो एक्साइटेड एंड आई यूज्ड टू चेरिश दिस सॉन्ग। मतलब मुझे बेहतरीन गानों में से एक ये एक गाना और ये एक आवाज़ लगती थी। हालांकि बहुत ही अनकन्वेंशनल गाने इन्होंने गाए हैं डॉक्टर पलाश सेन ने, और इनका करियर भी बहुत ही अनकन्वेंशनल रहा है। जी प्रोग्राम चल रहा है टॉप 10 और आप सुन रहे हैं उन आवाज़ों की कहानियाँ जिन्होंने बॉलीवुड को एक नई डायरेक्शन दी। ऐसे ही एक ट्रेडिशनल कव्वाली बैकग्राउंड से आने वाले सिंगर की आवाज को बॉलीवुड ने इनिशियली रिस्की चॉइस माना। भाई जाहिर सी बात है, थोड़े से जो लीक से हटके लोग आते हैं उनके लिए हर काम बेहद पेचीदा हो जाता है। बड़ा यही तो मतलब एक कहते हैं ना, याद करने वाली चीज भी होती है कि जो स्ट्रगल होती है ना, जो एंट्री पॉइंट होता है, सबका एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। और वही कहानियाँ वही किस्से लोगों को मोटिवेट करते हैं। और इसी के साथ ये जो सिंगर हैं इन्होंने भी एक लंबी छलांग मारी और इन्होंने अपना एक इतना बड़ा नाम बनाया इंडस्ट्री में और लोगों के दिलों पे राज किया। तो उसी के साथ जब ये गाना आया, माइंड यू ये गाना आप सुनिएगा अभी, सब बदल गया। इतनी रूहानी आवाज, इतना खूबसूरत अंदाज। चलिए देर किस बात की, सुनते हैं अपना अगला गाना टॉप 10 में।

ये गाने जो आप सुन रहे हैं, तो दोस्तों ये गाने जो आप सुन रहे हैं कभी आउटडेटेड नहीं हो सकते। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? आज भी जब दुनिया ऑटो ट्यून और वायरल बीट्स पर बिजी है और हम सीक्रेटली चाहे जो हो जाए इन्हीं मेलोडीज की तरफ ना लौट कर आते हैं और यही लिरिक्स सुनते हैं, क्योंकि भाई ये गाने ही तो हैं जो हमें इतने मीनिंगफुल लगते हैं, इनकी म्यूजिक इतनी सोलफुल है और इमोशंस भी ना इस गाने के रियल से लगते हैं। कहते हैं ना, हर जमाने में कुछ आवाजें ट्रेंड फॉलो नहीं करती, वो ट्रेंड क्रिएट करती हैं। ये वही सॉन्ग्स हैं जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि ये कभी मास हिट्स बनेंगे, लेकिन आज ये कल्ट क्लासिक्स बन चुके हैं। चलिए इसी के साथ मैं वाइंड अप करती हूँ प्रोग्राम FM Top 10 को। इजाजत दीजिए मुझे, कुछ ही देर में फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास तीर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। वहीं विशेष जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री चौधरी ने जनपद के प्राचार्य और शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों, नई शिक्षा नीति तथा विकसित भारत के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका का सार्थक चर्चा किया। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज प्रयागराज में वाराणसी विंध्याचल एवं प्रयागराज मंडल के संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन के में आज प्रदेश का किसान खुशहाल है, उनकी उपज का उचित मूल्य उन्हें मिल रहा है। श्री शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला प्रदेश बन गया है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 8 जून से 11 जून तक सभी विकास खंडों में जन प्रतिनिधियों के नेतृत्व में से यात्राएं निकाली जाएंगी। ब्रिक्स इंडिया के विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज वाराणसी स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा किया। उन्होंने शिल्प संग्रहालय का भ्रमण किया, साथ ही वाराणसी की सांस्कृतिक परंपराओं और शिल्प विरासत पर विशेष रूप से तैयार की गई एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति को भी देखा। प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय हस्तशिल्पों में गहरी रुचि दिखाई और कारीगरों के कौशल और उत्कृष्टता की सराहना की। इस दौरे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के हस्तशिल्प क्षेत्र को प्रदर्शित करने और ब्रिक्स देशों के साथ सांस्कृतिक तथा व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को सकुशल, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए उन्नाव के जिलाधिकारी घनश्याम मीना और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने आज परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। फरुखाबाद पुलिस द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी ने विद्यालय में छात्राओं को उनके अधिकारों, साइबर अपराधों से बचाव तथा हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर जागरूक किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम को 7 बजे प्रसारित होगा। तब तक सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो श्वेता के साथ।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
3: दोस्तों वेलकम बैक, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे शहरे नवाबो। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो चैनल 100.7 FM मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये वक्त होता है शाम का जब आप एंजॉय करते हैं आपका शो, आपका प्रोग्राम शामे आवाज। मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता राजवंशी, इस घंटे एक बार फिर से आपकी खिदमत में आपके साथ। स्वागत करती हूं आप सबका प्रोग्राम शामे अवध में। भाई शामे अवध प्रोग्राम है और यहां पे लखनऊ का दिल धड़कता है। हां जी, बात होगी तमाम अपडेट्स की, उससे पहले लेट्स टेक अ क्विक म्यूजिकल ब्रेक एंड यू नो इट, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों, शाम के 6 बज रहे हैं और प्रोग्राम चल रहा है शामी अवध, और हर शाम की तरह आज भी हम आए हैं और आज मैं लेकर आई हूँ लखनऊ सिटी की हर छोटी बड़ी अपडेट, मौसम से लेकर मेट्रो तक, ट्रैफिक से लेकर तहजीब तक। जी हाँ, हम यहाँ शेयर करते हैं आपसे हमारे शहर की मेजर सिटी हैपनिंग्स, इवेंट अपडेट्स, इन शॉर्ट शहर रौनक। हाँ यार, क्या चल रहा है हमारे शहर लखनऊ में, जानते हैं क्या? चलिए, बातों का सिलसिला तो बना ही रहेगा और साथ ही साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कल सुबह 7 जून को हमारे कार्यक्रम आज के मेहमान में आप सुन सकेंगे सुप्रसिद्ध अभिनेता पद्मश्री अनिल रस्तोगी जी को सुबह 10 बजे सुरेंद्र राजेश्वरी जी के साथ, और ये प्रोग्राम आप सुन सकेंगे न्यूज ऑन एयर ऐप पे और हमारे DTH पर। तो बिल्कुल आप रिमाइंडर लगा लीजिए और सुनिएगा सुबह 10 बजे कार्यक्रम आज के मेहमान में, गेस्ट हैं हमारे पद्मश्री अनिल रस्तोगी जी। जी हाँ, तो ये सब सिलसिला चलता रहेगा, हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, पर उससे पहले लेट्स टेक अ क्विक म्यूजिकल ब्रेक एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की श्वेता के साथ।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
2: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
1: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
2: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

0: जून की गर्मी तो भाई अपने पीक पर है, लेकिन नवाबों के शहर की शाम का अंदाज हमेशा की तरह
1: दिल का शहर।
0: जी हाँ, बात करो तो आज जब मैं आ रही थी ना स्टूडियो, दोपहर में बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, मतलब कि कह रह सकते हैं कि इस वक्त गर्मी चरम सीमा पर है। और ठीक है, कुछ दिन में हमारे यहाँ भी बारिश की दस्तक हो जाएगी, तब तक हम भी इंतजार कर लेंगे। क्या हुआ भाई, हम लोग हैं ही बड़े दिल वाले। कोई बात नहीं, इस घंटे आप बने रहेंगे मेरे यानी श्वेता राजवंशी के साथ। टाइम हो रहा है 6:20। दोस्तों, इस हीट वेव में आप ना ये ध्यान रखिए कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, बिकॉज इस चीज का बहुत जरूरी आपको ध्यान देना है। और मैं बस एक आपको गाना बजाने से पहले एक चीज बोलूंगी कि चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, आप कभी भी निकल रहे हो उस गर्मी में, वाटर बॉटल एंड कुछ हैंकी या कुछ ऐसा जरूर अपने साथ लेकर निकले, और दोपहर में निकल रहे हैं तो स्कार्फ या सनग्लासेस, जिससे कि आप अपने आप को और साथ ही साथ इन गर्मियों की छुट्टियों में जो बच्चे खेल रहे हैं या बड़े बूढ़े बाहर निकल रहे हैं उनका आप ध्यान रख सकें और उस हीट वेव से उनको बचा सकें। तो आप जरूर ध्यान रखिए, बिकॉज सावधानी में ही समझदारी है। तो इंटरटेनमेंट बरकरार रहेगा क्योंकि आप हैं मेरे साथ यानी श्वेता के साथ। तो चलिए, लेट्स एंजॉय सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ओनली ऑन 100.7 FM, धड़कन लखनऊ की।

तो दोस्तों वीकेंड पर आप बाहर निकल ही रहे होंगे भाई, गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं और वीकेंड है तो फिर बहुत लोग इसी इंतजार में रहते हैं कि यही मौका है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ निकल लिया जाए, थोड़ा घूम घूम आया जाए। लेकिन लेट मी रिमाइंड यू, पीक आवर्स में आप निकल रहे होंगे अगर, इनफैक्ट अभी ये शाम का वक्त है तो मेट्रो फ्रीक्वेंसी जो इस वक्त है ना लगभग हर 5 से 7 मिनट पर चल रही है, तो आप अवॉइड करिए अपने यू नो अपने ट्रांसपोर्ट ले जाना इस वक्त, स्पेशली अगर आप जा रहे हैं अपने लखनऊ के इंटीरियर्स में कंजस्टेड एरिया में, क्यों ना मेट्रो ले ली जाए, राइट। और सिटी में यूपी मेट्रो की अवेयरनेस कैंपेन की अगर बात चलें तो ये जोरों शोरों से चल रहा है, जहां सिटीजन्स को इको फ्रेंडली ट्रैवल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। भाई जरूरी भी है, क्यों क्या कहते हैं। और हजरतगंज, चारबाग और आलमबाग साइट पर शाम में ट्रैफिक हैवी रह सकता है। भाई ये तो है ही हमारे वो एरिया जहाँ पे चाहे वीकेंड हो, चाहे वीकडे हो, चाहे कुछ भी हो, लोगों का तांता लगा रहता है और भीड़ तो लगी रहती है, स्पेशली शहीद पथ और पॉलिटेक्निक क्रॉसिंग के आसपास। भाई सैटरडे इवनिंग है, ओवर क्राउडेड एरिया है, ओवर क्राउडेड तो रहेगा है ना, तो बिल्कुल घर से निकलने से पहले आप रूट चेक कर लीजिएगा और तभी निकलिएगा। एक हिदायत देती हूँ, ड्राइव सेफली, राइट। तो इस घंटे में बने रहेंगे श्वेता राजवंशी के साथ और टाइम हो रहा है 6:28 और बढ़ते हैं हम अपने अगले से खूबसूरत से ट्रैक की ओर। सुनते रहिए हर रात 7 FM, धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
3: 100.7. Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

दोस्तों, वीकेंड ट्रैवल को देखते हुए इस वक्त चारबाग रेलवे स्टेशन और कुमती नगर टर्मिनल पर पैसेंजर्स रश जो है ना एक्सपेक्टेड है। जाहिर सी बात है, छुट्टियों का टाइम चल रहा है और लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, वीकेंड भी है, तो आपको रश तो मिलेगा ही। तो अगर आप ट्रेन जर्नी कर रहे हैं या आपको कोई काम है जहां पे आपको एक छोटी सी ट्रैवल के लिए निकलना है, तो स्टेशन थोड़ा अर्ली पहुंचना बेटर रहेगा। आप जानते हैं, आप शहर लखनऊ में है और वीकेंड पे मेन जो यहां

पे सिटी सेंटर्स हैं वो क्राउडेड हो सकते हैं, क्राउडेड मिल सकते हैं, तो बिल्कुल आप थोड़ा अर्ली निकलिए और साथ ही साथ आप जरूर अपना जो ट्रेन का स्टेटस है या जो कहते हैं ना प्लेटफॉर्म डिटेल्स हैं ये सब पहले से ही चेक करके निकलिए। वहीं दूसरी ओर मैं आपको ये बताना चाहूंगी जो सिटी कनेक्टिविटी को और फास्ट बनाने के लिए हम लोग इतने दिनों से ये बस सुन रहे हैं ना कानपुर लखनऊ अवध एक्सप्रेस प्रोजेक्ट का, ये भी काफी डिस्कशंस में चल रहा है, मतलब मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है जल्दी से ये जो है ना ये खुले और फिर हमारा जो ट्रैवल टाइम है ना वो इतना कम हो जाएगा और मतलब इतनी बेहतरीन ये बढ़िया रूट होगा कि मतलब मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, बिकॉज आना जाना तो लगा ही रहता है भाई लखनऊ कानपुर, ये तो आप जानते हैं हम जानते हैं। तो साथ ही साथ एक और चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी कि लखनऊ सिटी को ना ईवी फ्रेंडली और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट हब बनाने के लिए मल्टीपल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इनिशिएटिव्स पर काम किया जा रहा है ना, ये कायदे की बात। तो बिल्कुल जहां हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसी ओर ये कदम है जहां पे हमारे शहर लखनऊ में ये कदम उठाया जा रहा है जिससे कि हम ईवी फ्रेंडली हो सके और थोड़ा सा हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी सस्टेनेबल तरीके से यूज कर सके। भाई देखिए घूमना घुमाना चलता रहेगा और हम घूमने भी निकलते क्यों हैं भाई, अपनी कुछ दूरियों को मिटाने के लिए, दूरियों को खत्म करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी और आपकी इस दूरियों को खत्म करते हैं और सुनते हैं अगला प्यारा सा खूबसूरत सा सॉन्ग ओनली ऑन 100.7 पे। सुनते रहिए इस घंटे आप बने रहेंगे मेरे यानी श्वेता राजवंशी के साथ।

तो दोस्तों आप प्रोग्राम सुन रहे हैं शामी अवध और आप हैं श्वेता के साथ। तो मैं आपको कुछ और अपडेट्स दे देती हूँ अपने शहर लखनऊ के बारे में। बात हो रही थी ट्रैवलिंग की, बात हो रही थी सिटी ट्रैफिक की, बात हो रही थी ईवी ट्रैवलिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी मेट्रो कम्यूटर्स के लिए गुड न्यूज है कि सिटी का ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर फ्यूचर एक्सपेंशन मोड में है। भाई ये तो अपकमिंग न्यूज जो है ना, ये बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज ये फेज जो लॉन्च होने वाला है, जो ये प्लानिंग जो चल रही है, ये ड्राइवरलेस ट्रेन की मतलब को लेके आएगा। इसकी प्लानिंग की जा रही है भाई। ये तो मतलब अभी तक आपने सुना है टेस्ला गाड़ियां, अब भाई हम लखनऊ वाले तो मेट्रो ये लाने वाले हैं जो ड्राइवर लेस होंगे। माय गुडनेस, दिस इज सो सुपर, दिस इज फैंटास्टिक न्यूज। और भाई समर्स में इसके चलते रश चल रहा है हर तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ट्रैवलिंग के वक्त जरूर चेक करके निकले, क्योंकि क्राउडेड एक्सपेक्टेड है क्राउडेड प्लेसेस पे स्पेशली, और वैसे भी सिटी में इतने इवेंट्स होते रहते हैं। और चाहे आप मॉल्स चले जाएं, चाहे आप अमीनाबाद चले जाएं, हजरतगंज चले जाएं, चारबाग चले जाएं, हर जगह आपको लोग तो मिलेंगे, बेशुमार तादाद पे लोग निकल ही रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो आप भी अपना ध्यान रखिए और जब भी बाहर निकलिए सब प्री प्लान्ड होके निकलिए। और साथ ही साथ अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं तो ध्यान रखिए कि आप अपनी जो सहूलियतें जो आपको रखनी है चीज़ें, स्पेशली पानी और कुछ खाने की चीज़ें ज़रूर कैरी करें। और साथ ही साथ वो बच्चे जो इस वक्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए ये मैं एक सलाह दूंगी कि कई ढेर सारे शहर में काउंसलिंग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, और साथ ही साथ आप अप्रोच भी कर सकते हैं काउंसलर्स को जो आपको करियर रिलेटेड सजेशंस दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक सुविधा मिलती है जहाँ पे आप जो करना चाहते हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं उस बारे में, एजुकेशन फील्ड में, करियर फील्ड में, क्योंकि ये जमाना तेजी से बदल रहा है और हमारे पास इतने ढेर सारे करियर ऑप्शंस हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। आज के दौर पे हमें बेहद ये ज़रूरी है, ये बेहद मतलब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें एक राइट गाइडेंस जो है वो चाहिए। और कितने ढेर सारे हमारे सामने फील्ड्स हैं, करियर फील्ड्स हैं, उसको चुनने के लिए भी एक सही सलाह, एक सही सपोर्ट चाहिए जो एक एक्सपर्ट ही दे सकता है। तो डेफिनेटली आप काउंसलर्स को अप्रोच करिए और जो करियर फेयर्स होते हैं शहर में आप वहाँ जाइए, विजिट करिए एंड अपनी इन्फॉर्मेशन तगड़ी करिए, प्रॉपर करिए और अपने भविष्य का सही चुनाव कीजिए। जी हाँ, तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा। इसी के साथ हम सुनते हैं आपके रेडियो सेट्स पे आने वाला ये अगला गीत जो इतना खूबसूरत है ना कि ये हमारी शाम ही बना देता है, क्योंकि भाई चाहे इमेजिन कर लो चाहे सुन लो, ये गाना तो हम सबके फेवरेट एक्टर का है और ये गाना भी जिन्होंने गाया है, क्या हाहा क्या खूबसूरत आवाज है भैया। चलिए सुनते हैं, लुफ्त उठाते हैं, मजे लेते हैं इस प्यारे से गाने की जो आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पे ओनली ऑन 100.7 FM। सुनते रहिए श्वेता के साथ।

24 घंटे आप बने थे श्वेता के साथ। टाइम हो रहा है 6:56 और चलिए इसी के साथ मैं वाइंड अप करती हूँ हमारा आज का प्रोग्राम शामियावाद को। इजाजत दीजिए मुझे, कुछ ही देर में हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट, हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम एफएम, हेलो एफएम में। यस, और बने रहिए श्वेता के साथ। मिलते हैं टॉप 10 न्यूज ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 100.7 एफएम, स्टेशन ऑफ द नेशन।

नमस्कार, अब सुनिए यूपी की दिन भर की टॉप 10 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। केंद्रीय वित्त मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी महाराजगंज में प्राचार्य और शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री चौधरी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रयागराज में वाराणसी विंध्याचल एवं प्रयागराज मंडल की संयुक्त मंडलीय खरीक उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन किया। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला प्रदेश बन गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने वाराणसी में बताया कि नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घोषित पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश 4 में से 3 श्रेणियों में प्रथम स्थान पा रहा है। प्रदेश के पंचायती राज विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को 12 साल का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही आजादी के बाद लगातार लंबे समय तक देश में शासन करने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। उन्होंने वाराणसी स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल का भी दौरा किया। प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को आयोजित की जाएगी। परीक्षा को सकुशल और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए आज विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 8 बजे प्रसारित होगा। सुनते रहिए FM Rainbow 100.7 FM श्वेता के साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
2: देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

शाम के साथ बज चुके हैं और आप बने हैं श्वेता राजवंशी के साथ और इस घंटे आप बने रहेंगे मेरे साथ। प्रोग्राम शुरू हो गया है हेलो एफएम, जहां आप ही चाह रहे होंगे कि भाई हमारा फोन लग जाए आज, जी हमारी भी फरमाइश पूरी हो जाए। बिल्कुल आप यही चाह रहे होंगे तो बिल्कुल होगी आपकी ख्वाहिश पूरी और आपकी होगी फरमाइश पूरी अगर आप फोन लगाएंगे तब ना। तो जल्दी से नंबर घुमाइए, फोन मिलाइए, डायल कीजिए, हम तक पहुंचिए और ट्रिंग ट्रिंग करके हमें बोलिए हेलो। तो जरूर हम बैठे हैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए और आपकी आवाज को सुनने के लिए। तो आप कहीं भी हैं जल्दी से रुक जाइए और हमारे नंबर्स पे डायल कीजिए, हम तक पहुंचिए और आपको पता है किसे बात करनी है। आज है ऑन एयर श्वेता राजवंशी। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस प्रोग्राम में और आपको सुना

करके हमें बोलिए हेलो तो जरूर हम बैठे हैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए और आपकी आवाज को सुनने के लिए। तो आप कहीं भी हैं जल्दी से रुक जाइए और हमारे नंबर्स पे डायल कीजिए, हम तक पहुंचिए और आपको पता है किसे बात करनी है। आज है ओने श्वेता राजवंशी। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस प्रोग्राम में और आपको सुनाते हैं तड़कता भड़कता पहला गाना सिर्फ आपके लिए आपके रेडियो सेट्स पर ओनली ऑन 100.7 FM धड़कन लखनऊ की।

0: बिल्कुल, दिल में हमारे रहने वाले आप हैं और सिर्फ आप हैं। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फरमाइश और आपकी ख्वाहिश पूरी हो तो जल्दी से डायल कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। जी, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनका नाम सुनते हैं। हेलो हेलो, हेलो हेलो,
1: हेलो
0: क्या आप मुझे सुन सकती हैं?
1: जी मैम, आवाज आ रही है?
0: हाँ जी, अब आई आपकी आवाज। नमस्ते
1: नमस्ते मैम
0: नमस्ते।
1: जी,
0: आप
1: नाम
0: अपना
1: सुषमा यादव, रही माबा लखनऊ से बोल रही।
0: सुषमा यादव?
1: जी मैम।
0: ओके, हाँ जी सुषमा जी,
1: जी मैम।
0: तो बताइए, आपने हमें याद किया। आप हमें बताइए कि आप हमारी रेगुलर लिसनर हैं।
1: जी मैम।
0: क्या बात है, तो आपकी ख्वाहिश तो आज हम पूरी करेंगे। आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मैम जीना सिर्फ तेरे लिए,
0: यही गाना क्यों,
1: बेटर
0: किसके लिए आप जी रही हैं? जीना
1: सॉन्ग। मैं तो
0: सिर्फ
1: मेम्बो के लिए, हस्बैंड के लिए, परिवार के लिए।
0: क्या बात है। अच्छा जी,
1: मैम जिस दिन कॉल नहीं लगती है, पर दूसरी बार कॉल लगी है मैम। 6 महीने से ट्राई करते हैं।
0: देखिए कितनी खूबसूरत बात है, आज आपकी कॉल लग गई और आज आप पहली कॉलर
1: पहली
0: हैं।
1: बार आपसे मैम बात हो रही है। जी
0: हमसे भी पहली बार बात हो रही है और आपकी आज के प्रोग्राम में भी पहली कॉल लगी है।
1: जी जी मैम,
0: यही
1: ट्राई
0: होता है
1: कर रहे थे,
0: कृपा।
1: लग गया कॉल।
0: हाँ जी,
1: लकी है मैम आप, हम भी।
0: हाँ मैं भी आपके लिए लकी हूँ। बिल्कुल, तो इसी बात पे हम आपका फेवरेट सॉन्ग तो बिल्कुल हम प्ले करेंगे। मैंने क्यू
1: और
0: करके
1: मैम
0: रख
1: आप
0: दिया है।
1: बताइए, आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ और आपकी आवाज सुन के और भी अच्छी हो गई हूँ। भाई देखिए, जब हमें कॉलर्स इतने प्यार से कॉल करते हैं और पूछते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं।
1: हाँ जी मैम।
0: जी, तो आपकी ये फरमाइश किन किन को आपको पहुंचानी है, नाम आप बताना चाहें तो बता सकती हैं जल्दी से।
1: मैम सबसे पहले आपको,
0: थैंक यू।
1: और मैम एक मेरी फ्रेंड है सीमा रावत जी, वो कॉल नहीं कर रही, बहुत दिन से उनकी आवाज नहीं सुने मैम।
0: अरे
1: अगर
0: भाई
1: मेरी आवाज को सुन
0: सीमा
1: रही हो तो
0: जी,
1: जरूर कॉल करें।
0: कहाँ है, कॉल कर लो अपनी दोस्त को जल्दी से।
1: जी
0: जी,
1: बहुत दिन से उनकी कॉल नहीं लगी मैम। बीबी भारती सुनते हैं और FM रेनबो भी सुनते हैं।
0: अच्छा, तो इसका मतलब वो भी FM रेनबो सुनती हैं।
1: जी मैम सुनती हैं, कॉल भी करती हैं,
0: हाँ,
1: रेगुलर इतना
0: तो
1: मैं भी हूँ
0: भाई
1: भी है।
0: मैं प्रे करती हूँ कि ये आवाज उन तक पहुंचे, आपकी और मेरी भी। भाई कॉल कर लो
1: जी मैम, आवाज नहीं मिली
0: वीक।
1: मैम। एफएम रेनबो के जरिए से हम सारे दोस्त एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। यही है रिश्ता हमारा और आपका, जो दूरियां कम
1: मैम
0: करता है। जी चलिए सुषमा जी, मैं आपका गाना प्ले करूं?
1: जी मैम, नाम लेना चाहते हैं
0: हाँ
1: दोस्तों
0: जी,
1: का।
0: जल्दी से नाम लीजिए।
1: मैम सीमा रावत हैं, ओमकार भैया हैं, सुरभि सिंह हैं, और वो सीतापुर से मैम, वो शमा परवीन जी हैं, रिंकी पिंकी हैं मैम, शिव भैया हैं, इंद्र नगर संतोष भैया, नवनीत मौर्या हैं। जी मैम, और आपको भी साधना और सभी सुनने वाले को।
0: ऑल राइट, थैंक यू सुषमा जी। मैं अब आपका सॉन्ग प्ले करती हूँ हमारे
1: थैंक यू मैम।
0: स्टूडियो से, आपके रेडियो सेट्स पर, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये प्यारा सा
1: थैंक
0: गीत।
1: यू मैम।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बिना भेदभाव की सरकार पहुंचा रही है योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदलाव भारत। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, 12 वर्षों में देश में हुआ शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन। और वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का किया भ्रमण। समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा से कुल 516 करोड़ रुपए की लागत की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें कटरा विधानसभा क्षेत्र में 256 करोड़ रुपए और करनैलगंज में 260 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का परिणाम है कि प्रदेश की नई पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार बिना भेदभाव घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है।
1: हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास।
0: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सुबह तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मां से सुखी स्वस्थ और समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच 3 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने हरदोई रोड स्थित मिलेनियम पैलेस में पश्चिम मंडल 2 के प्रबुद्ध नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद बैठक की। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास तीर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। श्री चौधरी ने जनपद के प्राचार्य एवं शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम में सहभागिता भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, रोजगार परक एवं तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत तथा नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रत्येक परिवार तक शीघ्रता से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वाराणसी में आयोजित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री श्री शर्मा ने योजना की प्रगति, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की विस्तार से समीक्षा की। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है।
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा और प्रोत्साहन से पूरे देश में सोलर रिवॉल्यूशन हो रही है, सौर क्रांति हो रही है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा लगभग 2 साल पहले की गई थी और उस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में काम हो रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पीएम सूर्य घर को लेकर के प्रगति कर रहे हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश

0: आज राजभर आज बस्ती पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री राजभर ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, इसलिए वो इतने लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं।
1: मोदी जी पर देश के 140 करोड़ जनता विश्वास कर रही और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया। 10 जून को 12 साल कार्यकाल पूरा उनका होगा और देश में आजादी के बाद पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे जो लगातार लंबे समय तक देश में शासन करने वाले प्रधानमंत्री गिने जाएंगे।
0: प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार आज परीक्षा की तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। इसी क्रम में अमरोहा में आज जिलाधिकारी डॉ नितिन गौड़ एवं पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने परीक्षा की तैयारियों को परखा। कानपुर में प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर गोष्ठी आयोजित की, साथ ही रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। वाराणसी में आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा किया। सदस्यों ने यहां भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले संग्रह को देखा। इससे पूर्व प्रतिनिधिमंडल ने भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। बौद्ध तीर्थस्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित नजर आए। ब्राजील से आए प्रतिनिधि लुकास ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये अनुभव उनके लिए बेहद प्रेरणादायक और अविस्मरणीय रहेगा। प्रतिनिधियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना है।
2: ब्रिक्स मीटिंग उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं, उसमें ट्रेड है, एनवायरनमेंट है, कल्चर इज आल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स। तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ भी नहीं आए। हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी।
0: अयोध्या के श्रीराम मंदिर परिसर में स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर 23 जून को ध्वजा स्थापना होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं।
3: प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य, उनके कर कमलों के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम सम्पन्न होगा और इसके लिए जो है कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। लोगों को निमंत्रित किया जा रहा है और यह संख्या भी जैसा बताया गया ट्रस्ट के द्वारा 3000 से ऊपर संख्या होगी और हम सब उसके साक्षी बनने जा रहे हैं, क्योंकि अब यह शेषावतार का जो मंदिर है, जो शिखर है, वह बहुत लंबे प्रतीक्षा के बाद अब उस पर ध्वजारोहण होने जा रहा है।
0: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज प्रयागराज में वाराणसी विंध्याचल एवं प्रयागराज मंडल की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा बिना भेदभाव के सरकार पहुंचा रही है योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदलाव भारत। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, कहा पिछले 12 वर्षों में देश में हुआ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। और वाराणसी में आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का किया भ्रमण, समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लख

0: तो दोस्तों इस वक्त 7:30 हो चुके हैं और प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम, आप बनी है श्वेता के साथ। जी हाँ, मैं हूँ यहाँ पे आपकी फरमाइश पूरी करने, आपका फोन अटेंड करने। तो भाई देर किस बात की, शुरू हो जाइए, लग जाइए और उठाइए अपना फोन, लगा दीजिए हमारा नंबर। तो फिलहाल तो मेरे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। चलिए हम जानते हैं उनका नाम। हेलो
1: श्वेता जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: अरे वाह, देखिए महाकाल की नगरी से हमें कॉल आया है, उज्जैन से हमें कॉल किया है प्रेम जी ने। हाँ जी
1: बिल्कुल, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल
1: जी। और मैं बताऊँ, मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम सुनता हूँ एफएम रेनबो के में।
0: क्या बात है, आप हमें लगता है मेल भी भेजते हैं, क्योंकि मुझे याद आ रहा है मैंने शायद आपके मेल्स भी पढ़े हैं।
1: जी हाँ, वो आपको बताऊँ, जब मैं आकाशवाणी लखनऊ और रेनबो सुनने लगा हूँ ना,
0: हाँ जी,
1: तो मुझे नए नए दोस्त मिले हैं आकाशवाणी लखनऊ और रेनबो।
0: ये तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई
1: जी। आपको बताऊं, अभी 3-4 दिन पहले एक नया दोस्त बने हैं हमारे, मिंटू तिवारी।
0: जी राइट,
1: वो भी कार्यक्रम सुनते हैं, फोन इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करते हैं, फिलहाल अभी वो भी सुन रहे हैं।
0: देखिए ये बहुत बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि एफएम ही मतलब खुद में एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी बना रहा है। देखिए इसी तरीके से लोग जुड़ते जाते हैं और कारवा बनता जाता है।
1: श्रद्धा जी आपको बताऊं, श्रोता भी दोस्त बन रहे हैं हमारे और आरजेडी दोस्त बन रहे हैं।
0: अरे वाह,
1: जैसे कि आपके यहाँ के अलका सिंह जी हमारे दोस्त हैं, उसके बाद में चंद्रकला जी हमारे दोस्त हैं।
0: जी जी जी जी
1: जी, और आकाशवाणी लखनऊ से दीप्ति जोशी हमारे दोस्त है, निधि तिवारी जी है, बहुत सारे मतलब ऐसे दोस्त है ना हमारे जो बनते जा रहे हैं आकाशवाणी के लिए।
0: बहुत अच्छी बात है, और आई एम श्योर आप खुद में बहुत एक अच्छे इंसान हैं, जिस वजह से आपसे इतने लोग जुड़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज हमारे थ्रू?
1: जी चेता जी, फिल्म का नाम है सरगम और गाने के बोले डफली वाले डफली बजा।
2: बिल्कुल जानकारी, ये सब अब डिजिटल है, घर घर की गणना होगी, सुविधाओं के लेंगे हाल।
1: हमारे खास दोस्त है मिंटू तिवारी जी, और इनके अलावा जैसे हमारा एक ग्रुप बना हुआ है हेलो फरमाइश रेडियो एक्स्ट्रा ग्रुप, उसके भगवान सिंह परमा, लोकेंद्र वर्मा और कानपुर से पूनम जी भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
0: ओके ठीक है, चलिए।
1: और श्वेता जी ये गाना आपके लिए भी डेडिकेट रहेगा और अलका सिंह जी के भी लिए रहेगा।
0: ओके थैंक यू
1: जी, थैंक यू सो मच। और एक बात और है, ये मेरे जब से भी मैं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ है ना, मुझे काफी खुशी हो रही है।
0: क्या बात है जी, बिल्कुल ये बहुत एक हेल्दी हैबिट भी है आकाशवाणी एफएम रेनबो सुनना, गाने सुनते रहना, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी खुद की एक हैप्पीनेस क्वोशंट के लिए।
1: लेकिन जब एफएम पे या फिर आकाशवाणी पे अपनी पसंद का गाना अपनी आवाज के साथ में सुनने को मिलता है ना, तो मतलब खुशी दोगुना हो जाती है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी फीलिंग्स बिल्कुल ये गाना मैं प्ले करती हूँ और आप अब मजे उठाइए, लुफ्त उठाइए अपने इस फरमाइश का, ठीक है?
1: जी थैंक यू सो मच।
0: ओके
1: ओके बाय
0: बाय बाय। चलिए तो मैं प्ले करती हूँ ये प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट्स पर, ओनली ऑन 100.7 एफएम, धड़कन लखनऊ की।

हाँ जी, डफली तो बजती ही रहेगी जब तक आप सुनते रहेंगे एफएम रेनबो हमारे साथ। तो देखिए, बातों का सिलसिला जारी है और हम तक बहुत से कॉलर्स पहुंच रहे हैं। आप भी चाहते हैं अगर आपकी फरमाइश पूरी हो तो जल्दी से हमें कॉल करिए और हम तक अपनी फरमाइश पहुंचाइए। और इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। हेलो,

0: दुनिया।
1: क्या बात है, आपने तो वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग गा दिया। आपको पता है ये गाना हर बार मैं जब भी आती हूँ स्टूडियो में ये गाना जरूर
0: प्ले करती। आज बहुत अच्छे अच्छे गाने बजे हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: इसमें से ये गाना मेरा फेवरेट है।
1: अरे वाह, क्या बात है, गाया भी तो कितनी खूबसूरत बेहतरीन इंसान ने।

0: मैम मैं अपने सुनने वालों को अपना परिचय दे दूं।
1: हाँ जी बताइए, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
0: जी मैं ग्राम में पोस्ट प्रसिंधी कैसरगंज बहराइच से आपका छोटा भाई सत्यम कुमार बात कर रहा हूँ मैम।
1: हेलो, गुड इवनिंग
0: जी मैम। और कहती हैं आप?
1: मैं
0: आपकी
1: बहुत बढ़िया
0: कहती है।
1: और आप आज कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे सत्यम जी?
0: मैम गाना जो मैं सुनना चाहूंगा उसकी भी एक वजह है।
1: बताइए।
0: जैसे 2 दिनों से हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही थी, तो
1: हाय हाय,
0: जो मतलब विविध भारती पर एक मैम ने बताया था कि कल तक हमारे, यानी कि आज को बताया था कि हमारे अधिकारी ने कहा है कि फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, लेकिन वादे के मुताबिक हमारे यहाँ कल यानी कि शुक्रवार को ही शाम को 4 बजे तक फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इसीलिए उन अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने कड़ी मेहनत की फ्रीक्वेंसी भेजने के लिए।
1: जी बिल्कुल
0: मैम। गाना इसीलिए मैं गाना सुनना चाहूंगा, राम जी की निकली सवारी।
1: क्या बात है, ठीक है।
0: भगवान से मैंने प्रार्थना की थी
1: आपका गाना जी। मैंने क्यों कर दिया?
0: नाम लेना चाहूंगा।
1: हाँ जी ले लीजिए नाम।
0: सीतापुर से है सिस्टर समा परवीन अंसारी।
1: ओके।
0: और लखीमपुर से है साहिबा अंसारी। लखनऊ से है बबलू यादव और आप। और मैम कुछ और श्रोताओं को मैं जोड़ना चाहूंगा क्योंकि मैम मैं ऑनलाइन जोड़ नहीं सकता, मैं इनसे कहना चाहता हूँ। इसलिए रायबरेली से है हमारी सिस्टर रिंकी पिंकी। बाराबंकी से है बाबू अंसारी भाई, फैज अंसारी भाई। इन लोगों को मैं गाना डेडिकेट करता हूँ। और मैम उन्नाव से है हमारे एक दादा कॉल करते हैं, श्री प्रकाश तिवारी नाम है उनका।
1: अच्छा जी ठीक है। आप सभी के लिए ये प्यारा सा गीत जो
0: मैम, खासकर उन अधिकारियों को जिन्होंने मेहनत की
1: जी, आपकी देखिए सबसे बड़ा तो ईश्वर होता है और उसने आपकी इच्छा पूरी कर दी। तो चलिए हम सुनते हैं ये प्यारा सा गाना और आप भी इंजॉय कीजिए, हम भी इंजॉय करें ये गाना ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, मेरे यानी श्वेता राजवंशी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: हाँ जी, इस वक्त आप सुन रहे हैं FM रेनबो और हमारा प्रोग्राम चल रहा है हेलो FM। जी, तो हमारे साथ कई कॉलर्स इस वक्त जुड़े हैं और हम उनसे बात करेंगे। पर आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं हमसे, आप भी अगर हम उससे बात करना चाहते हैं, तो अभी भी वक्त है। आप नंबर घुमाइए, कॉल करिए हमें और हम तक अपनी फरमाइश पहुंचाइए। चलिए, इससे पहले कि थोड़ी देर हो, हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो।
1: हेलो हेलो, अभी
0: हाँ
1: सुनने
0: जी,
1: वाले को मेरा अस्सलाम वालेकुम।
0: क्या बात है। वालेकुम अस्सलाम।
1: और ये मेरा पहली बार फोन लगा तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहूँ क्या।
0: हाँ, पहले तो आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मतलब जो संदेश आपके गीत आप मतलब मेरे उसमें तो कई बार कॉल लग चुकी है मेरी,
0: ओके।
1: मगर इस प्रोग्राम में पहली बार लगी हूँ।
0: अच्छा, बहुत बहुत।
1: इसमें जो है मैं सन 2008 से फोन लगा रहा हूँ।
0: क्या बात है, तो आप हमारे बहुत ही पुराने लिसनर हैं, जान के
1: जी
0: बहुत खुशी हुई।
1: जी मैंने शायद सुनना, मैं सन तो नहीं याद है, जब ये FM शुरू हुआ था जब से मैं सुन रहा हूँ, बचपने से मैं बहुत
0: मतलब आप
1: छोटा था
0: अपने
1: भाई। जी
0: बचपन ये
1: कम से
0: बहुत
1: कम आज
0: ही
1: मेरी
0: अच्छी
1: उम्र हो
0: बात।
1: गई 33 साल। मगर
0: अरे वाह, क्या बात है। तो आप की जो ये फीलिंग है मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ये जो होता है ना कनेक्शन, ये बहुत ही रूहानी, बहुत ही प्यारा होता है और बहुत लॉयल होता है कि आप ये चैनल सुनना है और भाई हमें इसके लॉयल बने रहना है। तो ये तो मैं जानती हूँ और बिल्कुल ये समझती हूँ आपकी भावना। और बताइए, आप आज कौन सा गाना प्ले करवाना चाहते हैं, किस किस तक पहुंचाना चाहते
1: आज मैं गाना ये सुनना चाहूंगा, सौरंग मोहब्बत की मुश्क दिखाती है। क्योंकि
0: हैं?
1: ये
0: जी
1: गाना सिर्फ इसलिए कि मेरा फोन जो है पहली बार लगा हुआ है
0: आ
1: और किसी खास को
0: अरे
1: नाम
0: वाह,
1: लेना चाहेंगे।
0: अच्छा ठीक है, गुम गुमनाम। चलिए ठीक है।
1: बस इतना कह देंगे अगर वो सुन रहे तो वो मुर्गी चोर है।
0: अरे अरे अच्छा ठीक है, चलिए मैं ये प्रे करती हूँ, होप करती हूँ।
1: कुछ
0: हाँ
1: लोगों
0: जी
1: के नाम ले लूंगा।
0: हाँ जी, बिल्कुल लीजिए
1: जैसे
0: नाम।
1: हमारे संदीला से गुलफ्शा जी है, सीतापुर
0: ओके
1: से समा परमीन, रिंकी पिंकी, फायज भाई,
0: अच्छा
1: जावेद अख्तर भाई मुबारकपुर,
0: ठीक है।
1: मुबारकपुर से जो फोन करते हैं रेशमी नगरी से, मैं उनके घर के आस ही पास जाया करता हूँ क्योंकि मेरे ससुराल वही की है।
0: अच्छा, चलिए ठीक है। ये गाने जो मैं प्ले करने वाली हूँ,
1: जी
0: आप
1: और बाकी जो लोग सुने सभी के लोगों
0: जी सभी के लिए और खासकर उनके लिए जिनके लिए आप ये गाना बजवाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आप एंजॉय करिए ये सॉन्ग।
2: ओके। सौरंग महा

0: जी प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम और 7:54 हो रहे हैं और आप बने हैं श्वेता राजवंशी के साथ. बात चल रही है और लोगों से हम जान रहे हैं कि कौन से गाने वो इस वक्त सुनना चाहेंगे. हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं. चलिए हम बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनकी ख्वाहिश क्या है.
1: नमस्ते दीदी.
0: नमस्ते भैया. कैसे
1: हैं?
0: अरे अरे अरे थोड़ा सा तो फुल स्टॉप लगाइए. जी
1: आप कार्यक्रम बहुत बढ़िया कर रही दीदी.
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: नदिया के पार कौन देखा हमें देख के चला रहे बकरिया.
0: ओके ओके ओके ठीक है ठीक है. ये तो गाना बहुत प्यारा है. आप किस किस को सुनाना चाहेंगे?
1: को डेडिकेट करना चाहते ओम नारायण कुशवाहा जो इटावा से, उन्हें डेडिकेट करना चाहते.
0: ठीक है, सभी को ये सॉन्ग डेडिकेटेड है. ओके
1: हाँ जी.
0: चलिए सिर्फ आपके लिए और आपके सभी चाहने वालों के लिए ये गाना

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटीना सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और, आपका डीडी फ्री डिश।

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कल से 9 जून तक कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वो कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर और औरैया जनपदों में संगठनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे और कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों से संवाद करेंगे। पार्टी संगठन को मजबूत बनाने और केंद्र तथा प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इस दौरे में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसंपर्क कार्यक्रम भी शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शिक्षित भारत बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भागीदारी है। सरकार के द्वारा उनकी जायज मांगों को पूरा कराने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। श्री मौर्य आज प्रयागराज में आयोजित शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी एवं प्रांतीय अधिवेशन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों, अन्य स्टाफ को सरकार के द्वारा कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। गौतम बुद्ध नगर में 7वें वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो 2026 का आयोजन इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 3 से 6 जून तक किया गया। इस एक्सपो में वर्ल्ड एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस, बायोफ्यूल कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मेयर्स एंड आरडब्ल्यूए समिट, सस्टेनेबिलिटी, क्लीन एनर्जी और वेस्ट मैनेजमेंट पर चर्चा हुई। एक्सपो के अंतिम दिन आज भाजपा विधायक सोमेंद्र तोमर ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और एग्जीबिटर्स, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स और स्टेक होल्डर्स से बातचीत की। रायबरेली, गोरखपुर और जौनपुर सहित विभिन्न जिलों में आज संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और उनके गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। मध्य कमान मुख्यालय ने ऑफिसर्स सिक्स ए साइड हॉकी टूर्नामेंट 2026 का खिताब शानदार जीत के साथ 2-1 से अपने नाम कर लिया। लखनऊ स्थित 11 गोरखा राइफल सेंटर स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल मैच में मध्य कमान ने मध्य यूपी सवेरिया को पेनाल्टी स्ट्रोक में 2-1 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। निर्धारित समय में दोनों टीमों के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ, जिसके बाद विजेता का फैसला पेनाल्टी स्ट्रोक के माध्यम से किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदर सेन गुप्ता ने विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कृत किया।

0: दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। वसल की उस रात को हर्फों में बयां करता संजीदा रेडियो प्रोग्राम FM रेनबो पर।
1: सायमीन इस्तकबाल करता हूं आपका प्रोग्राम आबशार में सुनील आज FM रेनबो 100.7 पर।

0: गणना हमारा विकास।
1: दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, वस्ल की उस रात को हर्फों में बयां करता संजीदा रेडियो प्रोग्राम आपशार 100.7 FM रेनबो पर।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027 हमारी

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

एक मोहब्बत में पड़ा हुआ इंसान, इबादत में पड़े हुए इंसान के ही माफिक उसी की तरह दीवाना हो जाता है। और जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर ना अपना ख्याल रहता है ना अपनों का, बस उस नशे में चूर रहता है वो शख्स जिसे मोहब्बत कहते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आबशार सुनील के साथ 100.7 आकाशवाणी FM रेनबो लखनऊ पर।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपशार सुनील के साथ 100.7 आकाशवाणी एफ एम रेनबो लखनऊ पर। जिंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, जो नहीं मिला उसे दफा कीजिए, आप अकेले बैठकर चाय का मजा लीजिए। जी आप मजा ले रहे हैं प्रोग्राम आपशार का सुनील के साथ, बने रहिए।

आकाशवाणी समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की।

0: अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और अपार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास

0: नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुख में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

0: सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। KL राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi. Says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards US military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts under 18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze.

तो भाई हमको तो इस पूरे गाने में एक ही चीज समझ में आई, करेजा और पियरा। पियरा सरसों को भी हमारी तरफ कहते हैं, आपकी तरफ तो सरसों कहते होंगे और करेजा भी कहते हैं। मतलब लैटिन अमेरिकी जो गाना ये रहा जूलियो ग्लेसियस की आवाज में, ये इसका दो तीन शब्द मुझे समझ में आया। मतलब उनका इंटरप्रिटेशन मैंने किया है, पता नहीं वो, खैर इसका मजमून तो मैंने आपको बता ही दिया कि मोहब्बत वाला गाना है, मोहब्बत में धोखा खाए व्यक्ति का गाना है जो फिर से एक बार वो मोहब्बत है। वो गाना सुना था ना, फिर मोहब्बत करने चला है दिल, ऐसा गया ना, तो बिल्कुल उसी का लैटिन अमेरिकी भाषा में एक गाना है ये। अच्छा, बाबू अंसारी देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से हमें मेल कर रहे हैं, और मेल तो उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा, उन्होंने कह रहा मूड मस्ती का हो रहा है भाई, रेडियो दोस्त का नाम भी शामिल कर लीजिए, थैंक यू। इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग की शॉप। अच्छा, इन्होंने पूरा पूरा म्यूजिक सिस्टम ही अपना खोल डाला है, पता नहीं क्यों भाई, इसमें क्या दिक्कत आ गई है। आपने मतलब पूरा फोटो भेजा हुआ है मुझे, और बगल में बहुत सारे मतलब वायर वगैरह हैं, क्या है एग्जैक्टली इसको थोड़ा मुझे बताइएगा बाबू अंसारी जी। और हमें मेल कर रहे हैं वकील अहमद जी, कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, पॉप टाइम अच्छा लगता है, गाने भी अच्छे बज रहे हैं, अच्छा रेनबो कभी भी अच्छा लगता है। अहमद मंसूरी साहब, थैंक यू सो मच, रेनबो कैफे आप बहुत आपको अच्छा लगता है, पॉप टाइम भी अच्छा लगता है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अशोक कुमार जी हमें मेल कर रहे हैं रायपुर ओडारा मिथौली लखीमपुर खीरी से, और कह रहे हैं कि प्रोग्राम जान आ गई, थैंक यू सो मच। जितेंद्र नामदेव जी, आपका मेल आ चुका है। जितेंद्र नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, आरूही नामदेव, सौम्या, जिला शहडोल एमपी से आप हमें मेल कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आनंद तिवारी जी हमें मेल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ख्वाबों की ख्वाहिश में इस दुनिया में इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। ये दारू कुइयां मल्लावा हरदोई से आप मेल कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रोग्राम की शुरुआत बहुत सुंदर हुई थी, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम की शुरुआत यानी आगाज़ अच्छा हुआ है तो दोस्त अंजाम भी अच्छा होगा। और आप ज़रूर अपनी पसंद बताइए कि आप किस तरह, हरियाणवी सुनना है, पंजाबी सुनना है, या भोजपुरी, या तड़का लगाना है, क्या करना है, ये सब भी बताइए ना भाई। शेर तो अच्छी बात है। कृष्णकांत सिंह जी नमस्कार, रेनबो कैफे कार्यक्रम जैसे शुरू होता है ऐसा लगता है जैसे सिंदूरी शाम के समय किसी म्यूजिकल कैफे में बैठे हों, थैंक यू सो मच डियर। जब आप अपने मनमोहक अंदाज में इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, एक घंटा कैसे निकल जाता है इस मस्ती भरे प्रोग्राम में पता ही नहीं चलता। सुनील जी आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच भैया, कैसरगंज बहराइच से आप इतने बड़े हमारे सपोर्टर हैं, इतना बड़ा आपका मतलब क्या कहें कि कंट्रीब्यूशन है हमारे प्रोग्राम में, कि मतलब मज़ा ही आ जाता है। तो ठीक है, तो आपके मूड को थोड़ा सा लिफ्ट कराते हैं, है ना, अदनान सानी की आवाज़ में। लेकिन आप ज़रूर हमें मेल करिए भाई, अपनी दिली ख्वाहिश बताइए, दिल की क्या इच्छा है वो बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं वो बताइए। FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com इस पर अपना मेल करके सुनील के साथ।

तो भैया आप सबकी भारी मांग पर आप लियो भोजपुरी तड़का लगे वाला है। अगर आपको भोजपुरी में कुछ वाइब मैच करानी है हमसे, वाइब मैच कराने का मतलब समझ रहे हैं आप जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी प्लेलिस्ट में है, अगर आपके भी दिमाग में चल रहा है तो आप हमें लिख भेजिए ना हमारे मेल आईडी पर। हमारी मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com। आप सुन रहे हैं आज रेनबो कैफे में तड़कते भड़कते गाने, चाहे वो पंजाबी हो, हरियाणवी हो, भोजपुरी हो या फिर बुंदेली हो। मिल करिए फटाफट और ये तड़का भोजपुरी का।

भैया, तो आपके जबरदस्त मांग पर ये गाना आपकी पसंद का है, मतलब आपके रिस्क पे है, और RDSO आलमबाग लखनऊ में आप सुन रही हैं, झारखंड का की रहने वाली हैं, श्रेया कुमारी आपका नाम है। अच्छा, थैंक यू सो मच जी। और आप झारखंड का जो है कोई गाना सुनना चाहते हैं? अच्छा जी, तो आप गाने का लिरिक्स वगैरह भेजिए हमें, थोड़ा डिटेल भेजिए। आंचल जी, थैंक यू सो मच, कह रहे हैं पॉप टाइम और रेनबो कैफे मुझे दोनों ही अच्छा लग रहा है।

एकदम मजा आ जाता है। थैंक यू सो मच गीता सेठ जी, उम्दा, जबरदस्त, शानदार, बेमिसाल, थैंक यू सो मच। भोजपुरिया तड़का जबरदस्त, थैंक यू विजेश भाई। चल गीता और रामराज जी, और ये वाला जो गाना फुलौरी बिना चटनी वाला गाना है, अच्छा मैं समझ नहीं आता था जो फुलौरी क्या है, मतलब फुलौरी, अच्छा एक पेड़ होता है ना शायद पीले कलर का, रामराज जी मुझे बताइएगा कि आखिर आपके यहाँ जो फुलौरी का पेड़ है वो होता है कि नहीं होता, क्योंकि मेरे बचपन में तो होता था मेरे गाँव में, लेकिन अब फुलौरी का पेड़ कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब शिवराज जी आपका भी मेल आ चुका है, बबरिया पोस्ट बरौली मालिक जरा बाराबंकी से, और कह रहे हैं कि कोई भोजपुरिया अच्छा सा गाना, अच्छा दो भोजपुरिया तो मैंने बजाया भाई, अगर आपको और कोई अच्छा सा गाना कुछ सजेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बजाऊंगा, बजाने की कोशिश करूंगा आपकी पसंद को। बाबू अंसारी जी थैंक यू सो मच, और फुलौरी का जो कंसेप्ट है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आखिर फुलौरी क्या चीज़ है, और पेड़ पे उगता है या फिर कढ़ाई में बनता है, क्योंकि अगर चटनी बनने में इसका प्रयोग होता है तो ज़रूर ये कहीं पेड़ पे उगता होगा। अभी आजकल फुलौरी दिखाई पड़ता नहीं, दिखाई पड़ता, हमें मेल कर ये किस चीज पे, किस मेल आईडी पे करेंगे, जान रहे ना, fmakashwani@gmail.com। अच्छा, ये चीज है, मोनू भाई कह रहे हैं कि पहले लग रहा है जैसे पैदल चल रहे हैं, अब लग रहा है जैसे सुपर फास्ट एक्सप्रेस पर सवार हो गए। ठीक है भैया, तो मतलब सब कुछ चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब सुपर फास्ट ही चलता रहेगा, थोड़ा मतलब वैरायटी चाहिए ना भाई, समझे हो मोनू भाई। शिवराज जी थैंक यू सो मच, भोजपुरिया गाना बजाएंगे, लेकिन अभी फ्लोरे बिना चटनी वाला जो गाना है वो एंजॉय करिए।

रामराज भाई, आपने बिल्कुल नहीं बताया कि ये फुलौरी का क्या सीन है और कौन सी फुलौरी है और किस कहाँ पाई जाती है, आपके गांव के आसपास पाई जाती है कि नहीं। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन आपकी फरमाइश मेरी फरमाइश के साथ बिल्कुल मैच कर गई है। मतलब नागपुरी गाने की बात कर रहे थे और आप नागपुरी गाना तो आधा जानलेवा इस प्रोग्राम में जिसका नाम रेनबो कैफे है उसमें चल रहा है। अगर आप कोई पंजाबी, नागौरी, नागपुरी या फिर बुंदेली गाना या फिर भोजपुरी गाना आपके दिमाग में है, आपके जहन में है, जो काफ़ी दिन से आपने सुना नहीं है, रेडियो पर सुनना चाहते हैं, थोड़ा झूमना चाहते हैं, थोड़ा नाचना चाहते हैं, थोड़ा गाना चाहते हैं, थोड़ा कमर हिलाना चाहते हैं, तो बिल्कुल देर मत करिए इसलिए क्योंकि केवल 20 मिनट बाकी इस प्रोग्राम के लिए भैया सुनील के साथ। और हमारा मेल आईडी आप जानते ही हैं, मेल आईडी फिर से बता दे रहा हूँ, जो मेरा मेल आईडी है वो है कौन सा, समझ रहे हैं ना, मतलब मेरा fmakashwani@gmail.com। सुनील सिंह जी टहुआ कैसरगंज बहराइच से, रात्रि का कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है, भोजपुरी गाने मुझे बहुत अच्छा ठीक है बजा दे रहे हैं। शिवराज जी, मैं बाबोरिया पोस्ट बरौली जिला बाराबंकी से हूँ, अच्छा ठीक है ओके। छोटू सिंह जी कैसरगंज से ओके ठीक है। सोनू भार्गव जी हमें मेल कर रहे हैं ओके ठीक है। झरेखापुर जिला सीतापुर से, शैलेश कुमार जी दुबग्गा लखनऊ से अच्छा ओके कह रहे हैं कि जब फुलौरी बिना चटनी बन सकता है तो ये अच्छा ओके ओके ठीक है। बट चलिए, आपके बहुत सारे मेल्स मुझे मिल रहे हैं, बहुत सारे। रणधीर गुप्ता जी हमें मेल कर चुके हैं, जावेद अख्तर भाई मेल कर चुके हैं, जिनको सबको गाने बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको गाना सजेस्ट करना चाहते हैं तो फटाफट हमें मेल करिए। फिलहाल संतोष दासवाली और अंजलि टिग्गा का फीचर किया हुआ ये नागपुरी गाना।

तो भाई आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो कैफे, और रेनबो कैफे में आपकी जो पसंद है वो बहुत ही तगड़े से बज रही है, एकदम झकझकौआ बज रही भैया। न्यू दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन, दीपांशु, प्रोग्राम के सभी सॉन्ग बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। और लक्ष्मीधर कुमार, मैं मेल कर रहा हूँ सकरन सीतापुर से, प्रोग्राम सुन रहा हूँ रेनबो कैफे का, थैंक यू सो मच। और सुल्तान राजा साहब, पहली बार गाने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एवन नवाब कह रही हैं कि हाय डियर सुनील जी, मेरे गांव में फुलौरी पकौड़ी को बोलते हैं, वो इसलिए मुझे पता है। एक बार भाभी ने मुझसे कहा था कि बिटिया फुलौरी खाओगे, मैंने कहा कभी नाम नहीं सुना, तो उन्होंने बताया इसी फुलौरी मतलब जो पकौड़ियाँ होती हैं जिन्हें कहीं भजिया भी बोलते हैं उसे ही फुलौरी कहते हैं। अच्छा, इन्होंने अमन ने मुझे एक शायरी भी भेजी है कि तुम्हारा कम कम मिलना भी किसी नेमत से कम नहीं, सुना है नायाब चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं मिलती, थैंक यू सो मच अमन जी। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है अमन नवाब संडीला से कि आप सभी लोग जो मेल करते हैं हमें, मेल में कोई भी व्यक्तिगत जानकारी कभी भी किसी भी सार्वजनिक मेल आईडी पर मत दिया करिए। रजिस्ट्रेशन की मेल आईडी है और ये ओपन एक्सेस मेल आईडी होती है, तो कोई भी व्यक्तिगत जानकारी कभी भी, हमारे जो श्रोता हैं उनसे अनुरोध है कि जब भी आप मेल करें तो कोई भी अपनी पर्सनल जानकारी, हाँ हम ज़रूर अपील करते हैं कि आप अपनी लोकेशन, तो लोकेशन में आप ज़रूर आपके, हाँ भाई मैं यहाँ से कर रहा हूँ, मेरे गांव का नाम ये है, लेकिन और जो दूसरी व्यक्तिगत जानकारियाँ हैं वो आप ना दें, ये प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। महेंद्र दपन जी राजस्थान नागौर से कह रहे हैं कि रेनबो कैफे प्रोग्राम में बहुत सुनता हूँ, गर्दा उड़ाने वाला है, यहाँ बारिश हो रही है और आपकी आवाज़ प्रोग्राम में इस मौसम का मज़ा दोगुना कर रहे हैं, मेरी एक छोटी सी फरमाइश है। अच्छा, राजा जी वाला गाना तो बजा दिया, क्या दूसरा भी बजाएं क्या? शुभकामनाओं सहित तो महेंद्र देपन रून नागौर राजस्थान से मेल कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। गुलफसा, सुनील सिंह, जितेंद्र नामदेव, ओके, अच्छा शिवराज, छोटू सिंह, आप सबका मेल, श्रेया कुमारी झारखंड से, थैंक यू सो मच। डी के भाई आप, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये अगला गाना है, रिक्वेस्ट की है आपने, तो बिना देर किए सुनते हैं अगला गाना, लेकिन आप अपनी मेल जो है भेजना बिल्कुल बंद मत करिए, इसलिए क्योंकि आपकी मेल से ही ये प्रोग्राम चलता है, मतलब आपकी मेल की एनर्जी मुझे मिलती है, तो इधर से मैं भी थोड़ा एक्साइटेड होता हूँ ना कि हाँ अच्छे गाने या आपके पसंद के गाने, भोजपुरी गाने, नागौरी नागपुरी गाने, या फिर जो रीजनल बुंदेली गाने, या आपका आपका जो रीजन है, आपका जो क्षेत्र है, आपसे जहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर लखनऊ में रहते हैं या राजस्थान में रहते हैं या यहाँ के रहने वाले हैं, कहीं बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तब भी आप अपनी जो लोकल म्यूज़िक है वो खुद भी सुन सकते हैं और हमारे जो और दूसरे श्रोता हैं उन्हें भी सुना सकते हैं, है ना। तो जो मेल आईडी हमारी आप जानते ही हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जो मेरे यहाँ FM की ईमेल आईडी है, FM रेनबो की, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com, इस पर फटाफट मेल भेज दीजिए, हमारे पास पहुँच जाएगा। ओके, ठीक है।

नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। जापान के काका मेगाहारा में भारत के अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में आज भारत ने जापान को 4-1 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया कप जीतने पर भारतीय पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीमवर्क का प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा फाइनल में मिली यादगार जीत के रूप में सामने आया। उन्होंने कहा कि युवा हॉकी खिलाड़ियों की ये एक शानदार उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप 2026 में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला अंडर 18 हॉकी टीम को बधाई दी। वाराणसी नगर निगम ने शहर के 2,33,000 भवन स्वामियों के लिए अत्यंत सुविधाजनक सेवा शुरू की है। एआई आधारित चैटबॉट व्हाट्सएप के माध्यम से अब भवन स्वामी घर बैठे संपत्ति कर, गृह कर, जल कर, सीवर कर जमा कर सकते हैं। सदन की बैठक में इसका शुभारंभ महापौर अशोक कुमार तिवारी ने किया। वाराणसी यह सुविधा शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम बन गया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी जनपद के मिड़ावली स्थित प्राचीन माता मंदिर के पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। लगभग 1,18,00,000 रुपए की लागत से कराए गए इन कार्यों का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा, विंध्याचल, चित्रकूट और नैमिषारण्य जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर हुए विकास कार्यों से उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिली। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति

पति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी के निर्देशन में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की बगिया में 1 माह तक लगातार पौधरोपण अभियान चलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल उनके अगले दिन आज परिसर में 1,500 पौधे लगाए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: नामम पर भोजपुरिया तड़का।
1: कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर।

अपनी इश्क की मध्यम लौ में पत्ता, सर्दियों की सुबह किसी झील के शिकारे पे रखी कांगड़ी से निकलते कहानी की माफिक लज्जतदार। खामोश निगाहों के पीछे छुपी कोई चिंगारी जो सुर्ख रोहे की शक्ल में आंखों में पड़ती नजर आ जाए। सर्द रातों में पश्मीने की माफिक जवान दिलों में हाय से मुकम्मल होते हुए किसी सुनहरे ख्वाब की ताबीर बताता रेडियो प्रोग्राम रजनीगंधा। सुनिए हर रात 10 से 12 107 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीकंधा सुनील के साथ 100.7 आकाशवाणी एफएम रेनबो लखनऊ पर। पंद्रह हजार, 10,000, 5,000, छोटे शहरों में 3,000। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कौन सी गिनतियां पढ़ रहा हूं, किस तरह के नंबर्स हैं ये, क्या कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है बल्कि इंसानी रिश्तों की धड़कती बुनियाद की तिरछी लकीरें हैं। ये लकीर भी नहीं है बल्कि उस बाहरी टूटी हुई एतबार की दीवारें हैं जिनकी लकीरें दिखाई तो नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम पैच लगा देते हैं शराफत का, लेगेसी का, खानदान का। और ये तमाम बोझ जब हमारे गर्दन टेढ़ी करने लगता है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सिर पे लिया गया ये बेजान रिश्तों का बोझ वक्त के साथ जब कमर टेढ़ी करने लगता है तो इंसान शून्य हो जाता है। और ये शून्य उन आंकड़ों में जाकर फिट हो जाता है जो अदालती कार्रवाइयों और पारिवारिक न्यायालयों में वाद के रूप में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। न जाने कौन सी हवा है, न जाने कौन सा वक्त है कि किसी में किसी को सुनने, किसी को सहने की कोई ताकत ही नहीं बची। हर कोई सुनने के बजाय सुना देना चाहता है, हर कोई सहने के बजाय जुल्म करना जानता है। न जाने कैसा वक्त है, न जाने कैसा मोड़ है ये वक्त का, जो इंसानियत और रिश्तों को न जाने कहां ले जाएगा।

प्रोग्राम रजनीगंधा सुनील के साथ 100.7 आकाशवाणी एफएम रेनबो लखनऊ पर। मैं बात कर रहा था कि जो दिली मामले हैं, जो मोहब्बत, फिर शादी, फिर जीने मरने की कस्में, फिर साथ रहना, फिर

साथ रहना, थोड़ा सा भारी लगना, साथ रहना, भारी लगने के बाद थोड़ी सी तकरार, थोड़ी तकरार के बाद झगड़े, फिर तमाम क्लेश, उसके बाद फिर और लोगों का शामिल होना, और लोगों के शामिल होने के बाद अपनी अना का खुद पे हावी हो जाना, और अपनी अना के हावी होने के बाद फिर और लोगों का शामिल होना, फिर और लोगों का, फिर पूरे सिस्टम का, फिर पूरे सिस्टम के शामिल होने के बाद दो लोग जो एक दूसरे को दिलो जान से एक वक्त में चाहते थे, जीने मरने की कस्में खाते थे, मोहब्बत के फरिश्ते बना करते थे, वो एक दिन किसी तहरीर में अपनी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा लिखा करते हैं। और वो तहरीर तमाम दावों और मुनसिफ और वकालतों के बीच कहीं दब के रह जाता है। ये कागज़ के टुकड़े जिसमें लोगों के दिलों की इबारतें लिखने की कोशिश की जाती है, ये सब झूठे होते हैं, क्योंकि चाहे तड़प हो या फिर मोहब्बत, चाहे नफरत हो या दिल लगी, कोई ऐसा शायर नहीं, कोई ऐसा लिखने वाला नहीं जो हूबहू दिल के जज्बात को कागज पे ले आए। वहां तो स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं ना, आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। और शायद जिंदगियां लग जाती हैं इस बात में कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो कह सकें, और हम किसी अपने से नहीं कह पाते जिसके लिए महसूस कर रहे हैं, तो भारी अदालत में क्या कह पाएंगे। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीकांत सुनील के साथ।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीकांधा सुनील के साथ 100.7 आकाशवाणी एफएम रेनबो लखनऊ पर। आज गुफ्तगू हो रही है उन मुद्दों पर, उन बातों पर जो बातें तो दिली होती हैं लेकिन वक्त की धूप के साथ वो दिल से निकलकर किसी और शख्स में, किसी और शख्स से फिर पूरे कुनबे में, और एक कुनबे से फिर समाज में, समाज से फिर अदालतों में, और अदालतों से एक अंतहीन प्रक्रिया में चले जाते हैं। कुछ आंकड़े आए थे कि 15,000 से भी ज़्यादा ऐसे मामले पिछले 3 सालों में सिर्फ लखनऊ जैसे शहर में रजिस्टर हुए हैं। ये जगाने वाला मामला है, अलार्मिंग सिचुएशन। खुद पे और अपनी जो परिवार संस्था है उस पे प्रश्न उठाने वाली बात है। एक अरसे में मानव सभ्यता जब अस्तित्व में आई तो उसने परिवार बनाने का, परिवार से समाज बनाने का और समाज से देश बनाने का एक खाका तैयार किया और इसी से सब कुछ चलता रहा। एक ज़माना था जब 3 पीढ़ियों का सिजरा देखा परखा जाता था कहीं भी रिश्ता बनाने से पहले। तो क्या देखा जाता रहा होगा सिजरे में कि तमाम जो शख्सियतों की ज़िंदगी है उनकी इबारत में वो तहरीरें जो केवल इबारतों तक सीमित रह गईं, या फिर वो कहानियाँ जो शायद जोश में ली गईं, जोश में लिखी गईं और तारीखी फैसले पीढ़ियों के लिए एक दर्द का सबब बन गए। वो चेक पॉइंट्स जिनमें किसी की ज़िंदगी का और उसकी पीढ़ियों का सिजरा देखा जाता था, ये देखा जाता था कि कहीं किसी ने अपने कबीले से बिलग किसी दूसरे हुक्का पानी के यहाँ तो रिश्ता नहीं कर लिया। जातियों की कल्पना सिर्फ हमारे सिस्टम का एक अंग है, इसका विज्ञान और इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। वो डीएनए जिसे हम मिलाने की कोशिश करते हैं, वो डीएनए हर वक्त खुद को म्यूटेट कर रहा होता है। कई बार वो डीएनए का इम्प्रिंट आखिरी होता है, उसके बाद कोई इम्प्रिंट नहीं बनाता, म्यूटेंट से नया डीएनए बन जाता है, है ना? शायद वो आखिरी गीत मोहब्बत का होता है जिसे वो गाता है, भूल जाता है और फिर नया गीत तैयार करता है। कोशिश करिए नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, नए इंसानों को और साथ में नए विचारों को भी।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रोशनी का अंधा सुनील के साथ 100.7 आकाशवाणी एफएम रेनबो लखनऊ पर। जब किसी का वक्त ठीक नहीं चल रहा होता है ना, तो हम उसे कहते हैं कि भाई आपके जो सितारे हैं वो जरा गर्दिश में चल रहे हैं, है ना भाई साहब। ये सितारों तक जाने की जरूरत नहीं है, आग हवा पानी धरती आकाश इतने ताकतवर है ना, सीधे हमारे होने और ना होने के सबब बन सकते हैं। इसे खेलना ठीक नहीं है। कुछ लोग इन्हें ईश्वर के दूतों के रूप में मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं और फिर इन्हें खुदा मान के सिर्फ इबादत के वक्त तक सीमित कर देते हैं, है ना। ये जो एंटिटीज है ना, ये हमारे हर पल में, हमारा अस्तित्व है इनसे। ये जो सितारे ठीक नहीं हो रहे ना, सबसे पहले तो पानी ठीक नहीं है, आसमान और जमीन ठीक नहीं है, आग गलत जगह लगी हुई है, हवा तेज हो गई है और ज्यादा तेज हो गई ना तो दरख्त खाक हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पखवाड़े माह वर्ष क्यों मना रहे हैं, जब केवल और केवल ये चिंता किसी एक दिन के किसी एक वक्त पर लाकर लाद देनी है। बाकी दिन क्या होगा, ये तो पांच ही है, पांच चीजें हैं, इन्हीं से सूरज चांद देख पाते हैं। यही पांच चीजें ताकत पैदा करते हैं हमारे शरीर में कि हम सूरज को चांद को सितारों को ग्रह को नक्षत्र को देख पाए। अगर इन पांचों में से कोई भी एक ऑफ ट्रैक हो जाए ना, तो इंसानी जिंदगी तुरंत प्रभावित हो जाएगी, बिल्कुल देर नहीं होगा। न कोई दिवस, न कोई पखवाड़ा, न कोई वर्ष, न कोई माह कुछ राहत नहीं देगा, गोष्ठियां और चिंतन शिविर भी नहीं, है ना। तो कोशिश करिए कि हवा पानी आग जमीन आसमान सही रहे, और हाँ, इन्हीं के सही रहने से हमारा जो पल है, आने वाला वक्त है, वो भी सही रह पाएगा और पूरी शिद्दत से हम जी पाएंगे, है ना। चाहे वो हमारे रिलेशनशिप हो या फिर हमारी निजी जिंदगी, हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर हो।

0: रूहानी इश्क के मध्यम लौ में पत्ता, सर्दियों की सुबह किसी झील के शिकारे पे रखे कांगड़ी से निकलते कहावे की माफिक लज्जतदार, खामोश निगाहों के पीछे छुपी कोई चिंगारी जो सुर्ख रोहे की शक्ल में आंखों में पड़ते नजर आ जाए, सर्द रातों में पश्मीने की माफिक जवान दिनों में हाय से मुकम्मल होते हुए किसी सुनहरे ख्वाब की ताबीर बताता। रेडियो प्रोग्राम रजनीगंधा, सुनिए हर रात 10 से 12 100.7 FM रेनबो पर।
1: कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी, कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, रात के 11 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है, इससे बाजार में अधिक

नमस्कार, रात के 11 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है, इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता